शक संवत 1948 के श्रावण मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई 2026।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की सातवीं तिथि तदनुसार 29 जुलाई 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त आशी राठौर। आप सभी को हमारा नमस्कार, शुभ प्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: हिंदी में समाचार,
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
3: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
2: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
4: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
2: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिस्टर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध

वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र

0: तक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना में सबसे पहले सुनते हैं समूह स्वर में ये देशगान।

समूह स्वर में अभी आपने ये देशगान सुना। वंदना में आइए, अब आपको सुनवाते हैं शंकर महादेवन व साथियों के स्वर में ये भक्ति गीत।

0: जगजीत सिंह के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन में आज हम सुनवा रहे हैं उमाशंकर नागाइच का ये आलेख। वाचक हैं डॉक्टर अरविंद सोनी। विषय है गुरु पूर्णिमा, गुरु शिष्य संबंध।
1: प्राचीन काल में शिक्षा प्रारंभ के पूर्व बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन दो शब्दों से बना है, उप धन नयन। उप का अर्थ है समीप, नयन का अर्थ है ले जाना। उपनयन में शिशु को गुरु या आचार्य के पास ले जाते हैं। इसके बाद बालक गुरु के पास ही रहकर पढ़ता था। उपनयन संस्कार का उद्देश्य गुरु शिष्य में तादात्म्य पूर्ण निकटतम संबंध स्थापित करना था। उपनयन के बाद बालकों की शिक्षा दीक्षा, उनके पालन पोषण एवं सुरक्षा का पूर्ण दायित्व गुरु या आचार्य का हो जाता था, जिसका निर्वाह वो माता के समान करता था। अथर्व वेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का एतद् विषयक वर्णन विश्व साहित्य में अनुपम है, यथा आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः, तम रात्रिस्तिस्र उदरे विभर्ति तम जातम दृष्टुमभिसंयन्ति देवाः। अर्थात आचार्य समीप लाए गए बालक को उसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार माता शिशु को गर्भ में धारण करती है। उस बालक को आचार्य 3 रात्रि पर्यंत अपने उदर में अर्थात समीप आश्रम में रखता है, जिसे जन्म लेने पर अर्थात शिक्षित होने पर देवता देखने को आते हैं। वैदिक शिक्षा व्यवस्था की ये श्रेष्ठ अवधारणा गुरु शिष्य संबंधों की उत्तमता की पराकाष्ठा है। एक माँ जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु का पोषण रक्षण और संवर्धन करती है, उसी प्रकार आचार्य गुरुकुल में प्रविष्ट शिष्य का पालन पोषण संरक्षण और ज्ञान वर्धन करता है। पुरातन युग में गुरु शिष्य को न केवल ज्ञान देकर सुशिक्षित बनाते थे, अपितु उसे लौकिक जीवन के लिए भी प्रशिक्षित करते थे। गुरु अपने शिष्य को गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्य

0: कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए कुशल बनाते थे। वे शिष्य को न केवल धर्म परायण व्यक्ति अपितु उसे एक कर्तव्य परायण नागरिक भी बनाते थे। उसे माता पिता, अतिथियों एवं गुरुजनों की सेवा तथा सम्मान करना भी सिखाते थे। शिष्य का आचरण अत्यंत विनम्रतापूर्ण होना चाहिए। जिज्ञासा ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता उत्पन्न करती है तो विनम्रता ज्ञान प्राप्ति की पात्रता प्रदान करती है। विनयशीलता ज्ञान और गुणों के अर्जन के अनेक अवसर उत्पन्न करती है। विनयशीलता के लाभों का वर्णन करते हुए कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोबलम्। जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, कीर्ति और बल, ये चार सदा बढ़ते हैं। इसी मनोवैज्ञानिक सत्य को ध्यान में रखते हुए वैदिक संस्कृति में शिष्यों को अनुशासन में रहकर अत्यंत विनम्रता पूर्वक आचरण करने तथा गुरु के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति रखकर निरंतर उनकी सेवा करने का उपदेश दिया गया है। कहा गया है कि उपनयन संस्कार के पश्चात शिष्य को गुरु के समक्ष समित पाणी होकर उपस्थित होना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हुए शिष्य को गुरु के समक्ष जाकर उनके सानिध्य में सम्मान युक्त आचरण करते हुए अध्ययन करना चाहिए। वैदिक विचारधारा और शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य संबंध अपने आप में इतने विशिष्ट और अलौकिक हैं कि उनकी तुलना अन्यत्र अप्राप्य है। वैदिक साहित्य में कहीं शिष्य को पुत्र तो कहीं आत्मा से उत्पन्न अर्थात आत्मज कहा गया है। गुरु शिष्य संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है अंतेवासी। शिष्य गुरु का इतना अधिक समीपवर्ती माना गया है कि उसे गर्भस्थ पुत्र तक कहा गया है। वैदिक आदर्श के अनुसार गुरु शिष्य संबंधों में पिता पुत्र, संरक्षक संरक्षित आदि सभी संबंध समाहित हैं। गुरु शिष्य संबंधों का ये वैदिक तादात्म्य अनुपमेय है। वर्तमान में शिष्यों तथा संतानों को अनुशासन में रखकर उन्हें सही रास्ते पर चलाना और मर्यादित व्यवहार तथा संयम की शिक्षा देना अत्यंत दुष्कर है। विद्यार्थियों में अनुशासन के परिप्रेक्ष्य में जब हम आज के शैक्षणिक वातावरण का अवलोकन करते हैं तो हमें प्राचीन युग की वो उज्ज्वल परंपरा सहसा अविश्वसनीय सी प्रतीत होती है।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे उमाशंकर नागाइश का ये आलेख। वाचक थे डॉक्टर अरविंद सोनी। विषय था गुरु पूर्णिमा, गुरु शिष्य संबंध। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

कपटी मुनि के षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु 100,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर

के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक था। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल ऐसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है जैविक खाद कैसे बनाएं। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, जहां पर सिंचाई की सुविधाएं होती हैं वहां पर हमारी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन लिया जाए। फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का भी अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जिस अनुपात में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुरूप हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही है। हमारी फसलों की पैदावार एक निश्चित पैदावार पर रुक जाती है। रासायनिक खादों की कीमत भी अधिक होती है, जिससे फसल उत्पादन का लागत व्यय अधिक बढ़ जाता है। खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए और लागत व्यय कम करने के लिए अपने फार्म पर जैविक खादें बनाएं। जैविक खाद बनाने के लिए पौधों की सूखी पत्तियां, धान का पैरा, पौधों की जड़ें और फसलों के अवशेष प्रयोग में लाए जाते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए टांका तैयार करते हैं। टांका धरातल के ऊपर बनाएं। टांकों का आकार 12 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा और 3 फुट ऊंचा बनाते हैं। टांका की लंबाई और ऊंचाई आवश्यकता अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं, लेकिन टांका की चौड़ाई 5 फुट से अधिक न रखें, क्योंकि टांका की चौड़ाई 5 फुट से अधिक रखने पर वायु का संचरण ठीक का नहीं हो पाता है। टांका बना लेने के बाद पहले टांके के धरातल पर कूड़े करकट, पत्तियों, सड़े गले कचरे की 9 इंच मोटी परत लगा देते हैं और इसमें जैविक क्रियाएं कार्य करने के लिए इस परत को पानी से नम कर देते हैं। उसके बाद गोबर का पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं। इसके बाद राख फास्फेट का बुरकाव करते हैं। राख फास्फेट का बुरकाव कर देने के बाद खेत की मिट्टी की हल्की परत लगा देते हैं, क्योंकि खेत की मिट्टी में लाखों की संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं जो टांका के अंदर जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। इसी तरह टांका भरते जाते हैं और टांके में 10 परत लगा देते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि यह टांका भरने का कार्य 1-2 दिन में पूरा हो जाए। टांका भरने के बाद जैविक क्रियाएं कम हो जाती हैं और टांके का तापमान भी कम होने लगता है। उस समय पीएसवी कल्चर और H2 वेक्टर का घोल बनाकर खाद से भरे टांकों में सब बल्ब से गड्ढे करके उनमें भर देना चाहिए। पीएसवी कल्चर और एजोटोबैक्टर के घोल से टांका में जो राख फास्फेट डाला जाता है वह घुलनशील अवस्था में हो जाता है। इस तरह यह खाद 90 दिन में बनकर तैयार हो जाती है और इस खाद को फसल में प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खादें रासायनिक खादों की अपेक्षा सस्ती भी होती हैं और इनमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं तथा फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होती हैं। अपने फार्म पर आसानी से जैविक खाद बना सकते हैं। रासायनिक खादों के लगातार प्रयोग करने से खेतों में कड़ापन आ जाता है, जिससे मिट्टी की यौगिक संरचना बिगड़ जाती है। जैविक खादों से मिट्टी की यौगिक संरचना बनती है और अधिक समय तक पानी धारण करने की क्षमता विकसित होती है। मिट्टी में भुरुरापन आ जाता है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास अधिक होता है। पौधे अधिक गहराई से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और दाने सिडोल और चमकदार बनते हैं। जैविक खादों का प्रयोग करने से रासायनिक खादों पर किए जाने वाले खर्च में कमी की जा सकती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है। खेतों, पशुशाला और घरों के निरर्थक जीवांश अवशेषों का समुचित उपयोग हो जाता है। खादें अच्छी तरह पकी होने के कारण दीमक और खरपतवारों की रोकथाम में कमी संभव है। जैविक खादें बनाएं और प्रयोग करें। जैविक खादों का फसलों में प्रयोग करना काफी लाभदायक है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। विषय था जैविक खाद कैसे बनाएं। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: हर गुरुवार सुबह 8:30 से 9 बजे सुनिए स्वराज संस्थान भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: याद रखो हमारी बात,
1: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
0: जंगल है धरती का गहना,
1: सदा इसकी रक्षा करना,
0: होगी जो धरती पर हरियाली,
1: चहुओं ओर फैलेगी
0: खुशहाली।

0: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
1: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
0: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
1: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
0: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
1: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
0: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
2: ए भाई, जरा देख।

सूचना परक कार्यक्रम दर्पण अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे केंद्र का प्रसारण आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुनते हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

प्रागुपान्त्यचक्रे मुआले मुएङ्गो इत्येनं पराजित्य न्यूनातिन्यूनं कांस्यपदकं सुनिश्चितवान्। अनेन असौ उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।

0: देने के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत की जनता प्रत्येक निर्णय और नीति के केंद्र में रहनी चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को एक क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान दिया है। BIMCO, ICS, Seafarer, वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% का हिस्सा है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाजरानी मार्गों को प्रभावित कर रहे बढ़ते भू राजनैतिक तनावों के बीच संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है।

राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400

7:10 पर भोपाल से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाता है। 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे कहानी अपने अपने आदर्श। कहानीकार होंगे सुरेश सम्राट। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम आप सुनते हैं व्हाट्सएप फरमाइश सुबह 10:05 से 11 बजे के बीच। इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं को उनके पसंद के फिल्मी गीत सुनवाते हैं।

8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाते हैं। सुबह 8:30 आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत का एक और कार्यक्रम आप सुनते हैं 1:45 पर। सुनिए इस घंटे की खास खबरें, इसे भोपाल से अनुप्रसारित किया जाता है। इस घंटे की खास खबरें आप सुबह 10:58 पर, 11:58 पर, दिन में 12:58 पर और दिन में 2:58 पर सुन सकेंगे। सुबह 9:00 इस घंटे की खास खबरों के ठीक बाद आप सुनेंगे सूचना और समाचार पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। सुबह 9:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे अनिकेत तातलेकर का वायलिन वादन राग होगा अहीर भैरव।

श्रोताओं, 11 बजे से लेकर सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। हमारी शाम की सभा भी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी।

दिन में 1:30 बजे सुनिए महिला कार्यक्रम। चर्चा के विषय होंगे भारतीय परंपरा में गुरु का महत्व, एक्सपेरिमेंट से डरे नहीं और प्रेरक महिला अरुणा आसफ अली की भूमिका। साथ ही आप भेंटवार्ता में सुनिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर रिटायर्ड IAS ऑफिसर और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पूर्व डायरेक्टर BD शांकवार से धम्म मित्रा की बातचीत।

दिन में 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, शाम 5 युवाणी कार्यक्रम और 6 एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। साथ ही 7:20 पर हमारी केंद्र से चौपाल कार्यक्रम सुना जा सकता है। इसमें चर्चा के विषय होंगे गुरु पूर्णिमा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, साथ ही वार्ता में सुनिए गुरु पूर्णिमा का महत्व आज के संदर्भ में डॉक्टर मायाराम रिपुरिया द्वारा।

रात 8 बजे से सभा की समाप्ति तक के सारे कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण समाप्त।

0: सुबह के 7:10 होने को हैं। सुनिए आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण।
1: आए मिल मधुर गान

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा में आज फिर होगी पेपर लीक रोकने वाले संशोधन विधेयक पर चर्चा। 10 साल तक कैद और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। तकनीकी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे वन्य जीव संरक्षण वाहनों का लोकार्पण। और मौसम विभाग ने आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। ये विधेयक कल कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन में पेश किया था। इसमें 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के जैसे कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। विधेयक में हर राज्य में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में वित्त, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी मंत्रालयों की भावी कार्ययोजना की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का हर निर्णय आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने तकनीकी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और युवाओं को इससे जोड़ने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत के साथ मिलकर नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री वन्य जीव संरक्षण के लिए मिले वाहनों का लोकार्पण करेंगे और संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। वे विभागीय प्रकाशनों का विमोचन और वृत्तचित्रों के टीजर भी रिलीज करेंगे। मुख्यमंत्री पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित राज्य वन प्राणी बोर्ड के सदस्यों का अभिनंदन करेंगे। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज पूरे प्रदेश में महर्षि सांदीपनी गुरुपर्व मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में गुरु पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर उज्जैन के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी सहभागिता करेंगे। इस पर्व का मुख्य आकर्षण भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ होगा, जिसके तहत 102 मेधावी विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक भारतीय गुरु परंपरा के शिल्पी महर्षि सांदीपनी का लोकार्पण भी किया जाएगा। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जबलपुर में सुबह से ही ग्वारी घाट और तिलवारा घाट के नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और खंडवा स्थित प्रसिद्ध श्री धूनी वाले दादाजी दरबार में भी गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। करीब 3 साल से तैयार निषादपुरा रेलवे स्टेशन का कल औपचारिक शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां से मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके नियमित ठहराव की शुरुआत की। इसके साथ ही निषादपुरा भोपाल का 4th रेलवे स्टेशन बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दिल्ली से उज्जैन और इंदौर जाने वाले ट्रेनों को इंजन या ट्रैक बदलने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से बना यह स्टेशन क्षेत्र के विकास का नया केंद्र बनेगा।
1: हमारे सारे क्षेत्रों में हर विभाग में काम हो रहा है, लेकिन वाकई रेल के क्षेत्र में जिस गति से काम चल रहा है, रेल के माध्यम से ये जो परिवर्तन आ रहा है और खास करके अब मध्य प्रदेश के अंदर 100% विद्युतीकरण हुआ है और यहाँ पे रानी कमलापति, हिरदाराम मुख्य स्टेशन, अब निषादपुरा एक के बाद एक चार चार सोगा चारों दिशा से मिलकर आ रही है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार ने 8 IAS अफसरों का तबादला कर दिया है, जिसमें 4 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने कल शाम इसके आदेश जारी किए। शहडोल कलेक्टर बनाई गई मिशा सिंह की पोस्टिंग बदलकर अब उन्हें नगरीय विकास विभाग भोपाल में अपर आयुक्त बनाया गया है। वहीं पार्थ जायसवाल को शहडोल, मृणाल मीणा को छतरपुर और कुमार सत्यम को बालाघाट का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग को अब राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था ई विकास को वैध ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा कि ये व्यवस्था केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है, जिसमें अदालत सीमित मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकती है। कृषि आदान विक्रेता संघ ने याचिका में कहा था कि ग्रामीण इलाकों में कमजोर इंटरनेट के कारण किसानों को दिक्कत हो रही है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि इस प्रणाली से खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर रोक लगेगी। अदालत ने यह भी साफ किया कि तकनीकी समस्या होने पर जिला कलेक्टर अस्थायी रूप से पुरानी ऑफलाइन व्यवस्था लागू कर सकते हैं। इंदौर पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कल एक साथ करीब 2.25 लाख नागरिकों को नशा मुक्ति की ई शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में शहर के विद्यार्थियों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने सभी प्रतिभागियों को सामूहिक शपथ दिलाई। इंदौर पुलिस ने पिछले साल 85,000 लोगों को शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अब उसने खुद ही तोड़ दिया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के प्रतिनिधियों ने इस उपलब्धि की पुष्टि की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई यानी कल मतदान होना है। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इसका मकसद मतदाताओं में सुरक्षा का भरोसा जगाना और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देना था। जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदान सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। मानसून को देखते हुए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग और टेंट जैसी विशेष व्यवस्थाएं भी की हैं। भाजपा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर आज से समरसता संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान अगले 20 फरवरी तक 5 चरणों में चलेगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि अभियान की शुरुआत आज समरसता दीपोत्सव से होगी, जिसमें प्रदेश के 21,000 स्थानों पर दीप जलाए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में वाराणसी से गुरु रविदास की जन्मस्थली की पावन मिट्टी लाई जाएगी, जिसके बाद समरसता यात्रा, संत संपर्क अभियान और छात्रावास संपर्क अभियान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम तथा रायसेन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में 4 इंच तक पानी गिर सकता है। देवास, सीहोर और हरदा सहित प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के ऊपर से मानसून ट्रफ और चक्रवाती सिस्टम गुजर रहा है। ये सिस्टम ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ होते हुए आगे बढ़ेगा और प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य हिस्सों में भारी बारिश करवाएगा। अब रुक करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की खबर का। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक जीते। हरजिंदर कौर ने कुल 227 किलोग्राम का भार उठाया, वहीं गुलवीर सिंह पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मुक्केबाजी में प्रिया घंघास, प्रीति पवार और जादूमणि सिंह ने सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक पक्का कर लिया है। वहीं धावक विशाल टीके भी 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। भारत अब तक 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ पदक तालिका में 9वें स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में नवनिर्मित आर्बिट्रेशन एवं मीडिएशन सेंटर तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और लिफ्ट क्रमांक 5 के लोकार्पण कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने किया। अशोकनगर की जनपद पंचायत परिसर ईसागढ़ में सुरक्षा जवान भर्ती शिविर का आयोजन कल किया गया, वहीं आज चंदेरी और कल जनपद पंचायत अशोकनगर में भर्ती की जाएगी। झाबुआ जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत मेघनगर स्थित बाफना फाइबर्स परिसर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडौरी के राष्ट्रीय राजमार्ग 543 तथा डिंडौरी मंडला मार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि के प्रभावित किसानों को कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कल मुआवजा राशि के चेक वितरित किए। स्टार्टअप इंडिया द्वारा तेजस योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर तथा जिला प्रशासन के सहयोग से आज आयोजित किया जा रहा है और सिंगरौली कलेक्टर के निर्देशों पर सिंगरौली मेडिकल कॉलेज परिसर में बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट तथा बिलियर्ड्स कोर्ट समेत कई सारी खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज फिर होगी पेपर लीक रोकने वाले संशोधन विधेयक पर चर्चा। 10 साल तक कैद और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक। तकनीकी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे वन्य जीव संरक्षण वाहनों का लोकार्पण। और मौसम विभाग ने आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: एम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए कहानी अपने अपने आदर्श। कहानीकार हैं सुरेश सम्राट।
1: यह संयोग ही था कि महीने की जिस आखिरी तारीख को रास बिहारी का जन्मदिन था, उसी दिन उनका रिटायरमेंट, ठीक 60वीं वर्षगांठ पर ऑफिस में उनका विदाई समारोह था, तो घर पर भी बच्चों ने उनकी षष्ठ पूर्ति पर एक पारिवारिक आयोजन की तैयारी कर रखी थी। ऑफिस में जब उन्हें शॉल उड़ाकर और श्रीफल भेंट कर विदाई दी गई, तो उन्हें लगा जैसे उनके सक्रिय जीवन का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वह कुछ भावुक भी हुए। उनके सहयोगियों और अधिकारियों ने अपने उद्बोधन में उनकी प्रशस्ति में न जाने क्या क्या कहा। सादा जीवन, उच्च विचार, सरलता की प्रतिमूर्ति, समय के पाबंद जैसे विशेषणों के बीच जब उन्हें निहायत ईमानदार और निष्ठावान कहा गया, तो उनके अंतस में चल रहा अंतर्द्वंद कटु मुस्कान के साथ अधरों पर फैल गया, जैसे कह रहा हो जिन बेईमानों और भ्रष्टों के बीच पूरा जीवन गुजार दिया, वे आज शब्दों का जाल बुनकर किस कुशलता से पीछा छोड़ा रहे हैं। यही हुआ। चाय नाश्ते के बाद उन्हें मिले उपहारों और फूलमालाओं के साथ ऑफिस की कार से आखिरी बार घर रवाना कर दिया गया। बाद में ऑफिस में एक पार्टी और हुई। लोगों ने जमकर मदिरापान किया, जिसमें उनकी खुशी की खास बात पीने वालों के मुखारविंद से बार बार फूट रही थी, बिहारी बाबू न खाता था न खाने देता था, न पीता था न पीने देता था, चला गया। घर पहुंचकर बिहारी बाबू जब ऑफिस की कार से बाहर उतरे, तो उनके षष्ठ पूर्ति समारोह की तैयारी चल रही थी। अतिथि आने वाले थे। उनका छोटा बेटा सदानंद अपने दोस्तों के साथ सोफे पर बैठकर बतिया रहा था। अंदर जाते समय उनके कानों में सदानंद की आवाज़ गूंजी। वह कह रहा था, पापा जिंदगी भर निर्माण विभाग में रहते हुए न अपने लिए कुछ कर पाए न हमारे लिए, हमें स्वावलंबन, संतोष और सादा जीवन जैसे सिद्धांतों की घुटी पिला पिला कर इस हालत में छोड़ दिया। रास बिहारी को बेटे सदानंद के मन में बनी अपनी तस्वीर को इतने स्पष्ट रूप में देखने का यह पहला अवसर था। गलती उनसे हुई है। सदानंद को एक बार अपनी जमानत पर और एक बार अदालत से जमानत करके वे छुड़वा चुके हैं। वे विचलित हो उठे, अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। आज उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जन्मदिन तो उन्होंने कभी मनाया नहीं, लेकिन 60वां जन्मदिन इतने निराशा भाव का होगा ऐसा भी उन्होंने सोचा नहीं था। तभी पत्नी उमा ने आकर उन्हें विचारों के जंजाल से बाहर निकाला। बोली, 8 बजे केक कटेगा, विनीता बेटी बच्चों के साथ आने वाली है, और सबसे बड़ी बात, बड़ा बेटा रामानंद भी नई कार के साथ 8 बजे से पहले आ जाएगा। तब तक तुम्हारे दोस्त भी आ जाएंगे। अभी लगभग 3 घंटे बाकी हैं, तुम आराम से तैयार हो जाओ। रास बिहारी थोड़ा संयत हुए, फिर पत्नी को पास बिठाकर भावुकता से बोले, एक तुम ही तो हो जिसने जीवन भर बिना कोई शिकवा शिकायत किए मेरा साथ दिया, पर जाने क्यों आज मन विचलित है। मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, जैसे पूरे जीवन के बाद पराजय हाथ लगी हो। रास बिहारी बात पूरी कर पाते कि पत्नी उमा भी उफन पड़ी। जीवन भर अपने विचारों से ही जूझते रहे हो, खुद सोचते हो फिर अपने ही सोच में उलझ जाते हो। इस जीवन का फैसला तुम्हारा था, इसमें भी बताओ कौन सी कमी रही। सुख रहा, शांति रही, संतोष रहा, अब पछतावा क्यों। बड़े बेटे रामानंद के पास बैंक की अच्छी नौकरी है, उसके बेटे के तुम दादाजी बन चुके हो। बेटी विनीता की शादी हम कर चुके हैं। सदानंद भी अब सुधर कर कमाने लगा है, लेकिन अपने ही द्वारा बुने उलझनों के जाल के कारण तुमने कभी किसी खुशी को, किसी समारोह का आनंद का हिस्सा नहीं बनाया, बस उपस्थिति दर्ज कराते रहे। भगवान के लिए आज ऐसा न करना। पत्नी के इस रूप को देखकर रास बिहारी को कुछ अच्छा लगा। मुस्कुराते हुए वे दरवाजे से बाहर जाती उमा को देखते हुए सोचने लगे। उमा ने 40 साल के दाम्पत्य जीवन में पहली बार अधिकारपूर्वक कुछ कहा, वह भी इतना संतुलित और सांत्वना देने वाला, और वह थे कि उसे जीवन भर घर संभालने वाली मात्र अपनी सहयोगिनी समझते रहे। कितना लंबा धैर्य था उमा के उन 4 वाक्यों में, जबकि उमा की किसी जरूरत को उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। छी छी उमा के साथ भी उन्होंने अच्छा नहीं किया, वे फिर विचलित हो उठे और फिर उतर गए अतीत की उन गहरी खाइयों में जहाँ उन्हें अपने बीते जीवन की सभी कथित असफलताएँ विचारों की रस्सी से बार बार बांध रही थीं। उनकी तंद्रा को बेटी विनीता ने तोड़ा, केक कटने में बस एक घंटा बाकी है, ऊपर बड़ी छत पर केक कटेगा, आपके और आपके दोस्तों के बैठने के लिए अलग कॉर्नर बनाया गया है, पूरी व्यवस्था होटलों जैसी की गई है, उठो ना पापा। विनीता के इस आग्रह को राजबैरी टाल ना सके, उन्होंने नया धोती कुर्ता पहना। तभी उनके जिगरी दोस्त श्यामधर ने ये कहते हुए बधाई राजबैरी उन्हें बाहों में भर लिया, वे गदगद हुए। श्यामधर ने जब यह बताया कि विनोद कुमार और त्रियोगी नारायण भी आ चुके हैं तो वे और उत्साहित हो उठे। केक काटने राजबैरी जब श्यामधर के साथ सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो श्यामधर ने उनके सौभाग्य की प्रशंसा की, भरे पूरे परिवार के बीच षष्ठपूर्ति के उनके आनंद को बढ़ाने वाले दो तीन मीठे बोल भी बोले। एक संकट को पार करने की तरह उन्होंने केक काटने और मोमबत्तियाँ बुझाने का उपक्रम किया, कुछ उपहारों का आदान प्रदान भी हुआ। श्यामधर, विनोद कुमार और त्रियुगी नारायण ने रास बिहारी को उपहार में किताबों के पैकेट दिए और रास बिहारी के साथ उनके लिए बनाए गए विशेष कॉर्नर पर जा बैठे। विनीता ने उन सब के लिए खाने की प्लेटें लगाकर वहीं सर्व कर दी। सभी खाना खाने लगे। श्यामधर ने बात छेड़ी, यार रास बिहारी, अब तो तुम अपनी किताब छपवा सकते हो, समय भी है और ग्रेचुटी का पैसा भी। विनोद कुमार ने भी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ यार इसकी ये इच्छा कितने वर्षों से इसमें कुलबुला रही है। तभी त्रियुगी नारायण ने श्यामधर को उलाना देते हुए याद दिलाया, श्यामधर किताब छपवाने की तो तेरी भी तमन्ना थी। श्यामधर ऐसे ही सवाल की प्रतीक्षा में थे, बोले क्या बताऊँ, बंगला बनाने में ही 50 लाख लग गए, आजकल कार के बिना भी तो काम नहीं चलता, अभी एसी कार खरीदी है। श्यामधर की बात जारी थी कि रास बिहारी को ठसका लगा, उन्होंने 2 घूंट पानी पिया, उन्हें फिर पिछड़ जाने की कुंठा ने घेर लिया। श्यामधर सहित मित्रों ने स्वादिष्ट खाने की तारीफ करते हुए रास बिहारी से विदा ली। छत का समारोह भी लगभग समापन की ओर था। रास बिहारी जब अपने कमरे में जाने लगे तो उन्हें बगल के कमरे में तेज हलचल दिखाई दी। रामानंद, सदानंद और दामाद तीनों अपने मित्रों के साथ जाम टकरा रहे थे। दामाद का स्वर सुनकर वह कुछ ठिठके, बाबूजी के संपर्क अब मेरे काम आ रहे हैं, विभाग में सब इंजीनियर होकर भी वहाँ की ऊपरी आमदनी के सभी जरिए मेरी सीट से होकर जाते हैं, आज का सारा आयोजन भी ठेकेदार के सौजन्य से है। रामानंद का स्वर था, औद्योगिक क्षेत्र की बैंक में होने के कारण एक कंपनी ने यह कार मुझे भेंट की है, वो तो लग्जरी दे रहे थे, मैंने ही कहा छोटी कार ठीक रहेगी, आखिर चलाने का खर्च तो मुझे ही उठाना है। उसकी इस चतुरता पर सभी हंसे। तभी सदानंद के एक चमचे का स्वर रास बिहारी के कानों में पड़ा, भैया सदानंद को धंधे में कल ही 5 लाख का फायदा हुआ है, अच्छे अच्छे भूमाफिया सदानंद के आगे पीछे घूमते हैं। रास बिहारी वहाँ ज़्यादा देर न ठहर सके, उनके अंतर मन के संघर्ष ने एक नया रूप अख्तियार कर लिया था, एक तरफ उनका अतीत था तो दूसरी तरफ वर्तमान, वे अपने आसपास के आदर्श और अनादर्श से जूझ रहे थे। उन्हें लगा कि नैतिकता के जो आदर्श संस्कारों में उन्हें मिले, कम से कम उन्होंने तो आज 60 साल की उम्र तक उन्हें निभाया, ये अलग बात है कि वे इन संस्कारों को आगे नहीं बढ़ा सके, और वे क्या इस देश काल में कोई भी इन संस्कारों को आगे नहीं बढ़ा सका, इस लिहाज से वे पराजित नहीं हैं। इस बोध से उनका मन हल्का हुआ। जीत के इस एहसास के साथ उपहार में मिली किताबों को देखने के लिए जब उन्होंने पैकेट खोले तो उसमें गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने लेटकर पढ़ने की अपनी चिर परिचित मुद्रा जमाई, घर की व्यवस्था अध्याय पढ़ने लगे। अब उनके चेहरे पर अपने ईमानदार 60 साल होने का विजयी भाव था। पढ़ते पढ़ते न जाने कब उनकी आँख लग गई। पत्नी ने आकर देखा तो वे गहरी नींद में थे, हौले से किताब हटाई तो देखा चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। पत्नी ने मुस्कुराते हुए लाइट ऑफ कर दी।
0: अभी आप सुन रहे थे कहानी अपने अपने आदर्श, कहानीकार थे सुरेश सम्राट। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं जैसा कि आप सभी जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला एक पवित्र भारतीय पर्व है जो महर्षि वेदव्यास की जयंती और गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित है। इस दिन लोग अपने गुरुओं का आदर करते हैं, उनका पूजन करते हैं और जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। इस दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिन्हें वेदों के विभाजन और पहला ज्ञान देने के कारण आदिगुरु माना जाता है। गुरु वह शक्ति है जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर सही और ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने सप्त ऋषियों के योग का ज्ञान दिया था और वे पहले गुरु बने थे।

आइए गुरुओं की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनते हैं। आवाज़ है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत चित्रगुप्त का।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आज है गुरु पूर्णिमा विशेष। हमने अपने वेद और पुराणों में सुना है गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है जो हमें ज्ञान का जन्म देते हैं, गुरु ही विष्णु हैं जो हमारे ज्ञान और जीवन का पालन करते हैं, और गुरु ही महेश्वर हैं जो हमारे अज्ञान का नाश करते हैं। ऐसे साक्षात परब्रह्म स्वरूप गुरु को मेरा बार बार प्रणाम है। इस गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा। तो आइए सुनते हैं ये अगला गीत, जो है वाणी जयराम और साथियों के स्वर में फिल्म गुड्डी से, जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत है वसंत देसाई का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा विशेष। श्रोताओं कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ सामने खड़े हों तो सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुँचने का मार्ग बताते हैं। गुरु के बिना सच्चे ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति कठिन है, इसलिए गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

स्वर हैं पुष्पा पगडारा और सुष्मिता श्रेष्ठ के, संगीत है कुलदीप सिंह का, फिल्म है अंकुश। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा विशेष। अज्ञान तिमिर रांधस्य ज्ञानार्जन शलाघया चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं, वे ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारी बुद्धि और दृष्टि को जागृत करते हैं। गुरु हमें सत्य सदाचार सफलता का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे महान गुरु को श्रद्धापूर्वक नमन है और ऐसे गुरु की सविनय निवेदन करना चाहिए कि वो अपने सानिध्य में अपने शिष्यों को रखे, जिससे उनका जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। इन्हीं पंक्तियों के साथ अगला गीत पन्हा फिल्म से है। गीत है विश्वेश्वर शर्मा का और संगीत नदीम श्रवण का। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है साधना सरगम, सारिका कपूर और नदीम श्रवण ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा विशेष। अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरम तत्पद दर्शिता येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, अर्थात गुरु हमें उस परम सत्य का ज्ञान कराते हैं जो पूरे संसार में व्याप्त है। वे हमें ईश्वर और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हैं। गुरु जीवन के अज्ञान को दूर कर सत्य का मार्ग दिखाते हैं। गुरु का सानिध्य जीवन को ज्ञान, शांति और सफलता से भर देता है। इसलिए गुरु का सम्मान और सेवा करना प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है और ऐसे परम पूज्य गुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ। फिल्म का नाम है पुकार, इसे अपने सुरों से सजाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। गीत को लिखा है मजरू जावेद ने। और संगीत है AR रहमान का। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ति और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
6: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
4: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
7: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर

0: भीड़ नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।

0: केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किस्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी

0: और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले दो दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है POK में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments, Lok Sabha to resume discussion on public examinations prevention of unfair means, Amendment Bill 2026 today, Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30.

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रगति चौहान के भजन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रगति चौहान के भजन। आइए सुनते हैं उनके स्वर में ये भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं प्रगति चौहान के भजन।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रगति चौहान के भजन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम भजन।

0: अब समय हो गया है इस घंटे की खास खबरों का।
1: आ गया नया किड बैग।
2: आरबीआई कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
4: पेश है इस घंटे की खास खबरें। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। विधेयक में हर राज्य में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और युवाओं को इससे जोड़ने की जरूरत बताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योग जगत के साथ मिलकर नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आज भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री वन्यजीव संरक्षण के लिए मिले वाहनों का लोकार्पण करेंगे। वे विभागीय प्रकाशनों का विमोचन और वृत्तचित्रों के टीजर भी रिलीज करेंगे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज पूरे प्रदेश में महर्षि सांदीपनी गुरु पर्व मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में गुरु पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश सरकार ने 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें 4 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। शेड्यूल कलेक्टर मिशा सिंह की पोस्टिंग बदलकर अब नगरीय विकास विभाग भोपाल में अपर आयुक्त रूप में की गई है। और मौसम विभाग ने आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देवास, सीहोर, हरदा सहित 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 9 बज रहे हैं। अब समय है सूचना समाचार और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।

सूचना समाचार और नगमो के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आशी राठौर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। श्रोताओं, आज है 29 जुलाई 2026। आज के दिन को हम गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाते हैं। साथ ही आज के दिन को हम अरुणा आसफ अली की पुण्यतिथि, जहांगीर रत्न दादा भाई टाटा की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में जानते हैं। श्रोताओं, गुरु वह दीप है जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन को ज्ञान के प्रकाश से अलंकृत करते हैं। गुरु केवल शिक्षा नहीं देते बल्कि जीवन जीने की कला, संस्कार, सत्य और कर्तव्य का मार्ग भी दिखाते हैं। भारत की संस्कृति में यदि माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया है तो शिक्षक और सद्गुरु को जीवन का पथ प्रदर्शक माना गया है। हमारे शास्त्रों में गुरु का स्थान देवताओं से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इस गुरु शिष्य परंपरा के सम्मान में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने गुरुओं का आदर करते हैं, उनका पूजन करते हैं और जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। इस दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्हें वेदों के विभाजन और पहला ज्ञान देने के कारण आदि गुरु माना जाता है। श्रोताओं, गुरु वह शक्ति है जो ज्ञान, संस्कार और आत्मविश्वास का संचार करते हैं। जिस जीवन में गुरु का आशीर्वाद होता है वही जीवन सफल और सार्थक बनता है। इसके साथ ही आज के दिन भारत के ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती है। जी हाँ, जहांगीर रत्न जी दादा भाई टाटा। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो केवल उद्योग नहीं खड़े करते बल्कि अपने विचारों, मूल्यों और कर्मों से राष्ट्र के विकास की नई दिशा निर्धारित करते हैं। ऐसे ही महान उद्योगपति, दूरदर्शी प्रबंधक, समाज सेवी और भारत से

नागरिक उड़ान के जनक थे जहांगीर रतनजीत दाता भाई टाटा, जिन्हें हम प्रेम और सम्मान से जेआरडी टाटा के नाम से जानते हैं।

परिवार के प्रतिष्ठित उद्योगपति थे और उनकी माता फ्रांसिसी थी। बचपन से ही जीआरडी टाटा में अनुशासन, जिज्ञासा, परिश्रम और नई चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस था। यही गुण आगे चलकर उन्हें भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में शामिल करने का आधार बने। वर्ष 1938 में मात्र 34 वर्ष की आयु में वे टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने इस्पात, ऊर्जा, रसायन, होटल, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। उन्होंने उद्योगों को केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं माना, बल्कि समाज की उन्नति और राष्ट्र निर्माण का साधन माना। जेआरडी टाटा को भारत में नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है। वर्ष 1932 में उन्होंने स्वयं विमान उड़ाकर भारत की पहली वाणिज्यिक हवाई डाक सेवा की शुरुआत की। यही सेवा आगे चलकर एयर इंडिया के रूप में विकसित हुई और भारत को अंतर्राष्ट्रीय विमानन जगत में नई पहचान मिली। वे कर्मचारियों के कल्याण के भी प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि किसी भी संस्था के सबसे बड़ी शक्ति उसके कर्मचारी होते हैं। उन्होंने कार्यस्थल पर सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर कार्य परिस्थितियों को विशेष महत्व दिया। यही कारण है कि आज भी टाटा समूह अपने नैतिक मूल्यों और कर्मचारी हितैषी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। जेआरडी टाटा शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य अनुसंधान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी समान रूप से समर्पित रहे। उन्होंने सदैव ईमानदारी, गुणवत्ता, अनुशासन और उत्कृष्टता को अपने जीवन का आधार बनाया। उनका व्यक्तित्व यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज और राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखे। राष्ट्र के प्रति उनके असाधारण योगदान को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। आज उनकी जयंती पर हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए यह संकल्प लें कि हम अपने कार्य में ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाएंगे। यदि प्रत्येक नागरिक अपने कार्य को राष्ट्र सेवा का माध्यम बना ले तो भारत निश्चित ही अधिक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनेगा। सफलता केवल ऊंचाइयां प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उन ऊंचाइयों से समाज और राष्ट्र को ऊपर उठाने में है। जेआरडी टाटा का जीवन इसी महान विचार का प्रेरणादायक उदाहरण है। आइए उनकी जयंती पर हम सब उनके आदर्शों का अनुसरण करने और ईमानदारी, उत्कृष्टता साथ ही राष्ट्र सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। आज के कार्यक्रम में बातें आपसे अभी और भी करेंगे, उससे पहले रुककर सुनते हैं ये गीत।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक बार फिर आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोताओं, आइए सुनते हैं मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण चुनौतियों और संभावनाएं विषय पर उत्तम कुमार शर्मा, आईएफएस क्षेत्र संचालक माधव टाइगर रिजर्व शिपरी से डॉक्टर विभूति सिंह की फोन आउट बातचीत।
4: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम के इस भाग में। ग्लोबल टाइगर डे आज मनाया जा रहा है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है और माधव टाइगर रिजर्व

0: इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस विशेष अवसर पर हम बातचीत कर रहे हैं माधव टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर श्री उत्तम कुमार शर्मा जी से। उत्तम कुमार शर्मा जी भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो आइए जानते हैं बाघ संरक्षण से जुड़ी अहम बातें। शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: सर, बताइए कि ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर माधव टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण की वर्तमान स्थिति को किस तरह देखते हैं?
1: माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे नया टाइगर रिजर्व है। माधव टाइगर रिजर्व में आज से 60 से 70 साल पहले प्राकृतिक रूप से टाइगर पाए जाते थे, लेकिन पिछले 50-60 साल टाइगर यहाँ पर नहीं रहे और 2023 में हम लोगों ने फिर से टाइगर यहाँ बसाने की दिशा में प्रयास शुरू किए। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये प्रयास किए गए और 2023 से आज तक हम लोग 5 टाइगर दूसरे मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व से लाके यहाँ पे बसाए हैं और हमारे लिए खुशी की बहुत बड़ी बात है कि नई पीढ़ी भी जो टाइगरों की है वो यहाँ पे जन्म ले चुकी है। 2 चावक टाइगर भी हम लोगों के पास में है जो लगभग 2 साल के हो गए हैं। इस प्रकार अपना बाघों की पुनर्स्थापना का जो कार्यक्रम माधव टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ वो अभी यहाँ चल रहा है और बाघ यहाँ पे पुनर्स्थापित हो, यहाँ जो बाघ बढ़े उनकी संख्या बढ़े, इस दिशा में हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं।
0: माधव टाइगर रिजर्व में बाघों का संरक्षण और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रमुख प्रयास हैं जो किए जा रहे हैं?
1: हम लोग सामान्यतः टाइगर रिजर्व में टाइगर सुरक्षित रहे, उसको खाने को पर्याप्त मात्रा में मिले, उसके रहने का स्थल जिसे हम हैबिटेट कहते हैं वो उसके अनुरूप बना रहे और उसको संगी साथी मिले, ये इस दिशा में हमारे सारे मैनेजमेंट के प्रयास होते हैं। माधव टाइगर रिजर्व अभी पिछले साल तक बड़ा छोटा सा एक एरिया हुआ करता था 375 वर्ग किलोमीटर का, लेकिन पिछले साल इसमें हमने लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और जोड़ा है। तो जो पहले 375 वर्ग किलोमीटर का जंगल माधव टाइगर रिजर्व में था वो बढ़ के अब करीबन 1650 वर्ग किलोमीटर का हो गया है। तो ये सबसे पहला हमारा कदम था कि क्षेत्र बढ़े जिससे टाइगरों को सुरक्षित स्थल मिल सके, ज्यादा बड़ा स्थल मिल सके और टाइगरों की संख्या जो यहाँ पर बढ़ेगी उनके बीच में आपसी द्वंद्व ना हो, इसलिए वो बड़ा एक जगह टाइगर के लिए हम लोगों ने अवेलेबल कराया है। तो उसके बाद में यहाँ पे टाइगर के खाने के लिए जो प्रे है, प्रे पॉपुलेशन बढ़े, शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़े, इस दिशा में हमारे द्वारा हैबिटेट इंप्रूवमेंट के काम किए जा रहे हैं, पानी के स्रोतों का विकास किया जा रहा है, घास मैदान हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो भी वीड या फॉरेन क्रॉप हमारे अंदर आ जाती है उसको हम हटाते हैं। तो ये सारे कार्य जो है वो हम लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। सुरक्षा जिसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि ये पार्क एक बड़ा यूनिक पार्क है क्योंकि शिवपुरी शहर से लगता हुआ पार्क है, तो जानवर की सुरक्षा साथ ही जानवर से आदमियों की सुरक्षा, शहरी लोगों की सुरक्षा, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो उस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारे काम हम लोग लेके पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आगे आने वाले कुछ सालों में हमारा फोकस इन्हीं कामों पर रहेगा।
0: अभी आपने हैबिटेट की बात करी, तो ये जो प्राकृतिक आवास है बाघों के लिए और अधिक अनुकूल बनाने के लिए कोई खास कदम उठाए जा रहे हैं क्या?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि बाघ के लिए 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक उसको फूड मिले, दूसरा उसका हैबिटेट सुरक्षित हो और तीसरा उसको मेट मिले। तो हैबिटेट बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टाइगर के हैबिटेट की जब हम बात बोलते हैं तो टाइगर के हैबिटेट के रूप में मतलब शाकाहारी जानवर उस क्षेत्र में रहे, इस पे हमारा फोकस रहता है। तो शाकाहारी जानवर रहे और उनकी संख्या बढ़े, इसके लिए हम हैबिटेट मैनेजमेंट के प्रयास करते हैं। तो उसमें पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ाना वो टाइगर के लिए भी जरूरी है और शाकाहारी जानवरों के लिए भी जरूरी है। हमारे घास मैदान को हमने अच्छे बनाए रखना है ताकि उसमें खाने वाली प्रजाति की घासों की संख्या बढ़े, वीड्स कम आए, अनपैलेटेबल घास जो है वो कम आए, उनकी सफाई लगातार हम करते रहे जिससे शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़े, ये प्रयास हमारे द्वारा लगातार किए जाते हैं। तो हैबिटेट में जैसे मैंने अभी भी कहा था कि एक प्रोटेक्शन भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि किसी भी प्रकार का कोई खतरा, चाहे वो शिकार से हो या किसी अन्य रूप में हो, वो भी हमें देखना पड़ता है, उससे भी हमें हैबिटेट को बचाना पड़ता है। तो ये विशेष काम जो है वो हम लोगों द्वारा किए जा रहे हैं हैबिटेट इम्प्रूवमेंट में।
0: स्थानीय समुदाय की भागीदारी, जो लोकल पॉपुलेशन है वहां पर, तो बाघ संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इस दिशा में कोई पहल की जा रही है क्या?
1: हाँ देखिए, किसी भी जगह में बाघों का पुनर्स्थापन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और ये बिना लोकल लोगों के सहयोग के नहीं किया जा सकता। अभी जो हमारी जनरेशन है, जो लोग रह रहे हैं माधव टाइगर रिजर्व के आसपास, उन लोगों ने 50-60 साल से टाइगर प्राकृतिक रहवास में नहीं

0: फॉरेस्ट टाइगर को यहाँ पे लाना, लोगों और टाइगरों के बीच में कोई द्वंद्व ना हो किसी भी कारण से, इसके लिए यह सुनिश्चित करना बड़ा आवश्यक है कि लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहें। तो हमारे द्वारा लोगों को सतत इसमें जोड़ा जाता है, विशेष रूप से जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार एक अनुभूति के रूप में एक स्कूली बच्चों को प्राकृतिक वन्य प्राणियों के बारे में, प्राकृतिक आवास के बारे में, जंगलों के बारे में अवेयर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाती है। वो मादा टाइगर रिजर्व में भी बहुत जोरों जोशों खरों से वो प्रोग्राम चलता है, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा स्कूली बच्चों को हम एक दिन के लिए जंगल में लाते हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो ये प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, साथ में जो आसपास गांव में रहने वाले लोग हैं उनसे हमारे लगातार संवाद इसमें रहता है, उनको हम किसी न किसी रूप में जोड़ के रखते हैं। और उसके साथ जो टाइगर आने से टूरिज्म बढ़ता है, क्योंकि टूरिस्ट टाइगर को देखने आते हैं, जिससे टूरिज्म बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो वो बढ़ी हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी का फायदा यहाँ के लोकल लोगों को मिले, ये भी हम इंश्योर करते हैं। चाहे वो होटल हो या होटल में काम करने वाले लोग हों, चाहे हमारी गाड़ियां अंदर सफारी के में जाती है उसमें ड्राइवर के रूप में काम करें या हमारे जो गाइड है वो काम करे, तो हमारा प्रयास रहता है कि लोकल लोगों को उसमें जोड़कर उनको ये बढ़ी हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी के लाभ पहुंचाए। तो ये हमारा सतत प्रयास है और हमारा ये विश्वास भी है कि बिना लोगों को जोड़े हुए, बिना लोकल लोगों को इन चीजों में सम्मिलित किए हुए टाइगर रीइंट्रोडक्शन या टाइगर को बचाना बिल्कुल असंभव है। लोगों को जोड़ना हमारे लिए आवश्यक है और हमारे प्रयास उस दिशा में बिल्कुल चल रहे हैं।
1: अंत में हमारे श्रोताओं, विशेष रूप से जो युवा हमें सुन रहे हैं, उनको बाघ संरक्षण और वन्य जीवों के प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, बाघ जो है वो पूरे विश्व में बहुत ही कम संख्या में है और बाघों का जो 75% संख्या है वो भारत देश में पाई जाती है। खुले जंगलों में अगर बाघ 75% पूरी विश्व का भारत देश में पाया जाता है और पूरे विश्व स्तर पर बाघों के संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। हम लोग 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। 2010 से ये प्रक्रिया शुरू हुई जब सेंट पीटर्सबर्ग में इस प्रकार का दिन मनाने का, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। और एक और बहुत खास बात उस सेंट पीटर्सबर्ग समिट में थी कि अगले 12 सालों में, मतलब 2022 तक, टाइगरों की संख्या को डबल करने का संकल्प लिया गया था
1: जी।
0: और उसमें साथ साथ ये भी बात सामने आई थी कि जब तक हम युवाओं को इस प्रोसेस से नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारे ये प्रयास जो है वो पूरी तरह से सार्थक नहीं होंगे। टाइगर भारत के केस में विशेषकर टाइगर जो है वो ना सिर्फ हमारी प्राकृतिक विरासत है बल्कि एक हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। और ये प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत हमारी भविष्य में बनी रहे, जो हम आज टाइगर, हमारी जनरेशन जो आज टाइगर को देख रही है, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी ये टाइगर इसी रूप से खुले में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए टाइगरों को जंगलों में देख सके, इसके लिए हमको सबको मिलजुल के प्रयास करना होगा। और मैं यही आह्वान करता हूँ कि युवा पीढ़ी जो भविष्य में इस दिशा में काम करेगी वो सहयोग करे, जिस भी रूप में सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो सरकार से मिलके सहयोग करे या गैर सरकारी संस्थाएं भी इस फील्ड में बहुत सारी काम कर रही हैं, उनसे जुड़ के सहयोग करें। और जब भी उनको कुछ ऐसा मौका मिले जहां बाघों के संरक्षण के लिए कुछ काम किया जा सकता है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कुछ काम किया जा सकता है, उसमें आगे आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, जिससे ना सिर्फ हमारे आज के लिए हम वन्य प्राणी और बाघों को बचा सके बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम लोग उनको सुरक्षित कर सके।
1: जी, बहुत सकारात्मक संदेश दिया आपने। ग्लोबल टाइगर डे पर अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय देने के लिए, फोन के माध्यम से इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।
2: गुड मॉर्निंग ग्वालियर के इस भाग में अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण चुनौतियों और संभावनाएं विषय पर IFS उत्तम कुमार शर्मा, क्षेत्र संचालक माधव टाइगर रिजर्व शिवरी से डॉक्टर विभूति सिंह की फोन पर बातचीत। श्रोताओं, वो कहते हैं ना, हमें भी अपने पर्यावरण का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए और इस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, वनों को सुरक्षित रखेंगे, वन्य जीवों का सम्मान करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर व संतुलित पृथ्वी का निर्माण करेंगे। किसी ने कहा है कि दहाड़ नहीं, यह प्रकृति का सम्मान है। बाघ हमारे जंगलों की पहचान है। जंगल बचेंगे तभी जीवन बचेगा, यही मानवता का सच्चा अभियान है। बाघ बचाएंगे, जंगल बचाएंगे और जंगल

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना समाचार और नगमों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं अनिकेत तारलेकर का वायलिन वादन। राग है अहीर भैरव। आइए सुनते हैं अनिकेत तारलेकर का वायलिन वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनिकेत तार्लेकर का वायलिन वादन। राग था अहिर भैरव। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बज रहे हैं। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सुनते हैं रायसेन जिले की चिट्ठी, आलेख विनीत माहेश्वरी का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी, आलेख विनीत माहेश्वरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। रायसेन जिले के सांची में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित सांची रेलवे स्टेशन का लोकार्पण बीते दिनों राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मौजूदगी में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में आयोजित कार्यक्रम से इस स्टेशन का वर्चुअली लोकार्पण किया। सांची में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि इस योजना से पुराने रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। पुनर्विकसित सांची रेलवे स्टेशन पर बेहतर यात्री सुविधाएं, स्वच्छता और सुगम आवागमन की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी क्रम में सांची में 40 करोड़ रुपए से अधिक लागत के बने नए शासकीय सांदीपनी विद्यालय भवन का लोकार्पण भी किया गया। प्रदेश के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा कि यह सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि भविष्य के नागरिकों को तैयार करने का केंद्र है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार, कौशल विकास और खेल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को बेहतर तरीके से निखार सकेंगे। रायसेन कलेक्ट्रेट में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक बीती

दिनों आयोजित की गई। इस बैठक में जल जीवन मिशन के तहत जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में स्वीकृत 755 नल जल योजनाओं में से 642 योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष योजनाओं पर काम जारी है। वहीं रायसेन जिले के सनखेड़ी गाँव में नए बिजली उपकेंद्र का लोकार्पण बीते दिनों किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपकेंद्र का शुभारंभ किया। करीब 2,90,00,000 रुपए की लागत से बने इस उपकेंद्र से सनखेड़ी सहित आसपास के 9 गांवों को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में बीते दिनों सरकारी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बोर्ड परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए आगामी सत्र की कार्य योजना पर चर्चा की गई। रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आयोजित कार्यक्रम में बीते दिनों 305 हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त की राशि जारी की गई। सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने एक क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर 315 परिवारों को आवासीय पट्टों का वितरण भी किया गया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत रायसेन में बीते दिनों एक विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, पुलिसकर्मियों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। खरीफ फसल 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। किसानों को योजना की जानकारी देने और अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के उद्देश्य से रायसेन में फसल बीमा जागरूकता रथ रवाना किया गया। ये रथ गांव-गांव पहुंचकर किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान पर मिलने वाली बीमा सुरक्षा और दावा प्रक्रिया की जानकारी दे रहा है। कृषि विभाग के अनुसार रायसेन जिले में खरीफ मौसम के लिए उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। जिले में अब तक करीब 1,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुआ है, जिसमें से करीब 64,000 मीट्रिक टन का वितरण किसानों को किया जा चुका है। उपसंचालक कृषि केपी भगत ने बताया कि वर्तमान में जिले में करीब 42,000 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है और किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार नई रैक प्राप्त हो रही है। रायसेन जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का कार्य 53 उपार्जन केंद्रों पर जारी है। जिले में करीब 45,000 किसानों का पंजीयन किया गया है, जिसमें से करीब 32,000 किसानों ने अपने स्लॉट बुक किए हैं। अब तक करीब 9,000 किसानों से करीब 80,000 क्विंटल मूंग का उपार्जन किया जा चुका है। वहीं जिले में इस वर्ष मानसून के दौरान 1 जून से 28 जुलाई तक कुल 412.6 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। भू संसाधन प्रबंधन विभाग के अनुसार जिले में सबसे अधिक बारिश गैरतगंज में 531.4 मिलीमीटर और उदयपुरा में 496 मिलीमीटर दर्ज की गई। पिछले वर्ष इसी अवधि में जिले में 767.5 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संपर्क अभियान के तहत रायसेन जिले के ग्राम बमोरी में किसान संजय कुशवाहा की वर्षों पुरानी बिजली समस्या का समाधान किया गया। कंपनी ने उन्हें ओन योर ट्रांसफार्मर योजना की जानकारी देकर स्थायी कृषि बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया। करीब 1,40,000 रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर लगने के बाद अब उन्हें हर साल लगभग 24,000 रुपए की बचत होगी। रायसेन जिले की चिट्ठी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जिले की गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की पहली फरमाइश है सेक्टर 7 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश है कोली महल्ला छबड़ा से नूर बानो, सलमा बानो और बेबी रुखसार। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म मिलन से इस गीत को। स्वर हैं लता मंगेशकर और मुकेश के, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड।

0: लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है और प्रसारित हो रहा है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की फरमाइश है इस गीत को सुनने के लिए। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म आया सावन झूमके से इस गीत को अपने सुरों से सजाया है लता और मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश है आप सबकी। आप हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश है मालवा रेडियो श्रोता संघ बमलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर आप सबके लिए ये गीत।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आप सबकी। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। साथ ही गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिंगलानी, सीमा। विशाल मिंगलानी, सुप्रिया। अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह और रमेश मिंगलानी। आप सब सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर लम्हे फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है शिव हरि ने और इस गीत को अपने सुरों से सजाया है लता मंगेशकर और एला अरुण ने। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म मंजिल से, संगीत है आरडी बर्मन का और बोल हैं योगेश राठौड़ के। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है लता मंगेशकर ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश है आप सबकी। आप हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ से। प्रमलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा। ग्राम पंचायत बठीना चौटादर सारा गांव से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृति वर्मा। इस गीत को सुनने की फरमाइश है डावली से अलिका, बसंत सिंह, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े, दंतरेगी से भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। आप सब सुनना चाहते हैं राजनीति फिल्म से ये गीत, जिसे बोल दिए हैं इरशाद कामिल ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने और आवाज़ है मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की। आइए सुनते हैं अपनी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

आकाशवाणी ग्वालियर से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत है दिल तो पागल है फिल्म से, बोल है आनंद बख्शी के, संगीत उत्तम सिंह का और आवाज़ लता मंगेशकर और उदित नारायण की। इस गीत को सुनने की फरमाइश है आप सबकी। आप हैं मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, बेबी निशा और लाडली, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, मन्नत गुरकीरत राहुल, गुरशब सिंह राहुल, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहवाकर, निर्मला और विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष, गांव लोहागढ़ ठाकुरवाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है और प्रसारित हो रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। फिल्म पटियाला हाउस से इस गीत को सुनने की फरमाइश है आप सबकी, जिसे लिखा है अन्विता दत्त, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और स्वर है महालक्ष्मी अय्यर और हार्डकोर के। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। मारहरा दरवाज़ा ईटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से ज़ुबैर अली खान, सबिहा अंजुमन खान। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबिहा मुजावर, मिखाइल और जनेब मुजावर। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर पटियाला हाउस फिल्म का ये गीत।
1: This is

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैज़ल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण। इस गीत को सुनने की फरमाइश है नसीब रेडियो श्रोता संघ नागार्जुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, ज़ियाउल हक डावर, भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, संचित वैल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत प्रणाली सानवी और हर्षिता देशमुख। आप सब सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर चीनी एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने और स्वर हैं चिन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर के। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर पर फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपके पसंद के गीत सुनवाते हैं। अगर आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425702768। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 9425702768। फिल्म और गीत के नाम के साथ साथ अपना नाम और पता हमें लिख भेजें।

0: विलास खानी तोड़ी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। विधेयक में हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस दौरान वन्यजीव संरक्षण के लिए मिले वाहनों का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश भर में आज आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में आयोजित गुरु पूर्णिमा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में भी गुरुओं के सम्मान के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था ई विकास को वैध ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा कि ये व्यवस्था केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है, जिसमें अदालत सीमित मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकती है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी आज से समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत कर रही है, जो 20 फरवरी तक 5 चरणों में चलाया जाएगा। नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान के तहत इंदौर पुलिस ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के प्रतिनिधियों ने इस उपलब्धि की पुष्टि की है। और भोपाल के निषादपुरा रेलवे स्टेशन का कल औपचारिक शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां से मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही ये स्टेशन भोपाल का चौथा रेलवे स्टेशन बन गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से लेकर 11 बजे तक, और हमारा फोन नंबर है 2660902, एसटीडी कोड है 0755। आपके फोन कॉल्स का इंतजार है, फोन कीजिए और सुनिए अपने पसंदीदा गीत। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, किन से बात हो रही है?
2: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
1: जीनत परवीन जी, कैसी हैं आप?
2: जी अच्छी हूँ मैम।
1: क्या करती हैं जीनत परवीन जी?
2: हाउसवाइफ हूँ।
1: अच्छा, और क्या शौक है आपके? मतलब एक तो हम समझ गए कि आपको गीत सुनना पसंद है।
2: गाने सुनना, पढ़ना।
1: अच्छा, क्या पढ़ती हैं?
2: पेपर पढ़ती हूँ वैसे तो डेली। स्टोरी पढ़ती हूँ या तो।
1: अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
2: फिल्म का नाम है कच्चे धागे, पुरानी है ना?
1: जी
2: जी, उसका गाना है मेरे बचपन तू जा, जा जवानी को ले आ, जा रे जा मेरे दिल का वास्ता, ये वाला।
1: जी बिल्कुल, लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, उपलब्ध है हमारे पास, आपको सुनवाते हैं।
2: जी शुक्रिया मैम,
1: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करी गीत सुने।
1: नमस्कार सर जी, मैं श्री चंद्र निषाद, ग्राम जलालपुर, जिला बांदा, तहसील बदेरू से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक है जी।
0: क्या चल रहा है आपके यहाँ बांदा में?
1: मैं तो किराने की दुकान हूँ, दिव्यांग हूँ, किराने की दुकान है उसी में बैठा रहता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, किराने की दुकान चलाते हैं आप तो। ये अभी गर्मियों में तो बांदा बहुत गर्म हो गया था, अभी क्या हाल है?
1: जी बहुत, अभी भी उमस चल रही है, जिस दिन पानी गिर गया थोड़ी राहत मिल जाती है
0: जी,
1: वरना पानी जहाँ निकल गया था बड़ी उमस होती।
0: तो पानी गिर रहा है? अच्छा,
1: पानी कल गिरा था थोड़ा,
0: अच्छा
1: अभी थोड़ा कम ही गिर रहा है, ज्यादा पानी नहीं गिर रहा।
0: जितनी आवश्यकता है उतना नहीं गिर रहा होगा।
1: जी जी जी
0: अच्छा, चलिए बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: टूट के डाल से हाथों पे बिखर जाती है,
0: ये गीत उपलब्ध है हमारे पास, आपको सुनवाते हैं।
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: जी धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें कि सुने
1: नमस्कार दीदी। दीदी
0: जी, किन से बात हो रही है?
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ, सारनाथ वाराणसी से। जी
0: बाबू यादव जी, वाराणसी से, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया दीदी, और आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या चल रहा है वाराणसी में?
1: दीदी यहाँ कांवरियों का भीड़ लगा हुआ, सामान आने वाला है
0: हाँ
1: तो कांवरिया धीरे धीरे आ रहे हैं,
0: जी,
1: और यहाँ का मौसम भी बढ़िया हो गया है क्योंकि रुक रुक कर बारिश यहाँ बीच बीच में हो रही है,
0: जी
1: तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। दी
0: बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं बाबू यादव जी?
1: मेरी दुकान है जनरल स्टोर के सारनाथ में।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज दीदी क्योंकि यहाँ का मौसम बढ़िया सावन की तरह हो गया है, तो चुपके चुपमे पे एक गाना है कि अब की सजन सावन में, ये वाला हमको सुनाइएगा।
0: बहुत अच्छा गीत है, बहुत सुंदर।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्ते मैडम। नमस्ते,
0: किनसे बात हो रही है?
1: जगत सिंह चढ़ार बोल रहा है मैडम जी, ग्राम पिपलिया बराई तहसील बिगौन जिला रायसेन।
0: रायसेन से जगत सिंह जी, कैसे?

0: से हैं आप?
1: जी बढ़िया है। आप लोगों की ऊपर की कृपा है, सब ठीक है
0: अच्छा, क्या करते हैं जगत सिंह जी?
1: जी। मैडम जी दुकान करें किराने की
0: किराने की दुकान करते हैं।
1: जी।
0: अच्छा, और रायसेन में? हम तो भोपाल में ही हैं, तो हम मौसम तो जानते हैं किस तरह से है।
1: जी, आपके यहाँ से तो हमारे यहाँ आता है मौसम,
0: हाँ।
1: थोड़ा थोड़ा गिर रहा है पानी हमारे यहाँ सुबह से।
0: और ठंडक है उतना, मतलब जितना आवश्यक है उतना पानी गिर रहा है?
1: नहीं मैं अबे 3 दिन खुल गया तो 3 दिन के पहले ही गिरा था पानी अच्छा, और आज सुबह से फिर रिमझिम लग गई थोड़ी थोड़ी। हाँ ठंडक सी तो आ गई है अभी
0: अच्छा जी,
1: जी।
0: तो गीत बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं फिर?
1: जी हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो हम आपको और रानू दीदी को वो कोयल सी तेरी बोली जो गाना सुनना चाहते हैं मैडम, बेटा फिल्म का।
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं ये गीत बेटा फिल्म से।
1: और आप लोगों से हमें बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, अगर प्रोग्राम सुनते हैं तो हमें बहुत बातें मिलती हैं आपसे, रेडियो से हम बहुत कुछ सीख गए, क्योंकि मैं तो दिखता भी नहीं है फिर
0: हाँ जी,
1: भी मैं बहुत बातें सीख गए रेडियो से।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप श्रोताओं का इस तरह फोन आता है और आप अपनी फरमाइशें बताते हैं।
1: क्योंकि मैं फोन लगाते दिखता नहीं है, फोन लग जाता तो मैं बहुत खुश होता कि
0: अरे
1: हमारा फोन लग गया। नमस्ते
0: वाह, बहुत बहुत
1: मैडम।
0: धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करने गीत सुने।
1: जी नमस्ते मैम, मैं नंदिनी तिवारी बोल रही हूँ।
0: नंदिनी जी, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है
1: फिलहाल? तो हम कॉल ही लगा रहे थे और क्या, बैठे थे अभी।
0: अच्छा, कहाँ से बात करी नंदिनी?
1: सागर से।
0: सागर
1: और आप
0: से?
1: रक्षा मैम है ना?
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: और आज मुझे गाना सुनना है,
0: बताए।
1: मूवी का नाम है हेट स्टोरी 3,
0: जी
1: बजा तुम हो।
0: सुनना
1: डैडी के
0: चाहते हैं।
1: आपको रानू दीदी को रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में
1: नमस्ते,
0: फोन करने
1: बाय।
0: के लिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: परम माननीय दीदी, सादर सा प्रेम प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार, किनसे बात हो रही है
1: जी? दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा जी की मथुरा से करता हूँ राधे राधे, जय श्री राधे।
0: राधे राधे, कैसे हैं शारदा प्रसाद जी?
1: दीदी मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।
0: क्या चल रहा है मथुरा में इन दिनों?
1: दीदी सर्वप्रथम मैं आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश को साथ में सभी सुनने वाले श्रोताओं को आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के साथ साथ मुरली पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन
0: जी,
1: और गीत की बोल है मौसम का जादू है नितवा। बहुत ही सुंदर प्यारा गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
0: लता मंगेशकर, SP बालासुब्रमण्यम की आवाज में
1: जी। जी बिल्कुल
0: जी, आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए
1: जी। हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
0: आपका भी धन्यवाद, नमस्कार।
2: 10, 9,

7 6 5 4 3 2 1 Let's start the fun.

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करेगी सुने
1: हेलो जी,
0: जी।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: मैं सपना बोल रही हूँ, गुना से।
0: सपना जी, कहाँ से आवाज़ आपकी थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही।
1: गुना से बोल रही हूँ मैम।
0: गुना से सपना जी,
1: जी
0: कैसे हैं
1: मैम,
0: आप?
1: ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है गुना में?
1: हल्की हल्की बारिश हो रही है।
0: अच्छा,
1: जी मैम, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हल्की हल्की बारिश में कौन सा गीत सुनना चाहती हैं सपना जी?
1: मूवी का नाम है सत्ते पे सत्ता, और गाने के बोल हैं झुका के सर को बोलो।
0: सत्य पे सत्ता फिल्म से बिल्कुल आपको सुनवाते हैं गीत।
1: ओके मैम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
2: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो। झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
3: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: हाँ, how do you do?
2: I love you.
1: ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा।

0: I like you.
1: हाँ, अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो। अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ,

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है
1: हेलो
0: जी। नमस्कार
1: जी, नमस्कार मैम, रानू बात कर रही हूँ देवास से। जी
0: रानू जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? रक्षा जी बोल रहे हो ना?
0: जी जी
1: जी जी, कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है रानू जी?
1: ठीक हूँ, बस खाना बनाकर फ्री हुई हूँ।
0: अच्छा,
1: तो वो ट्राई कर रही थी दो चार बार, मतलब वैसे मैंने रिडाइल पे छोड़ रखा था, तो एकदम से रिंग चली गई, तो मैंने सोचा बात कर लेती हूँ। और क्या, किचन में हूँ फिलहाल तो।
0: अच्छा,
1: जी
0: बहुत अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी रानू जी?
1: मैम, मुझे गाना सुनना है, मूवी का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे, ऋतिक रोशन वाली, इसी का टाइटल सॉन्ग सुनना है।
0: आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म से।
1: जी, और
0: बिल्कुल,
1: मुझे कुछ अनाउंसर है, मतलब वो मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि आप हो, कविता मैम हुई, और हाँ, और सरिता जी हुई, मतलब वैसे सभी अच्छे हैं, बट फिर
0: जी
1: भी कोई खास खास है तो अच्छे हैं, मुझे पसंद आते हैं अनाउंसर भी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी,
1: थैंक यू मैम।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार बहन जी, नमस्कार।
0: किन से बात हो रही है?
1: मांगीलाल चंदेल जी से बात हो रही है, ग्राम सनोतिया, जिला गुना से।
0: मांगीलाल चंदेल जी, कैसे हैं आप?
1: बहन जी मैं बढ़िया हूँ
0: जी,
1: आपकी दुआ से बढ़िया हूँ। बढ़िया बहन जी, आपने मेरा कॉल उठाया, आपको धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो क्या करते हैं मांगीलाल जी?
1: मैं किसान हूँ दीदी, खेती किसानी करता।
0: किसान हैं, खेती किसानी करते हैं। क्या लगाया हुआ है अभी?
1: अभी तो सोयाबीन है, धान है, मक्का है, उड़द है, मूंगफली है, खरीफ की फसलें लगाई।
0: अच्छा,
1: खेतों में।
0: अरे वाह, अरे वाह जी। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: बहन जी फिल्म का नाम रहेगा बेताब, और गाने के बोल रहेंगे, बादल यूं ही गरजता है, दर्द भी ऐसा लगता है, चमक चमक के कहीं ये बिजली हम पे गिर जाए ना।
0: अरे वाह, लता मंगेशकर
1: जी। कुछ मित्रों को याद कर सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बेटा सिंह यादव जी हैं, फूलचंद पाल जी हैं, दिनकर सिंह जी हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी मित्रों को। सुनवाते हैं ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वनकर्मियों और वैज्ञानिकों की सराहना की। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा की जानी है। विधेयक में हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण के लिए मिले वाहनों का लोकार्पण भी किया। प्रदेश भर में आज आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में आयोजित गुरु पूर्णिमा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में गुरुओं के सम्मान के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल यानी 30 जुलाई को मतदान होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदान सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। मानसून को देखते हुए प्रशासन ने मतदाताओं के लिए वैकल्पिक मार्ग और टेंट की व्यवस्थाएं भी की हैं। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर से मानसून ट्रफ और चक्रवाती सिस्टम गुजर रहा है, जिसके चलते आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन जिलों में अति भारी बारिश और 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओ, दोपहर के 12 बजे हैं। आपके मनोरंजन के लिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। नमस्कार, और शुरू करते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसमें आपके द्वारा भेजे गए पत्रों को हम आपके नाम के साथ, आपकी जगह के नाम से, जहाँ से आप पत्र भेजते हैं उसके साथ पढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपकी ही फरमाइश के, आपकी पसंद के गीत। सबसे पहले सुनते हैं अर्पण फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है। ये जो खत हमारे हाथ में है वो हमें मिला है गुरु चौक पोफाड़ी तालुका उमरखेड़ से गणेश राव लांडगे, विमलताई लांडगे, कुमारी अलका, विनायक कुमार, कुमार वरुण लाड़के और गाँव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार, हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू ने। तो सुनते हैं इन सभी की पसंद पर अर्पण फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है जीने की राह फिल्म से, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है लाबरिया बहरू इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। और साथ ही साथ इस गीत को पसंद किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू।

आई मिलन की बेला, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ है, साथ में आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की भी है। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का है और इस गीत को सुनना चाहा है चक 5 MD पतरोड़ा अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु और सुनील जनागल ने। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है पंकज साहू, तिरुपति साहू, थनक्ष और आरू साहू ने और ग्राम बगबुड़ व पथरिया से नरेम नेताम और कुसुम नेताम ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आई मिलन की बिला फिल्म से ये गीत।

0: ओ ए सनम जिंदगी का बहाना।
1: आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और अब आपकी नज़र करने जा रहे हैं ना खुदा फिल्म का गीत लता मंगेशकर।

मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में, गीत रचना निदा फाजली की है और संगीत खयाम का है। इस प्यारे से गीत को पसंद किया है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकाश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से ये हमारे श्रोता है शैलेश गवाड़कर, श्रीमती वैशाली गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी। इसी गीत के लिए पत्र भेजा है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अकरम और अल्ताफ अंसारी ने, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी ने, और सारिमपुरा बक्सर से ये हमारे श्रोता है आसमा खातून अंसारी, राज एसडी अंसारी, महताब आफताब और मेराज अंसारी।

अगले गीत के लिए हमें पत्र भेजा है खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विनय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, और इस गीत को सुनना चाहा है टावर स्ट्रीट न्यूटन छिंदवाड़ा से निसार खान, उमेश गुप्ता, महेश साहू, रफीक खान, जामई रोड चांदा मेटा है छिंदवाड़ा से ही ये हमारे श्रोता है, सादिया जारा, आलिया अलीशा, नेहा गंगवाल और उनकी सखियां, और थाना रोड बक्सर से ये हमारे श्रोता है प्रतीक केशरी, प्रज्ञा केशरी, ओमानंद केशरी, और गोला बाजार बक्सर से ये फरमाइश है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की। ये सभी श्रोता हमारे सुनना चाहते हैं हमारा ही फिल्म का गीत मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी ने गीत के बोल लिखे हैं और संगीत शंकर जयकिशन ने दिया है।

सिलसिला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ों में जावेद अख्तर ने लिखा है, शिवहरी का संगीत है। इस गीत को पसंद किया है धामणी मानोरा जिला वाशिम से मेंटर तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश पेंटर डेरे, प्रज्वल डेरे, अनुजा डेरे, गुलशन डेरे और अमोल डेरे ने। और इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। समय है एक अंतराल का। श्रोताओं, यह एक महत्वपूर्ण जनहित सूचना है। भोपाल पुलिस आयुक्त द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार भोपाल शहर में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से नागरिकों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। यदि आपने अपने मकान, फ्लैट या अन्य परिसर को किराए पर दिया है अथवा किसी किराएदार, पेइंग गेस्ट, घरेलू नौकर, ड्राइवर, कर्मचारी या अन्य सहायक को रखा है तो उनकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पुलिस थाने अथवा मध्य प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी प्रकार होटल, लॉज, धर्मशाला, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, छात्रावास, निर्माण स्थलों, निजी सुरक्षा एजेंसियों, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर तथा घर घर जाकर वस्तुओं की डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों से संबंधित निर्धारित जानकारी भी संबंधित संस्थानों द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है। भोपाल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शहर की सुरक्षा में अपना सहयोग दें तथा निर्धारित प्रावधानों का पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। ये थी आवश्यक सूचना।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00 आकाशवाणी भोपाल पर।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे, इस धारावाहिक की 14वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 14वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि के सकुशल लौट आने के लिए रानी पिंगला कठोर तांत्रिक अनुष्ठान करती हैं। उधर राजा भर्तृहरि उनके काव्य की प्रशंसिका चारुमित्रा से मिलने चंद्रपुर की ओर चल रहे हैं। अब आगे

0: राह पर चले जा रहे थे राजा भर्तहरि, दुविधा और असमंजस, दिशा और गंतव्य अस्पष्ट। संभवतः चंद्रपुर, जहां उनकी भेंट चारुमित्रा से हो, वह चारुमित्रा जिसका सौंदर्य और कला लोक गाथा का स्वरूप ले चुकी है।
1: चल
2: कहाँ आ गया हूं चलते चलते। खेत है तो कहीं बस्ती भी होगी।
3: यहां पानी मिल सकेगा बंधु? क्या मैं आ सकता हूं?
1: संभल कर बेटे, कोई पथिक लगता है, प्यासा थका हुआ होगा। जय महाकाल।
3: जय महाकाल।
1: आपका स्वागत है। प्रवेश की अनुमति तो महालयों में मांगी जाती है। ये किसान का आंगन है, पधारिए। किसान निषिद्ध प्रवेश का दंभ नहीं पालते। तो अतिथि को जाना कहाँ है?
3: चंद्रपुर जाना है बंधु।
1: चंद्रपुर? चंद्रपुर तो रूप और राग की नगरी है अतिथि महोदय। आप ठहरे विरागी बंधु, आपकी गांठ में तो शायद फूटी कौड़ी भी ना हो। चारुमित्रा नाम की स्वर्ग से भटकी अप्सरा रहती है चंद्रपुर में।
3: तुमने कभी चारुमित्रा को देखा है?
1: क्यों नहीं, सारंगपुर के बसंतोत्सव में देखा था उसे।
3: कैसी है वो?
1: सुंदर, कोमल, कमनीय, किंतु हमारे किस काम की पथिक। देखो वो आ रही है, मेरी पत्नी, मेरी चारुमित्रा, मेरा कलेवा लेकर यहां से लौटेगी तो चार गट्ठा

तारा चौपायों के लिए सिर पर ठोकर ले जाएगी। इस बोझ से चंद्रपुर की चारुमित्रा की तो गर्दन ही टूट जाए। हमारी सुंदरता, हमारा गुण श्रम से जुड़ा है पथिक। तुम चाहो तो थोड़ा विश्राम कर लो, या फिर मेरी चारुमित्रा से बातें करो। वह जो माथे पर चिंता की लकीरें और अधरों पर स्मित लिए यहां पहुंच रही है, भोजन लाई है। मेरा आग्रह है कि मध्यान्ह भोजन हम साथ ही करेंगे। तब तक मैं खेत जोत कर आता हूं। चल चल चल चल, अरे अरे अरे, चलो बेटो चलो।

0: पथिक महाशय, साधु हो अथवा साधक या गृहस्थ।
1: देवी, क्या इतना पर्याप्त नहीं कि मैं एक पथिक हूँ?
0: पथिक हूँ, किंतु हमारे क्षेत्र के लिए तो अतिथि हो और अभ्यर्थनीय हो। साधु या गृहस्थ, उसी अनुसार अभ्यर्थना करनी होगी।
1: सत्य तो ये है देवी कि मैं ना तो साधु हूँ और ना ही गृहस्थ। अभी तय नहीं कर पाया हूँ कि स्वयं को किस कोटि में रखूँ। यूं पहले मैं गृहस्थ था और अब विरक्त।
0: पत्नी से लड़कर गृह त्यागा है या उस पर अविश्वास करके?
1: ये बताना आवश्यक है क्या?
0: छिपाना चाहे तो वैसा ही करें।
2: तभी किसान हल का चक्कर पूरा करके लौटता है।
3: ये चंद्रपुर जा रहे हैं, इनका कोई परिचित या संबंधी वहां नहीं है। एक ही आकर्षण है, चारों मित्रा। तुम्हें कोई संदेशा वंदेशा पहुंचाना हो तो सहायक बन सकते हैं ये।
0: पथिक, मेरे पति व्यंग कर रहे हैं। कारण यह है कि हमारा एकमात्र पुत्र चारू मित्रा के सम्मोहन में फंसकर चंद्रपुर में अटका पड़ा है। अभी उसकी वय ही क्या है, मात्र 19 वर्ष। पावरा हो गया, उसका नाम श्रवण है। बड़े चाव के साथ हमने उसे ये नाम दिया था। यदि अवसर मिल जाए तो वहां की भीड़ में उसे खोजना और कहना उसकी माँ अत्यंत आतुरता पूर्वक उसका स्मरण करती रहती है।
1: मैं वचन देता हूं देवी कि चंद्रपुर पहुंचकर मैं श्रवण को तुम्हारा संदेश अवश्य दूंगा और प्रयत्न भी करूंगा कि वो तुम्हारी गोद में लौट आए। अब आज्ञा दो, मुझे जाना होगा।
0: चंद्रपुर का मार्ग निष्कंटक नहीं है, बीच में मणिभद्रा का क्षेत्र पड़ेगा, सावधान रहना होगा। मणिभद्रा योगिनी है, सिद्ध योगिनी, अनेक सिद्धियों और शक्तियों से संपन्न आकाश विहारिणी, बचे रहना।
1: अच्छा ठीक है, तो मैं चलूं?
0: हाँ जाओ, तुम्हारी कामना साधना सफल हो। और सुनो, मैं जान गई हूं कि तुम हमारी भांति ना तो ग्रामीण हो और ना ही साधु साधक, तुम कुछ और हो।
1: और क्या हो सकता हूं?
0: अभी नहीं, लौट कर आना, तब स्यात में बता सकूं कि तुम कौन हो सकते हो।
2: भ्रातरी किसान तथा उसकी पत्नी से विदा लेकर आगे बढ़ते हैं।
1: ओह, ये तीक्ष्ण गंध, क्या निकट ही कहीं मदिरा की आस बनी है? उसी से पूछता हूं।
4: महोदय, इस ग्राम नगर का नाम क्या है?
5: पथिक, नए लगते हो तुम, इस ग्राम नगर का नाम ही मधुका है।

0: भांति भांति की मदरा यहाँ बनाई और विक्रय की जाती है, देश देशांतरों तक खयाती है इस ग्राम की और यहाँ की मदरा की भी।
1: अच्छा, तो यही है मधु का।
0: हाँ, यही है मधु का। लगता है तुमने भी चखी है यहाँ की मदरा। कहाँ से आए हो?
1: दूर एक ग्राम है पैठार, अवंती राज्य में है। मेरा एक स्वजन कोप करके घर छोड़कर चला गया था, उसी की खोज में संभवतः वो इस ओर आया हो। लगता है कि यही मुख्य बाजार है, तनिक देख लूं?
0: हाँ हाँ, देखो, अवश्य देखो। देखो ना कितनी चहल पहल है।
2: अरे माल ला दो भाई, माल ला दो। अरे देरी हो रही है। अरे ला दो तो मेरा माल भाई।
3: अरे हटो हटो,
2: बारी आ गई है। देरी हो रही है। मेरा माल अभी तक नहीं लदा है। अरे 60 कोस दूर पहुंचना है भाई। आज से उत्सव आरंभ हो रहा है उज्जैनी में। राज्य उत्सव है, ऐसे ही अवसरों पर तो कुछ कमाई हो पाती है। दिन रात चलकर जब तक पहुंचूंगा तब तक उत्सव समाप्त हो चुका होगा।
1: काहे का उत्सव है बंधु?
2: अरे भाई उज्जैनी का क्या, वो तो उत्सवों की नगरी है, वहां तो सदैव उत्सव ही उत्सव।
0: अरे भाई, महादेव की कृपा से महादेवी पिंगला गर्भवती हैं। हाँ, उनके गर्भ में कनक शंगा का भावी शासक आया है। प्रजा बहुत उल्लासित है, विराट उत्सव आयोजित किया गया है। देश देश के गुणीजन और कलावंत उज्जैनी में जुट रहे हैं। अरे आचार्यों के शास्त्रार्थ होंगे, नाट्य संगीत काव्य खेल तमाशे कौशल और न जाने क्या क्या।
2: पर महाराज भृतरी अभी राजधानी में नहीं है। सुना है ज्योतिषी के परामर्श पर वह कुछ दिनों बाद वापस आएंगे।
0: अरे बंधु, महाराज नहीं होंगे तो उत्सव का आनंद ही कैसा।
2: ठीक कह रहे हैं आप। बताया गया है कि चारू मित्रा ने उत्सव का आमंत्रण ठुकरा दिया है। ठीक ही किया। जब गुणी नरेश ही उपस्थित ना हो तो अपनी कला का प्रदर्शन किसके आगे करती। मूर्ख मद्यपों की भीड़ में उसने निर्णय लिया है कि महाशिवरात्रि के दिन वो महाकाल को अपना नृत्य और गायन समर्पित करेगी।
0: साधु साधु, बंधु उसका ये निर्णय प्रशंसनीय है।
2: निर्णय की तो प्रशंसा कर ली, लेकिन मूर्ख मद्यप ना हो तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा। अरे वही तो हमारे अन्नदाता हैं।
1: बंधु, आपने अभी कहा कि रानी पिंगला गर्भवती हैं?
2: हाँ भाई, सुना तो यही है। इतने बड़े उत्सव का आयोजन इसी निमित्त से हो रहा है, आपको कोई आपत्ति है?
1: अरे मुझे आपत्ति क्यों होने लगी मित्र, ये तो सभी के लिए परम प्रसन्नता का अवसर है। आपने ये भी बताया कि राजा भर्तृहरि किसी विशेष अनुष्ठान में हैं?
2: अरे हाँ भाई, यह भी कहा था, क्योंकि यही सुना भी है और सच भी यही है। महाराज और महारानी के पवित्र अनुष्ठान से ही ये सुअवसर आया है, अन्यथा उनके विवाह को इतने बरस हुए और उज्जैनी वासी सुसंवाद पाने के लिए तरसते रहे।
1: आप अनावश्यक कुपित हो रहे हैं श्रेष्ठी, मैं तो केवल अपनी जन्मभूमि के विषय में जानने को उत्सुक हूं। अपनी उलझनों के कारण मैं कुछ समय पूर्व अवंती से निकला था, किंतु अपने देश अपनी भूमि के बारे में जानने की उत्कंठा तो रहती ही है।
2: तो आप उज्जैनी से हैं?
1: जी, नागरिक हूं उस राज्य का।
2: तो फिर हमारे ही बंधु हो।
1: बंधु कहा है तो मेरा भी अधिकार बनता है। उज्जैनी के विषय में कुछ और बताएं।
2: बताने को और क्या है, महाकाल की पूजा अर्चना यथावत चल रही है और उज्जैनी के कार्यकलाप भी। पानागार तीर्थ ग्रहों में लोग उसी तरह जुटते हैं, रूपांगनाएं अपने स्थान पर हैं, पावस बीतने से व्यापारी आ जा रहे हैं,

0: बनने की इज्जत दीप्ति लौट आई है। उत्सव के कारण चहल पहल बढ़ गई है। पूछना ही भूल गया, मद्यपान में रुचि है तुम्हारी, प्रस्तुत करूं क्या?
1: नहीं बंधु, धन्यवाद। स्वाद चखे युग बीत गया, अब ना तो इच्छा है और ना आवश्यकता। कुछ और बताइए ना अवंती के विषय में।
0: हाँ, नरेश की अनुपस्थिति से राजपुरुष निरंकुश हो चले हैं। पहले तवे छिपे उत्कोच ली जाती थी, अब खुलेआम चाहते हैं। हम व्यापारियों की तो सांसत है।
1: आप अमात्य महामात्य को अपनी पीड़ा से अवगत क्यों नहीं कराते? वंचक राजकर्मियों को दंड दिलाना भी तो आपका दायित्व है।
0: भली कही, राजकर्मियों को दंडित करवाने की बात करते हो। शिल्पी, दास और भृत्यों को छोड़कर हर एक राजकर्मी किसी न किसी अमात्य या सामंत के मुंह लगा है। फिर महामात्य, अमात्य या नरेश तक पहुंच पाना सरल है क्या? किसी तरह पहुंच भी जाओ तो किसी राजकर्मी राजपुरुष को दंड देने से पहले उन्हें भी सोचना पड़ेगा। इतना सरल नहीं है भाई, हमें रहना तो इसी सरोवर में है, इन मगरमच्छों के आसपास। सच कह रहा हूं ना बंधु?
2: बिल्कुल सत्य वचन है आपके बंधु।
1: पर उज्जैनी के महामात्य की तो बड़ी प्रशंसा है, वो सुयोग्य और सत्य काम है।
0: वह तो है, सुना है कुछ लोग उन्हें हटाने की दुर्भिसंधि रच रहे हैं।
2: लीजिए महाशय, आपकी लदान पूरी हो गई, गिन लीजिए भंडकों को और उनका हिसाब भी लगा दीजिए।
0: अब क्या गिनूं बंधु, मैंने पहले ही गिन लिए हैं। अच्छा तो अब मैं प्रस्थान करता हूँ।

0: महामात्य के विरुद्ध दुरभि संधि, तब तो अवंती की प्रजा नितांत अरक्षित हो जाएगी। हे देव, क्या मुझे उज्जैनी लौटना चाहिए? यह भी संभव है कि दशाण अथवा दक्षिण के आसपास वाले सामंत कोई षड्यंत्र बुन रहे हो, पर नहीं, अभी नहीं। अभी तो कुछ समय चारुमित्रा के यहां व्यतीत करूंगा, तब तक शायद कुछ और सूचनाएं मिले, स्थिति अधिक स्पष्ट हो।
1: आओ, मधुचंद्र का विख्यात पानागार यहाँ है। तुमने सुना ही होगा कि अंटी में दाम हो या न हो, मधुचंद्र तुम्हें निराश नहीं करेगा। अरे, दो चषक और दो रोटी उधार का यहाँ चलता ही है। उधार चुकाओ या न चुकाओ, भैरव बाबा की कृपा से मधुचंद्र को कभी कहीं कोई घाटा ही नहीं होता, समझे? नहीं समझे? अरे आओ परदेसी, मुहूर्त भर यही विश्राम कर लो।
0: आपकी सदाशयता के लिए कृतज्ञ हूं महाशय। मदपान में मेरी रुचि नहीं और भूख भी नहीं है। मुझे तो बस वो दिशा बता दें जहां से चंद्रपुर के मार्ग तक पहुंच सकूं, मुझे वहीं जाना है।
1: चारु मित्रा के दर्शन का पुण्य कमाने जा रहे हो मित्र, है? अरे यात्री महाशय, भैरव महाराज तुम्हारा भला करें, लगन तो तुम्हारी चोखी है, चोखी। अरे अभी अभी एक सारसवाह उधर के लिए निकलने वाला है, ए, उसी के साथ हो लेना, समझे कि नहीं समझे? अरे 3 दिनों में रूप सुंदरी के देश पहुंच जाओगे।
0: किंतु मार्ग तो 2 दिन का बताया गया है।
1: अरे तुम्हें मणिभद्रा का क्षेत्र बचाना होगा, समझे? वहां किसी भैरवी की दृष्टि में अगर आ गए तो फिर मुंडमाला की शोभा बनकर रह जाओगे। क्या क्या आत्महत्या का विचार लेकर निकले हो?
0: नहीं भाई, पर मणिभद्रा के दर्शनों का सौभाग्य तो मिलेगा ही।
1: मणिभद्रा का दर्शन? ए, दुस्साहसी हो?
0: नहीं, सहज उत्सुकता भर है बंधु, बहुत सुन रखा है। जो प्रारब्ध वृकवन, प्रेतपुरी और हिंस्र जीवों से भरे महारव्यों में भी निरापद रखे हुए है, वो यहां भी सुरक्षित रखेगा। औगढ़ ने भी कहा था कि गुरु की आज्ञा है मुझे सुरक्षित रखने की, फिर जो होना है सो हो ले।
1: ए, ए भाई, अरे क्या निश्चय कर रखा है बताओ?
0: सोचा तो है
1: मणिभद्रा, अरे अपने क्षेत्र से बाहर कभी किसी का अनिष्ट नहीं करती। जिस किसी ने उसकी साधना क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, फिर वो वापस नहीं लौटता, समझेगी नहीं? अरे उन्हें अपनी साधना में किसी अवांछनीय की उपस्थिति स्वीकार ही नहीं है, समझे? मार्ग में तुम्हें मणिभद्र की एक विशाल काय प्रतिमा के दर्शन होंगे, दर्शन। वहां सभी यात्री शार्षवाह ठहर कर मणिभद्र की अर्चना और मार्ग की सुगमता के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना, समझे? यहां से 3 मार्ग है, 3 हैं। दाहिना विदिशा को जाता है और ये बाया मार्ग चंद्रपुर होते हुए पद्मावती के लिए निकल जाता है, और ये जो ये सीधा मार्ग देख रहे हो ना, देख रहे हो हैं? नहीं समझे? ये सीधा मार्ग जो है ये मणिभद्रा के क्षेत्र में पहुंचाता है।
0: चंद्रपुर की दूरी कितनी होगी महाशय?
1: मणि क्षेत्र होकर 8 योजन, सुगम क्षेत्र से 16 योजन, लेकिन तुम तो छोटे रास्ते से जाने वाले हो ना, है? मणिभद्रा की कृपा हुई तो भाई दो ढाई दिन में गंतव्य पा जाओगे, समझे?

0: अब मणिभद्रा से भेंट का संकल्प कर बैठे हो तो तुम मेरा भी एक काम कर देना भैया, मैं तुम्हें तुम भी और ये द्राक्ष देता हूं। हे यात्री, मेरी ओर से ये मणिभद्रा को अर्पित कर देना, कहना उनके अकिंचन से मधुचंद्र की ओर से ये भेंट स्वीकार करें, कर देंगे।
1: अब तो देवी मणिभद्रा से भेंट करनी ही पड़ेगी, लाओ अपना उपहार दे दो।
0: ये लो, संभल के संभल।
1: मैं सूर्यास्त से पहले वहां पहुंचना चाहता हूं।
2: मधुचंद्र से तुम्बी द्राक्षा लेकर भर्तृहरि आगे बढ़ते हैं। उन्हें यहां एक यात्री मिलता है, वे उससे कहते हैं,
3: जय महाकाल।
4: जय महाकाल, जय गोपाल। अकेले हो भद्र, कहां जाना है?
1: पहले तो चंद्रपुर पहुंचना है, तत्पश्चात कुछ भी निश्चित नहीं।
4: मद्रसिक प्रतीत होते हो, अपनी मदिरा की तुम्बी कंधे पर लटका कर यात्रा कर रहे हो।
1: ये तुम्बी तो देवी मणिभद्रा को सौंपना है महाशय, माधा के सुरा विक्रेता मधुचंद्र ने उपहार स्वरूप पहुंचाई है, आज रात वहीं विश्राम भी होगा।
4: कौन है ये? मदिरा के प्रभाव से नितांत बोराया कोई, या फिर जीवन से निराश कोई आत्महंता, या फिर कोई रहस्यमय तांत्रिक जो मणिभद्रा के क्षेत्र में रात्रि विश्राम की सोच रहा है। खैर जो भी हो, महाकाल रक्षा करें।
2: रवि की लालिमा मणिभद्र की प्रतिमा के मुख पर आंट ठहरी है, जिससे शीर्ष के आसपास

0: पीत रक्त प्रकाश वलय बन गया है और शरीर का हर अंग प्रदीप्त होकर स्पष्ट हो उठा है। भृतहरि मुग्ध भाव से यक्ष प्रतिमा के निकट पहुंचे। उन्होंने नमन करते हुए मूर्ति चत्वर की परिक्रमा की। इस समय मूर्ति कुछ अलग प्रकट की ही तेजस्विता विकीर्ण कर रही है।
1: बंधु, सार्थवाहों में यह धारणा प्रचलित है कि मणिभद्र की उपासना से कामनाएं सफल होती हैं, संकल्प पूरे होते हैं और विघ्नों का शमन होता है। बंधु, आपने महाकाल का स्मरण करते हुए मणिभद्रा रक्षित अरण्य में प्रवेश किया है। अभी कम से कम घड़ी भर प्रकाश शेष है, जिससे एक कोस की दूरी मापी जा सकती है।
0: पीछे छूट गए रास्तों पर उड़ती हुई स्वर्णिम धूल यह दर्शा रही थी कि और अन्य सार्थवाह भी मणिभद्र प्रतिमा के पास पहुंच रहे हैं, जो वहां रात्रि विश्राम करेंगे और भय तथा आतंक की दृष्टि से इस तरफ देखते रहेंगे। आश्चर्य के साथ जिधर राजा भर्तहरि कंधे पर तूंबी लादे लकुट हाथ में लिए निर्भय प्रवेश कर गए हैं अकेले।

भर्थरी ने इस फैले हुए सघन वन प्रांतर में कुछ मानव आकृतियों को देखा। स्त्री और पुरुष, अप्सराएं और गंधर्व, काम मुद्राओं में निर्बंध केलीरत, कोई मदनोत्सव मंचित हो रहा हो जैसे, किंतु यह मूर्ति शिल्प थे, निर्जीव किंतु आकर्षक, सजीवता की सीमा तक। अचानक कई कंठों से स्वागतम स्वागतम के स्वर गूंजते। मादक संगीत ध्वनियां और कोयल पपीहे की आवाजें आने लगती हैं, जैसे उस वन प्रांतर के वृक्ष ही बोल रहे हो, किंतु यह सधे हुए शुक शारिकाओं की ध्वनियां थी। आगत के स्वागत में मुखर होती हुई स्तब्धता

0: कोई है? कोई है? अरे कोई है? वो तो मुझे देवी मणिभद्रा तक पहुंचाने का मार्ग दिखाएं। कोई है?
1: भृतहरि के स्वर की प्रतिध्वनियां दिशाओं से बार बार टकराकर लौट आती हैं।
0: अरे कोई है? कोई है? अरे कोई है? कोई है? अरे कोई है? कोई है? अरे कोई है? अरे कोई है? देवी मणिभद्रा तक। अरे कोई है? मुझे देवी मणिभद्रा तक। कोई है? मार्ग दिखाएं।

0: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 14वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार मुकेश विश्वकर्मा, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, किसान गणपत एस पाठक, कृषक पत्नी।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से इस कार्यक्रम में कामिनी काय कांतारे की 14वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन कर्मियों और वैज्ञानिकों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दौरान वन्यजीव संरक्षण के लिए मिले वाहनों का लोकार्पण, विभागीय प्रकाशनों का विमोचन, साथ ही वृत्त चित्रों के टीजर भी रिलीज किए। प्रदेश भर में आज आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में गुरुओं के सम्मान के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने 8 IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें 4 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। शहडोल कलेक्टर बनाए गए मीशा सिंह की पोस्टिंग बदलकर अब उन्हें नगरीय विकास विभाग भोपाल में अपर आयुक्त बनाया गया है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल 30 जुलाई को मतदान होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदान सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। मानसून को देखते हुए प्रशासन ने मतदाताओं के लिए वैकल्पिक मार्ग और टेंट जैसी विशेष व्यवस्थाएं की हैं। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर से मॉनसून ट्रफ और चक्रवाती सिस्टम गुजर रहा है, जिसके चलते आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन जिलों में अति भारी बारिश और 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है।

महिला सभा सुनने वाली आप सभी प्यारी सखियों को धम्म मित्रा का प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम पावन गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सखियों, गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है, हम इन दो लाइनों से भली प्रकार समझ सकते हैं जिन्हें महान संत कबीर दास जी ने बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी कहते हैं कि जब गुरु और भगवान दोनों साथ हों तो गुरु को सर्वप्रथम शीश झुकाना चाहिए, जो अपने ज्ञान से जीवन में अंधकार को हटाकर प्रकाशवान करते हैं। गुरु ही सही को सही और गलत को गलत जानना बताते हैं, साथ ही भगवान से मिलना आसान बनाते हैं। सखियों, ऐसा हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के कई हफ्तों बाद आज ही के दिन यानि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसमें मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और दुखों से मुक्ति पाने के लिए 8 आचरण भी बताए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया, जिन्हें अपनाकर उन 5 शिष्यों ने अपना कल्याण किया। इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा व धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सखियों, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने गुरुओं का आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करने का दिन है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा केवल एक त्यौहार नहीं है बल्कि एक भाव है गुरु के प्रति कृतज्ञता का, सम्मान का, ज्ञान प्राप्त करने का। सखियों, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को अपना ज्ञान प्रदान किया था, इसलिए भगवान शिव को गुरु भी कहा गया है। इस दिन भगवान शिव की भी आराधना की जाती है। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर महावीर जी ने अपने पहले अनुयायी को प्राप्त करने के बाद इसी दिन गुरु बने थे। सखियों, इस तरह गुरु पूर्णिमा भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। सखियों, आज के समय में भी गुरु का महत्व उतना ही है जितना प्राचीन काल में था, क्योंकि एक अच्छा गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देता बल्कि अच्छे संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का भी विकास करता है। इन्हीं के बल पर जीवन सुखकर और निरंतर तरक्की करता है।

0: सखियों, हमारे जंगल हमारी प्राकृतिक संपदा है। जिस तरह जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह उसमें रहने वाले प्राणी भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। बाघ, जो पहले जंगल में काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, परंतु आज उनकी संख्या कम हुई है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों को संरक्षित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं सेवानिवृत्त IFS ऑफिसर BD संखवार जी से, जो पहले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर भी रहे हैं। इनसे बात कर रही हैं धम्म मित्रा। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है?
2: अंतर्राष्ट्रीय, जैसा कि नाम से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो बाघ जिसे अंग्रेजी में टाइगर कहते हैं, वो पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, सारे महाद्वीपों में पाए जाते हैं। इसलिए, और जो बाघ है, जो टाइगर है, वो हमारा बहुत ही वन्य प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, और उसकी ताकत, उसकी निडरता के कारण उसको जंगल का राजा भी कहा जाता है।
1: जी जी।
2: तो इस जंगल के राजा को देखने के लिए देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग भारत भ्रमण पर आते हैं, और जहाँ पर इनका वास होता है वहाँ पर देखने जाते हैं।

0: संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। धीरे धीरे धीरे धीरे समय के काल के रहते बाघों की संख्या घटती चली गई। वर्तमान में ऐसी थोड़े दिन पहले ऐसी स्थिति हुई कि कहीं ये बिल्कुल ही विलुप्त न हो जाए, इसलिए सरकार ने इसको महत्व दिया, इसलिए दिवस मनाया जाता है और सरकारी स्तर पर इनके संरक्षण के लिए, इनकी वृद्धि के लिए, इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो, बहुत सारे जो नियम भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं जिसके तहत इनके संरक्षण का और वंश वृद्धि का लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
1: यानी कि बाघ संरक्षण के लिए शासन की बहुत सारी योजनाएं और नीतियां भी हैं, क्या आप उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे?
0: हाँ, उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है कि वंश संरक्षण जो टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, तो टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए जहाँ पर बाघों की संख्या ज्यादा थी वहाँ पर हमारे संरक्षित वन, आरक्षित वन और दूसरे प्रकार के राजस्व के जंगल, ऐसे इनको मिला के काफी बड़े भूभाग को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है और उसके अंतर्गत विशेष नियम होते हैं कि बगैर अनुमति के कोई आदमी उसमें घुस नहीं सकता और ऐसे स्थानों पर उनके संरक्षण की व्यवस्था होती है। और इससे क्या होता है, इन संरक्षण से सरकार को टूरिज्म बढ़ता है जिससे हमारे प्रदेश को और देश, ये हमारे पिरामिड, हमारे जो फूड चेन में सबसे ऊपर है, इसलिए इसका महत्व इस प्रकार भी है कि हमारे जंगल भी इससे संरक्षित रहते हैं, तो दोनों का आपस में बहुत कोरिलेशन है, ऐसा संबंध है कि अगर हमारी बाघ को रहने की जगह पर्याप्त मात्रा में है, भोजन है, सुरक्षा है, तो हमारे इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी, साथ साथ हमारे जंगल भी बहुत सुरक्षित रहेंगे। तो जंगल भी सुरक्षित है और बाघ भी सुरक्षित है, देखने वाले लोग आते हैं, हमारे पैसा भी आता है, उसके राजस्व भी बढ़ता है, तो ये बहुत बड़ा महत्व है
1: जी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बाघों की क्या स्थिति है और इसका जो संरक्षण है बाघों का वो कैसे किया जाता है?
0: मध्य प्रदेश में बाघों की स्थिति बहुत ही बेहतर है। हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश में टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जो इस प्रकार के टाइगर रिजर्व हैं, जो योजना चलती है, वो हमारे यहाँ 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या हमारी 785 के आसपास है। हमारे पूरे भारत भर में लगभग 3000 बाघों की संख्या आकलन है, तो सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में ही टाइगर पाए जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे जो जंगल है वह हमारे टाइगर को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है और धीरे धीरे और भी क्षेत्र बढ़ाए जाने का कार्यक्रम चलता रहता है। अभी हाल ही में कुछ ही 2 वर्षों में अंतर्गत माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी में और रायसेन जिले में रातापानी टाइगर रिजर्व अभी 2 साल पहले घोषित किए गए हैं, तो हमारे प्रयास धीरे धीरे और भी होता जा रहा है ताकि हम बाघों की संख्या में काफी बढ़ोतरी कर सकें। बहुत ही सुखद स्थिति है, इसलिए हमारे इसको टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को हमारे देश में जाना जाता है।
1: बाघों के संरक्षण की तो बहुत सारी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, इस पर काम भी चल रहा है, पर बाघों को संरक्षण करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी कहीं करना पड़ता होगा, किस तरह की चुनौतियां आती हैं इनको संरक्षण करने में?
0: हाँ, निश्चित रूप से कई सारी समस्याएं आती हैं। एक तो बाघ जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वैसे उसको रहवास का क्षेत्र भी बड़ा होना ही चाहिए, परंतु स्थिति ये होती है कि टाइगर रिजर्व के किनारे जो जंगल के गांव होते हैं उन गांव के लोग धीरे धीरे धीरे धीरे अतिक्रमण करने लगते हैं कहीं कहीं, या जो जंगल के पास है वहाँ एक शिकार की भी समस्या होने लगती है। तो शिकार, चूंकि हमें सबको मालूम है कि मृत जो मरा हुआ बाघ भी होता है वो लाखों लाखों का होता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसके चमड़े की, उसके नाखून की, उसके बालों की बहुत मांग रहती है। तो जो हमारे जंगल के दूर दराज के जो आदिवासी भाई हैं, जो निवासी है, वो लालच में आते हैं और जो बाहरी लोगों को संरक्षण मिलता है वो लोग शिकार जाने अनजाने कर जाते हैं कि एक ये भी बहुत

0: बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी इसमें सम्मिलित होते हैं। हमारे जो कभी कभार जंगलों को नुकसान करने वाले लोग भी होते हैं, जो उनको फसल को, उनको जानवरों को मारते हैं, तो वो लोग भी नाराज होते हैं। तो उस नाराजगी अपनी जंगल में मरे हुए जानवर के ऊपर जहर मिला देते हैं। अगर ये फिर बाघ या तेंदुआ जो इनको खाता है वो उनकी डेथ हो जाती है, तो इस प्रकार की डेथ होती रहती है। कभी जो ट्रैप लगा देते हैं उसमें फंस के घायल हो जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करना पड़ता है समय पर। हमारे पास रेस्क्यू की ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, पर फिर भी करते हैं। कभी घायल अवस्था में मिलते हैं तो उनको दूर जहाँ हॉस्पिटल होते हैं वहाँ ले जाना पड़ता है। तो इसकी भी हमारे देश में थोड़ी सी समस्या है। दूसरे, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए इसमें जो स्पेशल तरह के ट्रेंड अफसरों की अधीनस्थ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। यद्यपि अभी ट्रेंड अफसर्स काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे टेरिटोरियल्स के जो स्टाफ रहता है, वन्य प्राणी के नीचे के स्टाफ होते हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, जिससे उनके समुचित ज्ञान उनके पास न होने के कारण समस्याएं भी आती है। और मैनेजमेंट के लिए जितना भी पैसे की जरूरत होती है, तो सीमित बजट होता है, वो भी एक समस्या रहती है। इस प्रकार से समस्याएं तो बहुत है, चुनौतियां भी हैं
1: जी। लेकिन फिर भी हमारा स्टेट मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है, यानी कि बहुत ही सुखद स्थिति है
0: जी। बहुत सुखद स्थिति है। हमारे जो धीरे धीरे विभाग दूसरे पुलिस विभाग से, रेवेन्यू विभाग से, इनसे समन्वय बना के एक समग्र अप्रोच लगा के इसको धीरे धीरे सारी चुनौतियों को पार करने का प्रयास करते हैं। चूँकि वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग में भी लोगों को भेजा जा रहा है, और हॉस्पिटल्स के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की भी व्यवस्था धीरे धीरे सुनिश्चित की जा रही है, तो ये काम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। इस प्रकार से मिला के सबके समन्वय के, सरकार के सभी जो नीति निर्देशक लोग हैं, जो हमारे योजनाएं तैयार करने वाले, योजना का क्रियान्वयन करने वाले, और जो दूसरे विभाग के अधिकारी समन्वय रूप से काम इसमें कर रहे हैं। और ऐसी उम्मीद है, जो हमारी जो बेसिक देश है कि हम अपने बाघों की संख्या में बढ़ोतरी करें, निश्चित रूप से अभी भी हम आगे हैं और भविष्य में भी हम प्रदेश में आगे रहेगा, और हमारे प्रदेश के सारे जो टाइगर रिजर्व सुरक्षित रहेगी, और उसमें रहने वाले हमारे जो वन्य प्राणी के साथ साथ टाइगर भी हमारा सुरक्षित रहेगा। ऐसी पूरी कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है
1: जी। जी सर, आपने आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बहुत ही अच्छी आपने इसके संरक्षण की, इसकी योजनाओं की, नीतियों की बात की, चुनौतियों की बात की, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आप सुन रही थी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर सेवानिवृत्त IFS ऑफिसर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पूर्व डायरेक्टर BD संखवार से धम्म मित्रा की बातचीत। सखियों, हमें कुछ नया सीखना है, कुछ नया बनाना है, तो कुछ प्रयोग तो करने ही पड़ते हैं, उसको करने की कोशिश करनी होती है। हो सकता है शुरू में हम सफल भी ना हों, पर अगर हम लगातार उस काम को करते रहें तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि प्रयोग करना या एक्सपेरिमेंट करना ही सीखने की कुंजी है। असफलता से डरने के बजाय और मेहनत के साथ आगे बढ़ें, ऐसे में दृढ़ निश्चय हमें अडिग रखता है। कुछ नया करने से पहले मन में शंका ना रखें कि ये होगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये शंकाएं ही आगे बढ़ने में बाधक बनती हैं। सखियों, उम्र को कभी भी किसी काम को करने में आड़े ना आने दें, मन में आत्मविश्वास रखें, थोड़ा रिसर्च करें, फिर पूरी तैयारी से अपने एक्सपेरिमेंट को करें। सुरक्षित और छोटे छोटे प्रयोगों से शुरुआत करके आत्मविश्वास बढ़ाएं, अपने काम को ईमानदारी से करें, इससे विफलता का डर कम हो जाता है। नया डिफरेंट ड्रेस ट्राई करना हो या सोलो ट्रिप का मन हो तो ज़रूर करें। सखियों, सोलो ट्रिप यानी अकेले यात्रा करना खुद को जानने और आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। पहली बार अकेले जाने में थोड़ा डर लगना स्वाभाविक है, सामान्य सी बात है, लेकिन सही तैयारी से यह अनुभव बहुत ही अच्छा रहता है। सखियों, पहली सोलो ट्रिप को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए बहुत सी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली यात्रा के लिए किसी ऐसे शहर को हमें चुनना चाहिए जो पर्यटकों के लिए सुरक्षित और सुलभ मानी जाती है। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें

दिन में ही पहुँचें, हम ऐसा प्लान करें। अपने परिवार या किसी करीबी दोस्त के साथ अपने होटल का पता और लाइव लोकेशन भी हमेशा शेयर करें। सखियों, नए नए प्रयोग, चाहे वो करियर से संबंधित हो, नए तकनीक सीखने, शिक्षा या दैनिक जीवन से संबंधित हो, हमें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाते हैं। सखियों, इंटरनेट और स्मार्टफोन ने आज एक्सपेरिमेंट को बहुत आसान बना दिया है। सखियों, अगर आप पेंटिंग, सिलाई, संगीत या कोई नई भाषा ही क्यों ना सीखना चाहें, ऑनलाइन कुछ भी हम सीख सकते हैं। हर दिन कुछ नया करने का टारगेट रखें, ऐसा करके आप तरोताज़ा महसूस करेंगी।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों में एक नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, वो है अरुणा आसफ अली। उन्होंने 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका नाम अरुणा गांगुली था। पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहीं, बाल्यकाल से ही कक्षा में सर्वोच्च रहती थीं। बचपन में ही उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुरता को दर्शा दिया था। नैनीताल से पढ़ाई पूरी कर अरुणा शिक्षिका बन गई और कोलकाता के

गोखले मेमोरियल कॉलेज में पढ़ाने लगी। अरुणा जी स्वतंत्र विचारों की और खुद निर्णय लेने वाली एक सशक्त महिला थी। उन्होंने अपनी मर्जी से सुविख्यात वकील और राजनीतिक आसफ अली से विवाह कर लिया। इस विवाह ने अरुणा के जीवन को एक नई दिशा दी। वे राजनीति में रुचि लेने लगीं और राष्ट्रीय आंदोलन में भी सम्मिलित होने लगीं। वे महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सभाओं में शामिल होने लगीं। उस समय अंग्रेजों के अत्याचारों से उन्हें आंदोलन में शामिल होने की और प्रेरणा मिलती थी। अरुणा जी 1942 के पहले कई बार जेल भी गईं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा जी ने अंग्रेजों की जेल में बंद रहने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। इस तरह अंग्रेजी सरकार को खुली चुनौती देने वाली वे प्रमुख महिला थी। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में घूम घूम कर पुलिस से बचकर लोगों में नव जागृति लाने का प्रयत्न किया। 1946 में जब उनके नाम का वारंट रद्द हुआ तब वे लोगों के सामने आईं। उनकी सारी संपत्ति जब्त होने पर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था। उन्होंने मजदूर आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद वे राजनीति में सक्रिय रहीं। अरुणा जी 1958 में दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर चुनी गई। महापौर रहते हुए उन्होंने दिल्ली के विकास, सफाई व स्वास्थ्य सुधार के साथ साथ नगर निगम की कार्यप्रणाली भी सुधारी। इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी, ऑल इंडिया पीस काउंसिल व नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन जैसी नोबल संस्थाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। सखियों, अरुणा जी को 1964 में लेनिन शांति पुरस्कार, 1991 में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1997 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सखियों, अरुणा जी की लोगों के प्रति आत्मीयता व स्नेह को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे एक महान देशभक्त थी। 87 वर्ष की उम्र में आज ही के दिन 1996 को वे इस संसार से विदा हो गईं। देश के प्रति उनके योगदान और वफादारी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। सखियों, अब समय हो रहा है हमारे जाने का। अनुमति दीजिए धम्म मित्रा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा, प्रतिदिन शाम 7:20 से।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनिए प्रतिदिन आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, प्रतिदिन सुबह 7:20 से।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और

0: अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है। पहले सुनिए मेहरबान सिंह कुशवाहा के स्वर में कजरी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है। पहले सुनिए साधना गोरे के स्वर में गजल।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।

त्रिशूल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज थी लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की। गीतकार थे साहिर, संगीत था खयाम का।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्राप्त विशेष वाहनों का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि वन्यजीव संरक्षण के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में बाघों की संख्या में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: कहाँ, हमारे पास 53 साल पहले 2 अंकों के अंदर ही टाइगर थे हमारे यहाँ, और अभी 2016 में लगभग 200-250 के आसपास थे, और अभी जो 22 की गिनती आई तो 750, और अभी आंकड़ा डिक्लेयर करोगे तो 1000 के बाहर ही हो जाएगा। और भोपाल वाले तो और भाग्यशाली, पूरे पृथ्वी पर सबसे नजदीक अगर कहीं बाघ रह रहा है तो भोपाल और भोपाल के आसपास रह रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। मेरी अपनी ओर से बाघ दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई।
0: इस अवसर पर रातापानी टाइगर रिजर्व और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के लोगों का अनावरण, पिंच एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम का लोकार्पण और जैव विविधता तथा वन्यजीव संरक्षण पर आधारित पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों और समितियों को भी सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज के खिलाफ ओडिशा सरकार की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि एनिमेशन तकनीक से बच्चों के लिए विशेष रूप से फिल्में बनाई जाती हैं और ऐसी याचिकाओं के आधार पर फिल्म को रोका नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि देश में रचनात्मकता और एनिमेशन बच्चों के लिए है। ओडिशा सरकार का तर्क था कि भगवान जगन्नाथ के चित्रण पर कुछ वर्गों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद फिल्म के रिलीज होने पर कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। खंडवा के श्री दादाजी धोनी वाले मंदिर में 12 घंटे के भीतर करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि देर रात तक ये संख्या 2 लाख से अधिक होने का अनुमान है। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम, मुरैना के करह धाम, हरदा और ग्वालियर के मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना, गुरु वंदन और धार्मिक आयोजन हुए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आगरमालवा जिले में भी आज विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिकारपुर में गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रदेश में सक्रिय मानसूनी सिस्टम के कारण आज भी कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांडुना, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आज वन्यजीवों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राइट फॉर टाइगर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झाबुआ की ग्राम पंचायत परवलिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान के तहत कल पिछोर में शपथ समारोह अभियान चलाकर स्कूली बच्चों और युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई गई। वहीं बुरहानपुर जिले के 113 स्कूलों के 32,000 विद्यार्थियों ने एक साथ अपने हाथों से नशे से दूरी है जरूरी लिखकर इतिहास रच दिया। इस अनोखी पहल की एंट्री वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन भेजी गई है। कटनी पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज फॉरेस्ट प्लेग्राउंड से मिशन चौक तक एक जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।

0: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों के संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए RSP सांसद NK प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक TDPL एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि JPSC ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थाली में परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि CBI जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: JPSC बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो JPSC में धांधली हुआ इसको CBI जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद PP चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4: प्रश्न है कि श्री PP चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
5: हाँ।
4: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें,
5: हाँ।
4: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
6: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सोराइदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
7: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया

0: में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
1: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
2: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी श्रोता साथियों ने। ये है महाराष्ट्र नागपुर से अभिजीत गवाणकर, सरिता सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित गवाणकर, ध्वनि गवाणकर। और ये है खंडवा से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना नागनपुरे, गोलबाजार बक्सर से श्रद्धा नंदार्य, अभय नंदार्य, परमानंदार्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, विजय केशरी। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म कभी अलविदा ना कहना, इसका गीत जिसके लिए आवाज है शफाकत अमानत अली, शंकर एहसान लाय की, और गीतकार हैं शंकर एहसान लाय। तो सुनते हैं फिल्म का ये गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश भेजी है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, राज एसडी अंसारी, नरेंद्र कुमार यादव, डुमराव बिहार से वली उल्ला अंसारी, सुनील कुमार वर्मा, देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, और कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है लव आजकल, इस फिल्म का गीत जिसके लिए आवाज है मोहित चौहान की, गीतकार है इरशाद कामिल, संगीत है प्रीतम का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, देवास से राजू अग्रवाल, शांति, मुकेश महाजन और नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत, मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, कमल निगम, रूपा खेड़ी देवदास देवास से ही हरिराम माली, विष्णु कपिल, निरंजन माली, भारत सिंह, और मोहसिनपुरा से जमील खान, इमरान और मुस्कान। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है ओम शांति ओम, इस फिल्म का ये गीत जिसके लिए आवाज है श्रेया घोषाल, अभिजीत की, गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत है विशाल शेखर का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है हमारे इन श्रोता साथियों की। यह है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, बीबी आरजू जाजोरिया। अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। अमरावती महाराष्ट्र से नसीम बेगम, आयशा, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुस्तबा खान, राउफ और शाहिद। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है बचना है हसीनो, इस फिल्म का गीत जिसके लिए आवाज़ है लकी अली, श्रेया घोषाल की। गीतकार हैं अन्विता दत्त गुप्ता और संगीत है विशाल शेखर का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, रिंगनी छत्तीसगढ़ से ही दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत प्रसाद वर्मा, लोनी बिहार से प्रकाश वीर राजपूत, नसीलुल इल्साम गनोरी, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से कमलेश जयपुरिया, भिलाई छत्तीसगढ़ से अनुश्री प्रदीप, पिंकी प्रमीला प्रदीप और रायगढ़ छत्तीसगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्राप्त विशेष वाहनों का लोकार्पण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज के खिलाफ ओडिशा सरकार की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि एनिमेशन तकनीक से बच्चों के लिए विशेष रूप से फिल्में बनाई जाती हैं और ऐसी याचिकाओं के आधार पर फिल्म को रोका नहीं जा सकता। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति JPC का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। खंडवा के श्री दादाजी धुनी वाले मंदिर में 12 घंटे के भीतर करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि देर रात तक ये संख्या 2 लाख से अधिक होने का अनुमान है। और मौसम विभाग ने बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांडुना, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको बता दें आज शाम की सभा के कार्यक्रमों के बारे में।

कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान होगा। 6 बजे सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। शाम 6:30 पर और रात 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात 8 बजे सुनिए संसद समीक्षा। 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।

चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम होगा आज रात 9:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे सुनिए नाटक कर्तव्य। लेखक हैं राजकुमार जायसवाल, प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी रात 10:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे समरजीत सेन से राग श्याम कल्याण में सितार वादन।

आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा होगा 7:21 पर। इसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता जैव उर्वरक से उन्नत कृषि उत्पादन डॉक्टर गोविंद गुप्ता से। तो ये थे आज शाम की सभा के कार्यक्रमों की जानकारी। मीडिया वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:02 हुए हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम की सभा में 5:00 हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है। पहले सुनिए मेहरबान सिंह कुशवाहा के स्वर में कजरी।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है। पहले सुनिए साधना गोरे के स्वर में गजल।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

है, है, है, है, है।

ताल फिल्म का गीत अभी आपने सुना सुखविंदर सिंह अलका याग्निक के स्वर में, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था ए आर रहमान का।

हम दिल दे चुके, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। गीतकार थे महबूब और संगीत था इस्माइल दरबार का।

0: ये गीत था फिल्म विजय पथ से, जिसके लिए आवाज थी कुमार सानू, अलका याग्निक की, और इसके साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। और अब एक सूचना, भोपाल आयुक्त पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा सहित 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार भोपाल शहर में सुरक्षा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से नागरिकों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। यदि आपने अपने मकान, फ्लैट, अन्य परिसर को किराए पर दिया है अथवा किसी किराएदार, पेइंग गेस्ट, घरेलू नौकर, ड्राइवर, कर्मचारी, अन्य सहायक को रखा है तो उसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पुलिस थाने, मध्य प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी प्रकार होटल, लाज, धर्मशाला, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, छात्रावास, निर्माण स्थलों, निजी सुरक्षा एजेंसियों, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर, घर घर जाकर वस्तुओं की डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों से संबंधित निर्धारित जानकारी भी संबंधित स्थानों पर पुलिस को उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है। भोपाल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शहर की सुरक्षा में अपना सहयोग दें, निर्धारित प्रावधानों का पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 आज ध्वनिमत से पास हो गया। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए गए हैं। अब इस अपराध में अधिकतम 10 साल की सजा और जेल, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बताने वाला विधेयक पारित कर दिया गया है। इस कानून के तहत वंदे मातरम का अपमान करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राज्य के शासकीय, अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश तिथि बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए जिन विद्यार्थियों ने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी प्रवेश प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी कर लें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। खंडवा के श्री दादाजी धुनी वाले मंदिर में 12 घंटे के भीतर करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि देर रात तक यह संख्या 2 लाख से अधिक होने का अनुमान है। और मौसम विभाग ने बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। सामईन, आज के कहकशां प्रोग्राम में आबशार गज़ल सीरीज़ के तहत हम बात करेंगे ज़हनी सेहत की अहमियत के बारे में और साथ ही लुत्फ अंदोज होंगे मखमली आवाज़ों वाले गुलूकारों की गज़लों से। दोस्तों, मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी सेहत से मुराद किसी शख्स की जज्बाती, नफ्सियाती और समाजी बहबूद है। ये इस बात पर असर अंदाज होता है कि एक शख्स किस तरह सोचता है, महसूस करता है और बर्ताव करता है, और ये इस बात का तायुन करने में भी किरदार अदा करता है कि कोई शख्स किस तरह तनाव का मुकाबला करता है, दूसरों से ताल्लुक़ रखता है और इंतखाब करता है। मज़बूत ज़हनी सेहत किसी शख्स की अपनी सलाहियत को पूरा करने, नतीजा खेज काम करने और अपने समाज में बामानी शराकत करने की सलाहियत से नुमाया होती है। दोस्तों, दिमागी सेहत एक पेचीदा और मुतहर्रिक तसव्वुर है और ये जेनेटिक्स, माहौल, ज़िंदगी के वाक़ियात और ज़ाती तजुर्बात समेत मुतअद्दिद अवामिल से मुतासिर हो सकता है। ये समझना अहम है कि ज़हनी सेहत भी जिस्मानी सेहत की तरह ही ज़रूरी है, और अगर आप या आपके जानने वाले किसी ज़हनी सेहत की हालत की अलामत का सामना कर रहे हैं तो मदद लेना ज़रूरी है। मुनासिब इलाज और मदद के साथ दिमागी सेहत की दुश्वारियों से सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना मुमकिन है। सामईन, अच्छी दिमागी सेहत किसी शख्स की मजमूई जज्बाती बहबूद और खुशी में हिस्सा अदा करती है। ये एक शख्स को मुसबत जज्बात का तजर्बा करने और मुश्किल या दबाव वाले हालात से निमटने में मदद करता है। दोस्तों, जिस्मानी सेहत और दिमागी सेहत का गहरा ताल्लुक है। दायमी तनाव और दीगर ज़हनी सेहत के अमराज जिस्मानी सेहत के मसाइल जैसे सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और कमज़ोर इम्यून सिस्टम का बाइस बन सकती है। सामईन, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा प्रोग्राम आबशार गज़ल गज़लों से सजा होता है, तो आइए सुनते हैं अपने प्रोग्राम की पहली पेशकश में ये खूबसूरत गज़ल। समात फरमाइए।

दोस्तों, अभी आप गुलूकार सुशील कुमार की जादुई आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे। सामईन, हमारी बातचीत का मौजू था जहनी सेहत की अहमियत के बारे में। जहनी सेहत के मसाइल के कामयाब इलाज के लिए इब्तदाई मदाखलत बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को दिमागी बीमारी की अलामत का इल्म हो तो वो जल्द मदद ले सकते हैं, जिससे उनकी सेहतयाब होने के इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, दिमागी सेहत मजमूई सेहत का एक अहम पहलू है और जहनी बीमारी किसी शख्स की ज़िंदगी पर नुमाया असर डाल सकती है। दिमागी सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने से लोग अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखने की अहमियत को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले कर सकते हैं। दिमागी सेहत के मसाइल को हल किया जा सकता है और इससे लोगों को मदद और तफहीम फराहम करने का इम्कान ज़्यादा होता है। जो जहनी बीमारी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, मजमूई तौर पर जहनी सेहत के बारे में बेदारी में इजाफा अफराद और कम्युनिटीज़ की जहनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशा, DTH के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से में धारावाहिक कामिनी काय कांतारी की 14वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारी की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 14वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि के सकुशल लौट आने के लिए रानी पिंगला कठोर तांत्रिक अनुष्ठान करती हैं। उधर राजा भर्तृहरि उनके काव्य की प्रशंसिका चारुमित्रा से मिलने चंद्रपुर की ओर चल रहे हैं। अब आगे

0: राह पर चले जा रहे थे राजा भर्तहरि, दुविधा और असमंजस, दिशा और गंतव्य अस्पष्ट, संभवतः चंद्रपुर, जहां उनकी भेंट चारु मित्रा से हो। वह चारु मित्रा जिसका सौंदर्य और कला लोक गाथा का स्वरूप ले चुकी है।
1: चल चल।
2: कहां आ गया हूं चलते चलते? खेत है तो कहीं बस्ती भी होगी।
3: यहां पानी मिल सकेगा बंधु? क्या मैं आ सकता हूं?
1: संभल कर बेटे, कोई पथिक लगता है, प्यासा थका हुआ होगा। जय महाकाल।
2: जय महाकाल।
1: आपका स्वागत है। प्रवेश की अनुमति तो महालयों में मांगी जाती है। ये किसान का आंगन है, पधारिए। किसान निषिद्ध प्रवेश का दंभ नहीं पालते। तो अतिथि को जाना कहाँ है?
2: चंद्रपुर जाना है बंधु।
1: चंद्रपुर? चंद्रपुर तो रूप और राग की नगरी है अतिथि महोदय। आप ठहरे विरागी बंधु, आपकी गांठ में तो शायद फूटी कौड़ी भी ना हो। चारु मित्रा नाम की स्वर्ग से भटकी अप्सरा रहती है चंद्रपुर में।
2: तुमने कभी चारु मित्रा को देखा है?
1: क्यों नहीं, सारंगपुर के बसंतोत्सव में देखा था उसे।
2: कैसी है वो?
1: सुंदर, कोमल, कमनीय, किंतु हमारे किस काम की पथिक। देखो वो आ रही है, मेरी पत्नी, मेरी चारु मित्रा, मेरा कलेवा लेकर। यहां से लौटेगी तो चार गट्ठा चारा चौपायों के लिए सिर पर ढोकर ले जाएगी। इस बोझ से चंद्रपुर की चारु मित्रा की तो गर्दन ही टूट जाए। हमारी सुंदरता, हमारा गुण श्रम से जुड़ा है पथिक। तुम चाहो तो थोड़ा विश्राम कर लो, या फिर मेरी चारु मित्रा से बातें करो। वह जो माथे पर चिंता की लकीरें और अधरों पर स्मित लिए यहां पहुंच रही है, भोजन लाई है। मेरा आग्रह है कि मध्यान भोजन हम साथ ही करेंगे। तब तक मैं खेत जोत कर आता हूं। चल चल चल चल, आए आए आए, चलो बेटो चलो।
4: पथिक महाशय, साधु हो अथवा साधक या गृहस्थ?
2: देवी, क्या इतना पर्याप्त नहीं कि मैं एक पथिक हूं?
4: पथिक हूं, किंतु हमारे क्षेत्र के लिए तो अतिथि हो और अभ्यर्थनीय हो। साधु या गृहस्थ, उसी अनुसार अभ्यर्थना करनी होगी।
2: सत्य तो यह है देवी कि मैं ना तो साधु हूं और ना ही गृहस्थ। अभी तय नहीं कर पाया हूं कि स्वयं को किस कोटि में रखूं। यूं पहले मैं गृहस्थ था और अब विरक्त।
4: पत्नी से लड़कर गृह त्यागा है या उस पर अविश्वास करके?
2: ये बताना आवश्यक है क्या?
4: छिपाना चाहे तो वैसा ही करें।
0: तभी किसान हल का चक्कर पूरा करके लौटता है।
1: ये चंद्रपुर जा रहे हैं, इनका कोई परिचित या संबंधी वहां नहीं है। एक ही आकर्षण है चारु मित्रा। तुम्हें कोई संदेशा वंदेशा पहुंचाना हो तो सहायक बन सकते हैं ये।
4: पथिक, मेरे पति व्यंग कर रहे हैं। कारण यह है कि हमारा एकमात्र पुत्र चारु मित्रा के सम्मोहन में फंसकर चंद्रपुर में अटका पड़ा है। अभी उसकी वय ही क्या है, मात्र 19 वर्ष, पावरा हो गया। उसका नाम श्रवण है, बड़े चाव के साथ हमने उसे ये नाम दिया था। यदि अवसर मिल जाए तो वहां की

0: खोजना और कहना उसकी माँ अत्यंत आतुरता पूर्वक उसका स्मरण करती रहती है।
1: मैं वचन देता हूं देवी कि चंद्रपुर पहुंचकर मैं श्रवण को तुम्हारा संदेश अवश्य दूंगा और प्रयत्न भी करूंगा कि वो तुम्हारी गोद में लौट आए। अब आज्ञा दो, मुझे जाना होगा।
2: चंद्रपुर का मार्ग निष्कंटक नहीं है, बीच में मणिभद्रा का क्षेत्र पड़ेगा, सावधान रहना होगा। मणिभद्रा योगिनी है, सिद्ध योगिनी, अनेक सिद्धियों और शक्तियों से संपन्न आकाश विहारिणी, बचे रहना।
1: अच्छा ठीक है, तो मैं चलूं?
2: हाँ जाओ, तुम्हारी कामना साधना सफल हो। और सुनो, मैं जान गई हूं कि तुम हमारी भांति ना तो ग्रामीण हो और ना ही साधु साधक, तुम कुछ और हो।
1: और क्या हो सकता हूं?
2: अभी नहीं, लौट कर आना, तब स्यात में बता सकूं कि तुम कौन हो सकते हो।
3: भ्रातरी किसान तथा उसकी पत्नी से विदा लेकर आगे बढ़ते हैं।
1: ओहो, ये तीक्ष्ण गंध, क्या निकट ही कहीं मदिरा की आस बनी है? उसी से पूछता हूं।
4: महोदय, इस ग्राम नगर का नाम क्या है?
5: पथे, नए लगते हो तुम, इस ग्राम नगर का नाम ही मधुका है। भांति भांति की मदिरा यहां बनाई और विक्रय की जाती है, देश देशांतर तक ख्याति है इस ग्राम की और यहाँ की मदिरा की भी।
1: अच्छा, तो यही है मधुका।
5: हाँ, यही है मधुका। लगता है तुमने भी चखी है यहाँ की मदिरा। कहाँ से आए हो?
1: दूर एक ग्राम है, पैठार, अवंती राज्य में है। मेरा एक स्वजन कोप करके घर छोड़कर चला गया था, उसी की खोज में संभवतः वो इस ओर आया हो। लगता है कि यही मुख्य बाजार है, तनिक देख लूं?
5: हाँ हाँ, देखो, अवश्य देखो। देखो ना कितनी चहल पहल है।
6: अरे माल ला दो भाई, माल ला दो। अरे देरी हो रही है। अरे दांत दो मेरे भाई।
7: अरे हटो हटो,
6: देरी हो रही है। मेरा माल अभी तक नहीं लगा है। अरे 60 कोस दूर पहुंचना है भाई। आज से उत्सव आरंभ हो रहा है उज्जैनी में, राज्य उत्सव है। ऐसे ही अवसरों पर तो कुछ कमाई हो पाती है। दिन रात चलकर जब तक पहुंचूंगा तब तक उत्सव समाप्त हो चुका होगा।
1: काहे का उत्सव है बंधु?
6: अरे भाई उज्जैनी का क्या, वो तो उत्सवों की नगरी है, वहां तो सदैव उत्सव ही उत्सव।
5: अरे भाई, महादेव की कृपा से महादेवी पिंगला गर्भवती हैं। उनके गर्भ में कनक शंगा का भावी शासक आया है। प्रजा बहुत उल्लासित है, विराट उत्सव आयोजित किया गया है। देश देश के गुणीजन और कलावंत उज्जैनी में जुट रहे हैं। अरे आचार्यों के शास्त्रार्थ होंगे, नाट्य संगीत काव्य खेल तमाशे कौशल और न जाने क्या क्या।
6: पर महाराज, भ्रातरी अभी राजधानी में नहीं है। सुना है ज्योतिषी के परामर्श पर वह कुछ दिनों बाद वापस आएंगे।
5: अरे बंधु, महाराज नहीं होंगे तो उत्सव का आनंद ही कैसा।
6: ठीक कह रहे हैं आप, बताया गया है कि चारू मित्रा ने उत्सव का आमंत्रण ठुकरा दिया है। ठीक ही किया, जब गुणी नरेश उपस्थित ना हो तो अपनी कला का प्रदर्शन किसके आगे करती। मूर्ख मद्यपों की भीड़ में उसने निर्णय लिया है कि महाशिवरात्रि के दिन वो महाकाल को अपना नृत्य और गायन समर्पित करेगी।
5: साध साध बंधु, उसका ये निर्णय प्रशंसनीय है।
6: निर्णय की तो प्रशंसा कर ली, लेकिन मूर्ख मद्यप ना हो

0: कारोबार कैसे चलेगा? अरे वही तो हमारे अन्नदाता हैं।
1: बंधु, आपने अभी कहा कि रानी पिंगला गर्भवती हैं?
0: हाँ भाई, सुना तो यही है। इतने बड़े उत्सव का आयोजन इसी निमित्त से हो रहा है, आपको कोई आपत्ति है?
1: अरे मुझे आपत्ति क्यों होने लगी मित्र, ये तो सभी के लिए परम प्रसन्नता का अवसर है। आपने ये भी बताया कि राजा भर्तृहरि किसी विशेष अनुष्ठान में है।
0: अरे हाँ भाई, यह भी कहा था, क्योंकि यही सुना भी है और सच भी यही है। महाराज और महारानी के पवित्र अनुष्ठान से ही यह सुअवसर आया है, अन्यथा उनके विवाह को इतने बरस हुए और जैनीवासी सुसंवाद पाने के लिए तरसते रहे।
1: आप अनावश्यक कुपित हो रहे हैं श्रेष्ठी, मैं तो केवल अपनी जन्मभूमि के विषय में जानने को उत्सुक हूं। अपनी उलझनों के कारण मैं कुछ समय पूर्व अवंती से निकला था, किंतु अपने देश अपनी भूमि के बारे में जानने की उत्कंठा तो रहती ही है।
0: तो आप उज्जैनी से हैं?
1: जी, नागरिक हूं उस राज्य का।
0: तो फिर हमारे ही बंधु हो।
1: बंधु कहा है तो मेरा भी अधिकार बनता है। उज्जैनी के विषय में कुछ और बताएं।
0: बताने को और क्या है, महाकाल की पूजा अर्चना यथावत चल रही है और उज्जैनी के कार्यकलाप भी। पानागार तीर्थ ग्रहों में लोग उसी तरह जुटते हैं, रूपांगनाएं अपने स्थान पर हैं, पावस बीतने से व्यापारी आ जा रहे हैं, पन्ने की सजधज तीप्ति लौट आई है, उत्सव के कारण चहल पहल बढ़ गई है। पूछना ही भूल गया, मद्यपान में रुचि है तुम्हारी, प्रस्तुत करूं क्या?
1: नहीं बंधु, धन्यवाद, स्वाद चखे युग बीत गया, अब ना तो इच्छा है और ना आवश्यकता। कुछ और बताइए ना अवंती के विषय में।
0: हाँ, नरेश की अनुपस्थिति से राजपुरुष निरंकुश हो चले हैं। पहले तवे छिपे उत्कोच ली जाती थी, अब खुलेआम चाहते हैं। हम व्यापारियों की तो सांसत है।
1: आप अमात्य महामात्य को अपनी पीड़ा से अवगत क्यों नहीं कराते? वंचक राजकर्मियों को दंड दिलाना भी तो आपका दायित्व है।
0: भली कही, राजकर्मियों को दंडित करवाने की बात करते हो। शिल्पी, दास और भृत्यों को छोड़कर हर एक राजकर्मी किसी न किसी अमात्य या सामंत के मुंह लगा है। फिर महामात्य, अमात्य या नरेश तक पहुंच पाना सरल है क्या? किसी तरह पहुंच भी जाओ तो किसी राजकर्मी राजपुरुष को दंड देने से पहले उन्हें भी सोचना पड़ेगा। इतना सरल नहीं है भाई, हमें रहना तो इसी सरोवर में, इन मगरमच्छों के आसपास, सच कह रहा हूं ना बंधु?
2: बिल्कुल सत्य वचन है आपके बंधु।
1: पर उज्जैनी के महामात्य की तो बड़ी प्रशंसा है, वो सुयोग्य और सत्यकाम है।
0: वह तो है, सुना है कुछ लोग उन्हें हटाने की दुर्भिसंधि रच रहे हैं।
2: लीजिए महाशय, आपकी लदान पूरी हो गई, गिन लीजिए भंडकों को और उनका हिसाब भी लगा दीजिए।
0: अब क्या गिनूं बंधु, मैंने पहले ही गिन लिए हैं। अच्छा तो अब मैं प्रस्थान करता हूँ।

महामात्य के विरुद्ध दुराभिसंधि, तब तो अवंती की प्रजा नितांत अरक्षित हो जाएगी। हे देव, क्या मुझे उज्जैनी लौटना चाहिए? यह भी संभव है कि दशाण अथवा दक्षिण के आसपास वाले सामंत कोई षड्यंत्र बुन रहे हो, पर नहीं, अभी नहीं। अभी तो कुछ समय चारुमित्रा के यहां व्यतीत करूंगा, तब तक शायद कुछ और सूचनाएं मिले, स्थिति अधिक स्पष्ट हो।

0: अरे एरा आओ, मधुचंद्र का विख्यात पारागार यहाँ है। तुमने सुना ही होगा कि अंटी में दाम हो या न हो, मधुचंद्र तुम्हें निराश नहीं करेगा। अरे दो चषक और दो रोटी उधार का यहाँ चलता ही है, उधार चुकाओ या न चुकाओ। भैरव बाबा की कृपा से मधुचंद्र को कभी कहीं कोई घाटा ही नहीं होता, समझे नहीं समझे। अरे आओ परदेसी, मुहूर्त भर यही विश्राम कर लो।
1: आपकी सदाशयता के लिए कृतज्ञ हूं महाशय, मदपान में मेरी रुचि नहीं और भूख भी नहीं है। मुझे तो बस वो दिशा बता दें जहां से चंद्रपुर के मार्ग तक पहुंच सकूं, मुझे वहीं जाना है।
0: चारु मित्रा के दर्शन का पुण्य कमाने जा रहे हो मित्र है? अरे यात्री महाशय, भैरव महाराज तुम्हारा भला करें, लगन तो तुम्हारी चोखी है चोखी। अरे अभी अभी एक सारसवाह उधर के लिए निकलने वाला है, ऐ उसी के साथ हो लेना, समझे कि नहीं समझे। अरे 3 दिनों में रूप सुंदरी के देश पहुंच जाओगे।
1: किंतु मार्ग तो 2 दिन का बताया गया है।
0: अरे तुम्हें मणिभद्रा का क्षेत्र बचाना होगा, समझे। वहां किसी भैरवी की दृष्टि में अगर आ गए तो फिर मुंडमाला की शोभा बनकर रह जाओगे। क्या क्या आत्महत्या का विचार लेकर निकले हो?
1: नहीं भाई, पर मणिभद्रा के दर्शनों का सौभाग्य तो मिलेगा ही।
0: मणिभद्रा का दर्शन? ए दुस्साहसी हो?
1: नहीं, सहज उत्सुकता भर है बंधु, बहुत सुन रखा है। जो प्रारब्ध वृकवन प्रेतपुरी और हिंस्र जीवों से भरे महारव्यों में भी निरापद रखे हुए है, वो यहां भी सुरक्षित रखेगा। औगण ने भी कहा था कि गुरु की आज्ञा है मुझे सुरक्षित रखने की, फिर जो होना है सो हो ले।
0: ए, ए भाई, अरे क्या निश्चय कर रखा है बताओ?
1: सोचा तो है
0: मणिभद्रा। अरे अपने क्षेत्र से बाहर कभी किसी का अनिष्ट नहीं करती, जिस किसी ने उसकी साधना क्षेत्र में हस्तक्षेप किया फिर वो वापस नहीं लौटता, समझेगी नहीं। अरे उन्हें अपनी साधना में किसी अवांछनीय की उपस्थिति स्वीकार ही नहीं है, समझे। मार्ग में तुम्हें मणिभद्र की एक विशाल काय प्रतिमा के दर्शन होंगे, दर्शन। वहां सभी यात्री शार्थवाह ठहर कर मणिभद्र की अर्चना और मार्ग की सुगमता के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना, समझे। यहां से 3 मार्ग है, 3 है। दाहिना विदिशा को जाता है और ये बायां मार्ग चंद्रपुर होते हुए पद्मावती के लिए निकल जाता है, और ये जो ये सीधा मार्ग देख रहे हो ना, देख रहे हो है? नहीं समझे। ये सीधा मार्ग जो है ये मणिभद्रा के क्षेत्र में पहुंचाता है।
1: चंद्रपुर की दूरी कितनी होगी महाशय?
0: मणि क्षेत्र होकर 8 योजन, सुगम क्षेत्र से 16 योजन। लेकिन तुम तो छोटे रास्ते से जाने वाले हो ना, है मणिभद्रा की कृपा हुई तो भाई 2-2.5 दिन में गंतव्य पा जाओगे, समझे।

अब मणिभद्रा से भेंट का संकल्प कर बैठे हो तो तुम मेरा भी एक काम कर देना भैया, मैं तुम्हें तुम भी और ये द्राक्ष देता हूँ।

0: ए यात्री, मेरी ओर से ये मणिभद्रा को अर्पित कर देना, कहना उनके अकिंचन से मधुचंद्र की ओर से ये भेंट स्वीकार करें, कर देंगे।
1: अब तो देवी मणिभद्रा से भेंट करनी ही पड़ेगी। लाओ अपना उपहार दे दो।
0: ये लो, संभल के संभल।
1: मैं सूर्यास्त से पहले वहां पहुंचना चाहता हूं। मधुचंद्र से तुम्बी द्राक्षा लेकर भर्तृहरि आगे बढ़ते हैं। उन्हें यहां एक यात्री मिलता है। वे उससे कहते हैं,
2: जय महाकाल।
3: जय महाकाल। जय गोपाल। अकेले हो भद्र? कहाँ जाना है?
1: पहले तो चंद्रपुर पहुंचना है, तत्पश्चात कुछ भी निश्चित नहीं।
3: मदरसिक प्रतीत होते हो। अपनी मदिरा की तुम्बी कंधे पर लटका कर यात्रा कर रहे हो।
1: ये तुम्बी तो देवी मणिभद्रा को सौंपना है महाशय। माधा के सुरा विक्रेता मधुचंद्र ने उपहार स्वरूप पहुंचाई है। आज रात वहीं विश्राम भी होगा।
3: कौन है ये? मदिरा के प्रभाव से नितांत बोराया कोई, या फिर जीवन से निराश कोई आत्महंता, या फिर कोई रहस्यमय तांत्रिक जो मणिभद्रा के क्षेत्र में रात्रि विश्राम की सोच रहा है। खैर जो भी हो, महाकाल रक्षा करे।
4: रवि की लालिमा मणिभद्र की प्रतिमा के मुख पर आंट ठहरी है, जिससे शीर्ष के आसपास पीत रक्त प्रकाश वलय बन गया है और शरीर का हर अंग प्रदीप्त होकर स्पष्ट हो उठा है। भर्तृहरि मुग्ध भाव से यक्ष प्रतिमा के निकट पहुंचे। उन्होंने नमन करते हुए मूर्ति चत्वर की परिक्रमा की। इस समय मूर्ति कुछ अलग प्रकट की ही तेजस्विता विकीर्ण कर रही है।
3: बंधु, सातवाहों में यह धारणा प्रचलित है कि मणिभद्र की उपासना से कामनाएं सफल होती हैं, संकल्प पूरे होते हैं और विघ्नों का शमन होता है। बंधु, आपने महाकाल का स्मरण करते हुए मणिभद्रा रक्षित अरण्य में प्रवेश किया है। अभी कम से कम घड़ी भर प्रकाश शेष है, जिससे एक कोस की दूरी मापी जा सकती है।
4: पीछे छूट गए रास्तों पर उड़ती हुई स्वर्णिम धूल यह दर्शा रही थी कि और अन्य सार्थवाह भी मणिभद्र प्रतिमा के पास पहुंच रहे हैं, जो वहां रात्रि विश्राम करेंगे और भय तथा आतंक की दृष्टि से इस तरफ देखते रहेंगे। आश्चर्य के साथ जिधर राजा भर्तृहरि कंधे पर तुम्बी लादे लकुट हाथ में लिए निर्भय प्रवेश कर गए हैं अकेले।

भर्थरी ने इस फैले हुए सघन वन प्रांतर में कुछ मानव आकृतियों को देखा। स्त्री और पुरुष, अप्सराएं और गंधर्व, काम मुद्राओं में निर्बंध केलीरत, कोई मदनोत्सव मंचित हो रहा हो जैसे, किंतु यह मूर्ति शिल्प थे, निर्जीव किंतु आकर्षक, सजीवता की सीमा तक। अचानक कई कंठों से स्वागतम स्वागतम के स्वर गूंजते। मादक संगीत ध्वनियां और कोयल पपीहे की आवाजें आने लगती हैं, जैसे उस वन प्रांतर के वृक्ष ही बोल रहे हो, किंतु यह सधे हुए शुक शारिकाओं की ध्वनियां थी। आगत के स्वागत में मुखर होती हुई

0: देवी मणिभद्रा तक पहुंचाने का मार्ग दिखाएं। कोई है?
1: भृतहरि के स्वर की प्रतिध्वनियां दिशाओं से बार बार टकराकर लौट आती हैं।
0: अरे कोई है?
2: कोई है?
0: अरे कोई है?
2: कोई है?
0: अरे कोई है?
2: कोई है?
0: अरे कोई है?
2: कोई है?
0: देवी मणिभद्रा तक
2: कोई है?
0: देवी मणिभद्रा तक
2: कोई है?

अभी आप महेश कटारी द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 14वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार मुकेश विश्वकर्मा, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, किसान गणपत एस पाठक, कृषक पत्नी शोभा चटर्जी, अजनबी अशोक बुलानी, व्यापारी अमित त्रिचारिया, मधुचंद मांगीलाल शर्मा और यात्री अजय सिंह पाल। परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढांडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महल से निकलकर पैठार होते हुए चंद्रपुर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उनके काव्य की प्रशंसिका चारुमित्रा रहती हैं। मार्ग में महातांत्रिक देवी मणिभद्रा का क्षेत्र पड़ता है। अगले भाग में हम मणिभद्रा से परिचय प्राप्त करेंगे।

0: नमस्कार, मीडियम वेव 188.2 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, अब हमारी सांध्यकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे, जो नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस अभियान का नेतृत्व माय भारत प्लेटफॉर्म करेगा, जो एक ऑनलाइन युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता मंच है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगली गणना में ये 1000 से अधिक होने का अनुमान है। वे आज भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को कर रहे थे। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को ध्वनि मत से पास हो गया। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए गए हैं। अब इस अपराध में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक पारित कर दिया गया। इस कानून के तहत वंदे मातरम का अपमान करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण वर्ष में किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से जुड़े

0: विषयों पर संवाद के लिए चार मंत्रियों की समिति गठित करने की जानकारी दी और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह आप सभी का युववाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। ये दिन गुरु के सम्मान का दिन है, ज्ञान का उत्सव है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक पर्व है। यह पर्व हमें अपने गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर देता है। हमारे जीवन में माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें सही ज्ञान, अच्छे संस्कार और जीवन जीने की सही दिशा देते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। जैसे कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इस दोहे का अर्थ है कि यदि गुरु और भगवान दोनों हमारे सामने खड़े हों तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। गुरु पूर्णिमा का संबंध महर्षि वेदव्यास से भी है। उन्होंने वेदों का विभाजन किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, इसलिए उन्हें आदि गुरु माना जाता है। उनके सम्मान में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। प्रिय साथियों, गुरु केवल विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं होते। हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, जीवन में सही राह दिखाने वाले व्यक्ति और हमारा अनुभव भी हमारे गुरु होते हैं। हम जिस किसी से भी अच्छी सीख प्राप्त करते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमारा गुरु है। साथियों, आज के समय में शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। डिजिटल माध्यम, इंटरनेट और नई तकनीकों ने सीखने के अनेक अवसर दिए हैं, फिर भी एक सच्चे गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। गुरु केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं देते, बल्कि वे अच्छे संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करते हैं। मित्रों, एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान केवल अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने गुरु का सम्मान करना, समय का सदुपयोग करना, अनुशासन का पालन करना और निरंतर सीखने की इच्छा रखना भी है। जैसे कि हमारे देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी अपने शिक्षकों को अपनी सफलता का सबसे बड़ा आधार माना था। उन्होंने कहा कि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदल सकता है। प्रिय मित्रों, आज हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने गुरुजनों का सदैव सम्मान करेंगे, उनकी सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे और एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करेंगे। गुरु पूर्णिमा हमें केवल एक दिन गुरु का सम्मान करना नहीं सिखाती, बल्कि पूरे जीवन उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आइए हम सब मिलकर अपने गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करें और उनके उज्ज्वल स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करें।

साथियों, बरसात का मौसम हरियाली और खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन इसके साथ कुछ बीमारियाँ भी आती हैं। इनमें सबसे प्रमुख बीमारी है डेंगू। यदि समय रहते सावधानी ना बरते जाएं, तो यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी जागरूकता और स्वच्छता से डेंगू से बचा जा सकता है। साथियों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी अपने घर की छत, कूलर, गमलों या पुराने टायरों में जमा पानी देखा है? यदि हाँ, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल बीमारी है। यह एडेज मच्छर के काटने से फैलती है। यह मच्छर गंदे नालों में नहीं, बल्कि साफ और रुके हुए पानी में पनपता है। यह अधिकतर सुबह और शाम के समय काटता है। मित्रों, अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। डेंगू कैसे फैलता है? जब एडिस मच्छर किसी डेंगू संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो उसके शरीर में वायरस पहुँच जाता है। बाद में वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है।

है तो वायरस उस व्यक्ति में भी पहुंच जाता है। ध्यान रखें, डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने, साथ बैठने, खाना खाने या हाथ मिलाने से नहीं।

सकते, कुछ मामलों में नाक या मसूड़ों में खून आना। ऐसे लक्षणों को कभी भी सामान्य बुखार समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप सप्ताह में केवल 10 मिनट अपने घर और आसपास की सफाई के लिए निकाल सकते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आप अपने परिवार और मोहल्ले को डेंगू से बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, दवा से बेहतर है बचाव, और बचाव की शुरुआत होती है स्वच्छता से। आइए आज ही संकल्प लें कि अपने घर और आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने देंगे। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम का अगला भाग लेकर हम फिर मिलेंगे, जिसमें जानेंगे डेंगू से बचाव के आसान उपाय, उपचार और युवाओं की भूमिका। तब तक आप सुनिए एक प्यारा सा गीत।

साथियों, अब तक हमने जाना कि डेंगू क्या है और इसके लक्षण क्या है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, डेंगू से बचाव, उपचार और इसमें युवाओं की भूमिका। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, डेंगू का सबसे अच्छा इलाज है डेंगू होने ही ना देना। इसके लिए हमें कुछ बहुत आसान आदतें अपनानी होंगी, जैसे घर और आसपास पानी जमा ना होने दें, डेंगू फैलाने वाला एडिस मच्छर सांप और रुके हुए पानी में अंडे देता है, इसलिए घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। कूलर का पानी सप्ताह में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी हमेशा ढककर रखें। गमलों की प्लेट में पानी जमा ना रहने दें। पुराने टायर, डिब्बे, नारियल के खोल, टूटे बर्तन और बोतलों में पानी ना भरने दें। यदि कहीं पानी जमा हो गया है तो उसे तुरंत खाली कर दें। याद रखिए, सिर्फ 10 मिनट की साप्ताहिक सफाई डेंगू के खतरे को काफ़ी कम कर सकती है। श्रोताओं, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इस सप्ताह अपने घर के कूलर और पानी की टंकी की सफाई की है? यदि नहीं तो आज ही यह काम करिए। आपकी यह छोटी सी सावधानी पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकती है। दोस्तों, मच्छरों से बचाव कैसे करें? डेंगू का मच्छर अधिकतर दिन के समय काटता है, इसलिए पूरी बाहें के कपड़े पहनें, बच्चों को भी पूरे कपड़े पहनें। मच्छरदानी का उपयोग करें, घर में खिड़कियों और दरवाज़ों पर जाली लगवाएं, मच्छर भगाने वाली क्रीम या मशीन का उपयोग करें, घर और मोहल्ले की सफाई रखें। दोस्तों, स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि हर परिवार अपने घर और आसपास सफाई रखे तो डेंगू फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, डेंगू होने पर क्या करें? यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार आए और डेंगू की आशंका हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच कराएं। पर्याप्त पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, ORS और अन्य तरल पदार्थ लेते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। पूरा आराम करें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा ना लें। यदि लगातार उल्टी, तेज कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई या खून आने जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अस्पताल जाएं। दोस्तों, एक और सवाल, यदि किसी पड़ोसी को डेंगू हो जाए तो क्या हम उसकी मदद करेंगे? मुझे विश्वास है कि आपका उत्तर होगा हाँ। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बीमारी के समय मरीज और उसके परिवार का हौसला बढ़ाना भी समाज की जिम्मेदारी है।

मेरे प्रिय युवा साथियों, देश का भविष्य आप हैं। यदि युवा जागरूक होंगे तो पूरा समाज जागरूक होगा। जैसे आप क्या कर सकते हैं, अपने घर और मोहल्ले में सफाई अभियान चलाएं, सप्ताह में एक दिन सूखा दिवस मनाएं और सभी को जमा पानी हटाने के लिए प्रेरित करें। सोशल मीडिया पर सही जानकारी साझा करें। स्कूल, कॉलेज और गांवों में डेंगू से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करें। अपने दोस्तों और परिवार को समय समय पर सफाई की याद दिलाएं। यदि कहीं गंदगी या पानी जमा हो तो संबंधित विभाग को सूचना दें। दोस्तों, मान लीजिए किसी मोहल्ले के 20 युवा मिलकर हर रविवार केवल एक घंटा सफाई करें। वे कूलर खाली कराएं, गमलों का पानी बदलवाएं और लोगों को जागरूक करें। कुछ ही दिनों में पूरे मोहल्ले में मच्छरों की संख्या कम होने लगेगी और डेंगू का खतरा भी घट जाएगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि एक छोटा प्रयास भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, बीमारी आने के बाद इलाज करवाना समझदारी नहीं है। असली समझदारी है बीमारी को आने ही ना देना। याद रखिए, स्वच्छ घर, सुरक्षित परिवार, जमा पानी हटाएं बार बार, डेंगू को मिलकर दूर भगाएं, स्वच्छ भारत का सपना सजाएं। आइए आज हम सभी मिलकर यह संकल्प लें। हम अपने घर, अपने विद्यालय, अपने कार्यस्थल और अपने आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने देंगे। हम स्वयं जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। यही छोटा सा संकल्प हमें, हमारे परिवार और पूरे समाज को डेंगू से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसी के साथ अब मैं मुकुल आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।

युवा श्रोता अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मनु भाई मोटर चली पाम पाम पाम,
2: मनु भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
3: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
4: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने
3: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
4: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोके और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
3: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
4: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
3: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
4: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
3: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
4: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
3: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
4: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुँचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

धरती बाकी यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं। प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।

गीत मोहित चौहान और प्रिया पांचाल की आवाजों में है। गीत लिखा मयूर पुरी ने, संगीत सागर जिगर का। फिल्म का नाम ABCD एनीबडी कैन डांस।

बॉडीगार्ड लीजिए। इस फिल्म में सुनिए राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल को। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा है। संगीत तैयार किया है हिमेश रेशमिया ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में है। कबीर सिंह फिल्म से हमने इस गीत को लिया है। इरशाद कामिल के बोलों को संगीतबद्ध किया सचेत परंपरा ने।

0: अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाए कबीर सिंह फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुँचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है। सारा जहां श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
4: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएँ।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय ज्ञान कला पारंपरिक रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे, जो नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह तक एक राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस अभियान का नेतृत्व माय भारत प्लेटफॉर्म करेगा, जो एक ऑनलाइन युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता मंच है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगली गणना में ये 1000 से अधिक होने का अनुमान है। वे आज भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 आज ध्वनिमत से पास हो गया। वहीं वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक पारित कर दिया गया है। इस कानून के तहत वंदे मातरम का अपमान करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण वर्ष में किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से जुड़े विषयों पर संवाद के लिए 4 मंत्रियों की समिति गठित करने की जानकारी दी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
3: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
3: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
3: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
3: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
2: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
3: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
2: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
3: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
2: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
3: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
2: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है, यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
3: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
3: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
2: और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
3: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
2: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
3: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCIT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
3: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
2: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया गया है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: ये मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रिसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ?
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन,
1: हाँ?
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ, जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा, ये हेलो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ।
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे।
2: ओह।
1: फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए।
2: हाँ।
1: अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में

0: रख देता हूँ।
1: ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
0: देखो सामने दीवार देखो। काम कर रहे
1: ऐसे ही। हाँ। लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
0: हाँ। हमारी मेहनत रंग लाएगी।
1: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव।

0: लगती है।
1: संभव है श्रीमान, ये संभव। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
0: हाँ,
1: आइए।
0: यहाँ?
1: हाँ, आइए आइए, इस तरफ।
0: इधर?
1: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा
0: इधर।
1: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
0: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों को विश्वास नहीं होता। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स एन अनबिलीवेबल मिरेकल।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

सोशल मीडिया पर चैटिंग करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत गैंगस्टर फिल्म से है जिसे गाया जेम्स ने। मयूर की शब्द रचना है, संगीत तैयार किया प्रीतम ने।

ये गीत हमने लिया फना फिल्म से। आवाज़ें सोनू निगम और सुनिधि चौहान की हैं। संगीत तैयार किया जतिन ललित ने, शब्द रचना प्रसून जोशी की।

ऐसी बरसातों में ऐसा लगता।

अजनबी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाएं मंजिल फिल्म का गीत, जिसे गाया किशोर कुमार ने। योगेश की शब्द रचना को धुनों में पिरोया आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं सुहागन फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की। हसरत जयपुरी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया मदन मोहन ने।

0: सुहागन फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800

है कि पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार भोपाल नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पदयात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, पुतला दहन, ज्ञापन, कार्यालय, निवास अथवा शासकीय भवनों के घेराव सहित अन्य सार्वजनिक आयोजन के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। आदेश के अनुसार बिना अनुमति ऐसे आयोजनों का संचालन भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली गतिविधियां, हथियार अथवा विस्फोटक सामग्री का प्रदर्शन या उपयोग तथा सार्वजनिक अथवा शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 15 जुलाई 2026 से आगामी 2 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद कवच के 4th संस्करण को 20 जुलाई तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्ततम मार्गों पर 2500 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। पुरुष मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं एथलेटिक्स स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने पुरुष शॉर्टपुट फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले डालते हैं एक नजर इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर ग्राम सभा होगी, जिसमें आज आप सुनेंगे जैव उर्वरक से उन्नत कृषि उत्पादन विषय पर डॉक्टर गोविंद गुप्ता से ली गई भेंटवार्ता। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम रात 8 बजे संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात 8:30। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम रात 9:30 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कर्तव्य, राजकुमार जायसवाल का लिखा ये नाटक हम आपको सुनाएंगे आज रात 10:00। प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात्रि 10:30 सुनिएगा समरजीत सेन का सितार वादन राग श्याम कल्याण। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम बता दें, सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां गीत संगीत और समय के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, इसे आप सुन सकते हैं सुबह 8:30। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:02 पर। 9:15 पर सुगम संगीत में दीपिका कौर की गई कुछ गजलें आपको सुनवाई जाएंगी। दरिंदा, आशिम अस सादिक का लिखा ये नाटक आप सुन सकते हैं सुबह 9:30। प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10:00। 10:15 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर। कल शाम 7:21 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं दुग्ध प्रसंस्करण में लाभ, इस विषय पर लक्ष्मी से ली गई भेंटवार्ता।

0: ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कल के कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, इसका प्रसारण समय सुबह 11 बजे है। आपकी फरमाइश श्रोता, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं दिन में 12 बजे। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 बजे सुनिएगा कामिनी काय कांतारे का भाग 15। महिला कार्यक्रम दोपहर 1 बजे होगा। कल का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति में 1:30 पर सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 2 बजे और 2:30 पर आपकी फरमाइश में। कल शाम 5:33 पर कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे, साथ ही साथ 6:30 पर भी फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा रोज ही की तरह शाम 6 बजे। रात 8 बजे संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। सुर्खियों में कार्यक्रम होगा रात 8:15 बजे। फिल्मी नगमे 8:30 पर और 9:30 बजे। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे कल रात 10 बजे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। मीडियम वेव 188.32 मीटर पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:10 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से संवाद के लिए चार मंत्रियों की समिति गठित करने की घोषणा की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। 291 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। और प्रदेश के कई जिलों में कल भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण वर्ष में किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से जुड़े विषयों पर संवाद के लिए चार मंत्रियों की समिति गठित करने की जानकारी दी।
1: किसानों से जुड़े एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन

0: शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
1: प्रश्न है कि सिर्फ पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हां कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अगली गणना में ये 1000 से अधिक होने का अनुमान है। वे आज भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन भागीदारी से प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण के लिए संकल्पित है। इस अवसर पर रातापानी और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के लोगों का विमोचन किया गया और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों और समितियों को सम्मान किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय अशासकीय और अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रवेश के लिए 31 जुलाई को अंतिम तिथि निर्धारित की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश तिथि बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। अब तक प्रदेश में विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और एनसीटी पाठ्यक्रमों में करीब 5 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। विभाग ने विद्यार्थियों से अंतिम तिथि से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल 291 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दल आज अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना हो गए। उपचुनाव में 21 उम्मीदवार मैदान में हैं और 2,20,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान 1280 मतदान कर्मी और 215 माइक्रो ऑब्जर्वर निष्पक्ष मतदान कराने में तैनात रहेंगे। दतिया के बॉर्डर पर 12 अंतर्राज्यीय नाके स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से बिना किसी भय या दबाव के मतदान करने की अपील की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद कवच संस्करण 4.0 को इस महीने की 20 तारीख तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्ततम मार्गों को सम्मिलित करते हुए 2,569 किलोमीटर मार्गों पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सर्बिया के नोवी साद में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर पैराशूटर राहुल शर्मा को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री राहुल ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर सभी देशवासियों का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपनी पुस्तक भारतीय गुरु परम्परा के शिल्पी महर्षि सांदीपनी समर्पित की। उन्होंने कहा कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि संस्कार और जीवन की सही दिशा भी देते हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। राजगढ़ में सम्मान समारोह, छिंदवाड़ा में समरसता संकल्प अभियान, अशोकनगर में महर्षि सांदीपनी गुरु पर्व और शिवपुरी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित हुआ। आगरमालवा में कलेक्टर ने श्री बैजनाथ महादेव मंदिर में दर्शन किए, जबकि जबलपुर में नर्मदा तटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सतना, मैहर सहित विभिन्न जिलों से गुरु पूर्णिमा के समाचार मिले हैं। प्रदेश में कल भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने धार, देवास, बुरहानपुर, हरदा और नर्मदापुरम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीहोर, बैतूल, पांडुर्ना, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर सहित कई अन्य जिलों में भी तेज बारिश, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल कलेक्टर ने आज भैंसदेही विकासखंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा

हिस्सा लिया। झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखंड के हर घर जल घोषित ग्राम गोविंदपुरा और नवापाड़ा में आज जल अर्पण दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। दमोह में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत आज शहर राधिका पैलेस में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीहोर जिले में मॉनसून सीजन के दौरान बारिश का आंकड़ा पिछले एक साल की तुलना में पीछे चल रहा है। इस साल 1 जून से 29 जुलाई तक जिले में औसतन 18.13 इंच बारिश दर्ज की गई है। गुना में लगभग 3 सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार शहर में मॉनसून ने जोरदार दस्तक दी। करीब आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत दी। खरगोन कलेक्टर ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक आयोजित की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को वर्षा बहन की राम राम। भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। भाइयों बहनों, अपन तो देख ही रहे हैं कि बारिश को मौसम चल रहा है, तो जिस समय पौधा रोपित करवे को बहुत ही अच्छा समय होता है। और कई ऐसी बातें होते हैं जो किसान भाइयों को ध्यान रखना होते हैं कि बारिश के मौसम में फसलों को नुकसान होवे से बचावे के लिए कुछ बातों को ध्यान रखो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे अच्छी पैदावार के लिए आपको चाहिए कि आप खेतों में पानी जमा ना होवे दें, जल की निकासी के लिए उचित नालियाँ बनाएं, जल भराव से जड़ें कैसे सड़ सकत हैं, तो मानसून की जो पहली अच्छी बारिश हो उसके बाद ही बुवाई करवो चाहिए। और जो मिट्टी है जे भी बात को भी ध्यान रखो चाहिए कि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे, और मौसम पूर्वानुमान देखकर ही बीज बोवो चाहिए। केवल प्रमाणित और उन्नत किस्म के बीजों को ही हमें उपयोग करवो चाहिए। और जे बात को भी ध्यान रखवो चाहिए कि जैसे बरसात में फंगस कीटों का हमला काय तेज हो जाता है, तो फसलों की नियमित रूप से देखभाल भी करत रहवो चाहिए। और भाइयों बहनों, चर्चा आपसे आगे जारी रहेगी। अब हम आपको सुनवाते हैं जे संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: भाइयों बहनों, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज है गुरु पूर्णिमा। 29 जुलाई बुधवार यानी आज के ही दिन पूरे देश में जी पर्व की तरह मनाया जा रहा है। आज का दिन ये गुरु पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है, जो गुरु और शिष्य के महान रिश्ते को समर्पित है। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो हमारे संत हुए वेदव्यास, उनके जन्म दिवस के रूप में भी आज को दिन मनाया जाता है और इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। भाइयों बहनों, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है उसे मिटाने वाला। गुरु हमारे जीवन में अज्ञान के अंधकार को मिटाते हैं। आज के दिन सभी लोग अपने आध्यात्मिक और असल जीवन के जो गुरु होते हैं उनकी पूजा कर उनको आशीर्वाद लेते हैं। और अपई तो भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा को बहुत अधिक महत्व है और ये प्रसिद्ध गुरु मंत्र गुरु की महानता को और भी अच्छे से दर्शाते हैं, जिसके अनुसार गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही हैं जो हमारे जीवन में ज्ञान का नया सृजन करते हैं। गुरु ही विष्णु हैं जो हमारे जीवन में ज्ञान और जीवन की रक्षा और पालन करते हैं। गुरु ही हैं जो हमारे अहंकार और बुरे गुणों को नाश करते हैं। गुरु ही सर्वोच्च ईश्वर का रूप माना जाते हैं। ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। और भाइयों बहनों, हमारे जो महान संत हुए हैं कबीर दास जी, उन्होंने तो गुरु के महत्व को बताते हुए बहुत ही अच्छी बात कही है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसको अर्थ तो सभी जानते हैं। यदि हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ भी खड़े हों तो भी हमें सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले गुरु के चरण ही स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि एक गुरु ही हैं जिन्होंने हमें भगवान तक पहुंचाने का सही मार्ग दिखाया है। गुरु का ज्ञान ही हमें ईश्वर के दर्शन कराता है, इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। इसलिए हमें अपने गुरुओं का बहुत ही आदर सत्कार करना चाहिए और अपने बच्चों को भी यही सीख देना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हम आपको सुनवावे जा रहे हैं आज ये वार्ता, जो गुरु पूर्णिमा के महत्व को और भी अच्छे से दर्शाती है। तो ये वार्ता जानकारी देने जा रहे हैं डॉक्टर माया राम रिपोरिया।
4: गुरु शब्द दो वर्णों से मिलकर बना है। गुरु का अर्थ अंधकार तथा रू का अर्थ प्रकाश होता है, अर्थात जो पुरुष या स्त्री अपने अनुयायियों को

वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वह अपने अनुयायियों का गुरु कहलाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु शब्द का महत्व बहुत ही गरिमापूर्ण रहा है। स्वतंत्र भारत से पहले जिन आश्रमों में गुरु अपने अनुयायियों को शिक्षा प्रदान करता था उसे गुरुकुल कहा जाता था। इनमें गुरु अपने अनुयायियों को स्वतंत्र चित्त से निस्वार्थ शिक्षा प्रदान करते थे। कालांतर में शब्द गुरु के स्थान पर शिक्षक कहा जाने लगा, किंतु भावार्थ व उद्देश्य की दृष्टि से शिक्षक का अर्थ गुरु से अलग नहीं है। स्वतंत्र भारत में संवैधानिक नियमों के अंतर्गत गुरुकुल के स्थान पर शिक्षा के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार द्वारा गांव-गांव में विद्यालय खुलवाए, ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित कर प्रजातंत्र को मजबूत बनाया जा सके, क्योंकि मजबूत प्रजातंत्र से एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है, जिसके लिए शिक्षा ही देश के योग्य व श्रेष्ठ नागरिकों को तैयार कर सकती है। शिक्षा के संप्रेषण का माध्यम शिक्षक या गुरु होता है, जो किसी भी देश का भावी राष्ट्र निर्माता होता है। भावी राष्ट्र नवनिर्माण उसके कुशल दिशा निर्देशों पर निर्भर है। गुरु छात्रों में राष्ट्र नवनिर्माण के नैतिक व वैज्ञानिक ज्ञान से उनमें अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर श्रेष्ठ नागरिक तैयार करता है, जिनके कंधों पर भावी राष्ट्र नवनिर्माण के उत्तरदायित्व का बोझ होता है। जिस देश में गुरु शिष्य परंपरा स्वस्थ नहीं है, उस देश का उन्नतशील एवं समृद्धशाली होना संभव नहीं है। आज गुरु के महत्व का दिन है। गुरु मोमबत्ती की भांति स्वयं को जलाकर अपने शिष्यों के बीच प्रकाशमान रहता है और अपने आसपास के वातावरण को प्रकाशित करता है। इसके ज्ञान रूपी प्रकाश से शिष्य लाभान्वित होकर योग्य व श्रेष्ठ नागरिक बनकर तैयार होता है। वही श्रेष्ठ नागरिक एक सभ्य समाज व राष्ट्र की मजबूत इकाई या नींव की ईंट बन जाता है। जहां एक ओर आज वैज्ञानिक तकनीक की शिक्षा विद्यालयों में दी जाती है, वहीं दूसरी ओर गुरु का दायित्व है कि वह सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करे। बिना नैतिक गुणों के ज्ञान नग्न तलवार की तरह होता है। गुरु के द्वारा नैतिक गुणों से संस्कारित शिष्य लोकप्रियता प्राप्त करता है, जिससे अपने शिष्य के सत्कर्मों व लोकप्रियता को देखकर गुरु गौरवान्वित होता है। प्राचीन ग्रंथों में अनेक स्थानों पर गुरु की महिमा का वर्णन देखने को मिलता है, जिनमें गुरु या आचार्य न केवल जनसामान्य युवाओं को गुरुकुलों में शिक्षा प्रदान करते थे, बल्कि वे राज सत्ताओं का मार्गदर्शन एवं उनको नियंत्रित भी करते थे। महाकाव्य महाभारत में भी गुरु शिष्य परंपरा के प्रचलन की एक कथा गुरु की महत्ता को प्रदर्शित करती है। प्रजातांत्रिक भारत में समता, स्वतंत्रता, बंता व न्याय के मानवीय मूल्यों को संवैधानिक रूप से क्रियान्वित करने की दिशा में सभी वर्गों, धर्मों, जातियों को शिक्षा के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। सभी को समान शिक्षा प्रदान करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। भेदभाव का बर्ताव पूर्णता उपबंधित है। गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत के बारे में भले ही काल निर्धारण निश्चितता का अभाव हो, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व बुद्ध काल से माना जाता है, क्योंकि बुद्ध ही एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने किसी अन्य को गुरु नहीं बनाया और स्वयं प्रज्ञा प्राप्त कर विश्व गुरु कहलाए। यह समझना आवश्यक है कि बुद्ध स्वयं गुरु कैसे बने। आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व इस भारत वर्ष, जिसे विभाजित पड़ोसी देशों को मिलाकर संयुक्त रूप से जम्बूद्वीप कहा जाता था, उसमें मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा था। अज्ञानता, अनैतिकता आदि से मानव समाज अत्यंत दुखी था। तभी 563 ईसा पूर्व इस भारत भूमि पर सिद्धार्थ नामक बालक ने राजा शुद्धोधन के घर में जन्म लिया। यह बालक बालकाल से ही विलक्षण गुणों से पूर्ण था, जो मानव समाज में व्याप्त कुरीतियों, अमानवीय व्यवहार आदि से आहत हो रहा था। एक बार शाक व कोली वंशों में नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों ही पक्षों में युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। सिद्धार्थ पूर्ण बालक होने के नाते शाक परिषद के सदस्य थे। उन्होंने युद्ध विभीषिका को रोकने के लिए संघ के समक्ष सेनापति से युद्ध में शामिल होने की असहमति प्रकट की। परिषद के फैसले के विरुद्ध असहमति के कारण
सेनापति द्वारा सिद्धार्थ

0: को देश छोड़ने का दंड दिया गया। इस दंड को स्वीकार कर सिद्धार्थ परिव्राजक होकर ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न ऋषियों से मिले, किंतु मानव दुखी क्यों है इस समस्या का हल प्राप्त न हो सका। सिद्धार्थ आगे विचरण करते हुए गया के पास पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान साधना करने लगे। यही वह स्थान है जिस पर सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया, अर्थात सिद्धार्थ ने सांसारिक समस्याओं का पूर्ण हल खोज लिया। तभी से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध सारनाथ की ओर चल पड़े और सर्वप्रथम सारनाथ में 5 ऋषियों के समक्ष अपने धम्म का प्रवर्तन किया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को समझाते हुए कहा, हे ऋषियों, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का उपाय है। आगे उन्होंने पंचशील व अष्टांगिक मार्ग समझाया। तभी 5 ऋषि बुद्ध की शरण में दीक्षित हुए। इस प्रकार संसार में बुद्ध एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने अपने दीपक स्वयं बनकर ज्ञान प्राप्त किया और सारनाथ में 5 ऋषियों को सर्वप्रथम आषाढ़ की पूर्णिमा को ज्ञान देकर गुरु का पद प्राप्त किया, इसीलिए यह पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाई जाने लगी। बुद्ध द्वारा जिन नैतिक नियमों की स्थापना की गई थी वे आज भारतीय संस्कृति के मानवीय मूल बनकर जन जन के श्वासों के स्पंदन बन चुके हैं। बाल्यकाल से ही उन नैतिक मूल्यों से संस्कारित व्यक्ति दुख निरोधक हो जाता है। और बड़े गौरव की बात है कि बुद्ध के कारण ही प्राचीन काल में इस देश को विश्व गुरु का दर्जा हासिल हुआ। जब जब देश ने बुद्ध की वैज्ञानिक शिक्षा व जीवन पद्धति का अनुसरण कर विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति के मूल्यों का बोध कराया, तब तब भारत ने उत्कर्ष की ऊंचाइयों को छुआ। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसने ऊर्जा संरक्षण का अकाट सिद्धांत प्रतिपादित किया, वह भी बुद्ध की शिक्षा का अनुयायी बन गया और कहा कि बुद्ध जीते हम हारे। आज के संदर्भ में गुरु शिष्य परंपरा की आवश्यकता के मद्देनज़र शैक्षणिक संस्थाओं में गुरु की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना अनिवार्य है, ताकि वर्तमान में गुरु गरिमा को हिरासत से बचाया जा सके।
1: भाई बहनों, अभी अपन ने सुनी ये वार्ता गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर माया राम रिपोरिया। और अब हम आपको सुनवाते हैं जी लोक भजन सदगुरु ज्ञान सिंह शाक्य और साथियों की आवाज़ में।

भाई बहनों, अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में। आज है 29 जुलाई। हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। भाई बहनों, जी दिवस मनावे को उद्देश्य यही है कि बाघ के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके। जे एक वार्षिक उत्सव की तरह मनाया जाता है, जो हर साल आज के ही दिन यानी 29 जुलाई के दिन आयोजित करो जाते हैं। अपन तो देख ही रहे हैं कि बाघ के जो घटते आवास हैं उन्हें बचाओ जा सके, उनके अवैध शिकार को रोको जा सके, जी वजह से ये दिवस मनाओ जा रहा है। और इसकी शुरुआत करी गई थी साल 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित एक बाघ कॉन्फ्रेंस में। दुनिया भर में अपन देख रहे हैं कि बाघों की संख्या जो है घटती जा रही है, तो इस घटती हुई संख्या में रुकावट लावे के लिए और उनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त होवे से बचावे के लाने जे दिन मनावे को उद्देश्य तय करो गौ है। और अपन ये भी देखा दें कि बाघों की अंगों के व्यापार और उनके अवैध शिकार के खिलाफ बहुत ही कड़े कदम उठावे की भी ज़रूरत है। यही वजह है कि आज के दिवस मनावे के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करो जात है। और साथ ही साथ जंगलों की कटवे से जो बाघों का प्राकृतिक घर है वो उजड़ रहा है, तो उनका घर ना उजड़े, जंगल बने रहें, इसलिए उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने पर भी जोर दौ जात है, ताकि बाघ सुरक्षित रहें और उनका घर यानी जंगल भी वन भी सुरक्षित रह सकें। तो भैया, हम तो यही कहना चाहते हैं कि बाघों को बचाओ और प्रकृति संतुलन बचाओ। तो ये बात तो भाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में। और अब हम आपको सुनवावे जा रहे हैं जी गीत, जहान सिंह कुशवाहा की आवाज़ में।

भाइयों बहनों, अपन तो देख ही रहे हैं कि जब बारिश को मौसम चल रहा है तो जिस समय में जावात को भी ध्यान रखें कि जैसे तेज़ बारिश से पहले खेतों में यूरिया या अन्य खाद नहीं डालना चाहिए, कैसे पानी के संग बह जावे को डर बनो रहे थे। तो मौसम साफ होवे पर ही सही मात्रा में उर्वरक देवो चाहिए। और जैसे अपन देखते हैं कि जब मौसम में घास और खरपतवार बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो जिका होता है फसल के पोषक तत्व सूख लेते हैं, तो समय समय पर निराई गुड़ाई करत रहो चाहिए। और भैया हमारे किसान भैया को तो पशुअन की भी देखभाल करना पड़ता है, तो भैया पशुअन को भी ध्यान रखें। पशुअन के रहवे के स्थान को सूखा और साफ रखवो चाहिए। और मौसम में जैसे जे मौसम में खुरपका मुँहपका जैसी बीमारियाँ फैलत हैं तो समय पर पशुओं को टीकाकरण करवावो चाहिए और उन्हें दूषित पानी या सीलन भरो चारा नहीं देवो चाहिए ताकि इनको भी बीमारियों से बचाव हो सके। कैसे पशु स्वस्थ रहेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। और भाइयों बहनों, जी बात तो भाई पशुओं की, और अपन तो देख ही रहे हैं कि बरसात के दिन में का होते हैं कि अपनी भी कई बार अपन देखते हैं कि उल्टी दस्त खांसी जुखाम बुखार ऐसी आम समस्याएं देखने को अपन को मिलत हैं। तो भैया हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि जे दिन में संक्रमण होवे को खतरा बनो रहते हैं, जैसे पानी से फैलने वाली बीमारियां मच्छरों का खतरा भी बढ़ जाता है, तो भैया इन सब से बचवे के लाने का करना चाहिए, हमको हमेशा उबला या शुद्ध पानी ही उपयोग में लावो चाहिए। बाहर का खुला खाना खावे से बचवो चाहिए और घर के आसपास जीवात को भी ध्यान रखें कि घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। और जाके संग संग अपने घर की छतों पर भी पड़े कबाड़ के सामान पर या वैसे भी पानी जमा ना होने दें, इससे काय मक्खी मच्छर पनपत हैं और बीमारियां पनपत हैं। और जीवात को भी ध्यान रखें भैया कि हमेशा ताज़ा गर्म और घर का बना खाना ही खाएं, और पीने के लिए हमेशा उबला या आरू से छना हुआ पानी का इस्तेमाल करवो चाहिए। और जी बात को भी ध्यान रखें भैया कि जैसे सड़क के किनारे मिलने वाले जो खुले खाद्य पदार्थ हैं, कटे हुए फल हैं, चाट पकौड़ी, ये सब से भी थोड़ा परहेज करवो चाहिए। और जाके संग संग जैसे सब्जियां फल इनको इस्तेमाल करवे से पहले साफ पानी से अच्छे से 2-3 बार ज़रूर से धोवो चाहिए, तभी धोवे के बाद ही इनको सेवन करवो चाहिए। और भैया जी बात को भी ध्यान रखें कि का अपन देखते हैं कि जिस समय में अभी अपन देख रहे थे कि बहुत समय से मच्छर नहीं थे, लेकिन जैसे ही जी बारिश को मौसम शुरू हुआ छोटे छोटे मच्छर होने लगे हैं, तो भैया जे दिन में मक्खी मच्छर तो बहुत पनपते हैं, तो संक्रमण से बचाव के लाने अपन को चाहिए कि अपन घर के आसपास या गमलों में पानी इकट्ठा ना होवे दें ताकि मच्छर पैदा ना हो सके। और अपन को ये भी चाहिए कि अपन साफ़ सफाई रखें, और कोई भी चीज़ रसोई घर में या बाहर भी अगर कोई खाने पीने की चीज़ है तो उसको बिल्कुल भी हमको अनढका नहीं रखवो चाहिए। खाने की चीज़ों को हमेशा ढककर रखें और पानी को भी हमेशा ढककर ही रखवो चाहिए। और जाके संग संग जैसे हम सोवे जा रहे हैं तो सोने के लिए हमें मच्छरदानी का उपयोग करवो चाहिए, या मच्छर भगावे के लिए आप ऐसे नीम की पत्ती की धुनी भी कर सकते हैं, कपूर लौंग को तेल भी लगा सकते हैं ताकि मच्छरों से बचाव हो सके। और व्यक्तिगत स्वच्छता को भी हमें चाहिए कि हम पूरा ध्यान रखें, और जब भी बाहर से आए तो हाथ पैर हमें साबुन से ज़रूर धोना चाहिए, उसके बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। अगर हम इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं तो हम ज़रूर से स्वस्थ रह सकते हैं। तो भैया इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर से अपनाएं, खुद भी ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें। और अगर यदि कभी खांसी जुखाम बुखार हो भी जाए तो भैया जो व्यक्ति बीमार है उसको बिस्तर अलग से करवा चाहिए, कैसे जिस संक्रमण को खतरा बनो रहे थे और दूसरे व्यक्ति को भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो उनके ऐसे रोगी व्यक्ति के बिस्तर अलग रखें, चद्दर अलग रखें और उसका पूरा उपचार करें, गर्म पानी पीने को दें उसको,
गरम गरम हल्दी वाला दूध अपन पिए थे तो सर्दी खांसी से इसे बहुत कुछ राहत मिल जाते। तो भैया छोटी छोटी बातन को ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। काहे से स्वस्थ हैं तो सबू कछु है। और भाइयों बहनों, आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी और अब हम आपको सुनवाते हैं चिलू गीत भगवान सिंह कुशवाहा की आवाज़ में।

0: भाई बहनों, अभी अपन देख रहे हैं कि घड़ी की सुई इशारों कर रही है, पर कार्यक्रम को समय समाप्त हो रहा है। तो आपकी वर्षा बहन आपसे विदा लेते हैं। राम राम, जय जवान, जय किसान।
1: शरण दिल्ली से।
2: में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक है पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्म सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होंगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा, हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष की टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट, एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेद की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधव राव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्तापक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने

लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल

0: सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संसद में प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमरीश सक्सेना।
3: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर जो संशोधन विधेयक है जिसको आज संसद ने पारित किया है और अब ये प्रभाव में आ जाएगा, और निश्चित रूप से परीक्षाओं में जो भी गलत तरीके अपनाए जाते हैं उन पर रोकथाम की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। सुरेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: जी नमस्कार।
3: तो जैसा कि सुरेश जी हमें पता है कि आज संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया और अब ये कानून बन गया है। 2024 में इस कानून को बनाया गया था, अब फिर से संशोधन करके और इसमें काफी परिवर्तन किए गए हैं, तो इसके प्रावधानों की हम चर्चा करें। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुख्य रूप से इस कानून को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है और सरकार कौन सा लक्ष्य इसके माध्यम से अचीव करना चाहती है।
4: अमरीश जी धन्यवाद। देखिए अभी अपने विद्यार्थियों का आपने प्रदर्शन देखा दिल्ली में
3: जी,
4: और जिसके चलते सरकार ने ये आश्वासन दिया विद्यार्थियों को कि सरकार की तरफ से ये पूरी प्रतिबद्धता है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं इसको इंस्टाग्राम के माध्यम से भी और अपने वक्तव्यों के माध्यम से पत्रकारों के समक्ष उन्होंने जो दिया संसद सत्र में, उन सबके माध्यम से उन्होंने यह बिल्कुल अपनी तरफ से प्रतिबद्धता जताई कि सरकार पूरी तरह इस पूरे सिस्टम में, एग्जामिनेशन के सिस्टम में जो भी कमी है उसको दुरुस्त करेगी और सुनिश्चित करेगी कि आगे से ऐसे कोई पेपर लीक की कोई घटनाएं ना हो जो अपने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और याद रखें कि पहले भी कुछ घटनाएं और इस तरह की घटनाएं देश में पिछले कई दशकों से चल रही है। 2024 में इन सबको संज्ञान में रहते हुए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल जो है वो लाया गया था, लेकिन उसके मौजूदगी के बावजूद भी इस बार हमने नीट और कुछ अन्य परीक्षाओं में देखा कि किस तरीके से अपराधी तत्व जो है, जो कमियां हैं सिस्टम में, जो कमियां हैं टेक्नोलॉजी में, उसका लाभ लेते हुए, और इसमें जरूर एक नैतिकता का भी प्रश्न है। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार जो है, सरकार ने जब कड़े प्रावधान लगाए हैं तो लोगों के अंदर एक डर बैठे इस तरह कोई भी जो है कदम उठाने से पहले, तो ये सरकार ने इस वजह से इसमें पेनल्टी भी इसमें है और सजा को भी जो है और कड़ा बना दिया गया है ताकि जो भी अपराधी तत्व हैं वो सचेत रहें, वो इस तरह के जो कुकर्म हैं जिसमें दोबारा वो हिस्सा ना लें।
3: जी, इसमें सुरेश जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि पहले से भी कानून था, अब उसमें अमेंडमेंट लाया गया, लेकिन पिछले जैसे दो दशक के अगर हम केसेस देखें तो बहुत सारे इस तरह के मामले आए हैं जहां पर पुलिस ने लोगों को पकड़ लिया लेकिन इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ और फिर वो जाके कोर्ट से छूट गए। तो इस दिशा में अगर हम इस कानून को देखें जो संसद ने आज पारित किया है, उसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की बात की है, बहुत त्वरित जांच की और इन्वेस्टिगेशन की बात की है, इस विषय में आप हमारे श्रोताओं को और क्या बताना चाहेंगे?
4: देखिए इसमें कई प्रावधान जो है उसको जैसे मैंने कहा कि कड़े कर दिए गए हैं, जैसे जो भी व्यक्ति इस तरह के

0: जो अनफेयर तरीके से इसमें भाग लेगा, उसका पहले सजा जो है 3 से 5 साल का था, अब उसको 5 से 10 साल कर दिया है। पहले जैसे 10 लाख का जो है प्रावधान था पेनल्टी का, फाइन का, और अब वो जो है 50 लाख तक कर दिया है। इसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका 1 करोड़ तक का था लाइबिलिटी, और आज जो है उसका 5 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरीके से जो भी जिम्मेदार लोग हैं, प्रबंधन के लोग हैं, उनको जो है 5 साल की सजा और हायर फाइन्स है। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तरीके से है तो जो पहले 5 साल का प्रावधान था उसका न्यूनतम 7 साल कर दिया गया है, और 10 करोड़ तक का जो है पेनल्टी इसमें लगा दिया गया है, जिसमें जब्ती भी हो सकती है आपके प्रॉपर्टी की। और
1: जी
0: इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशंस को अब पूरी तरीके से 2 महीने का ही समय दिया गया है कि सारा इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर होना चाहिए, और जैसे आपने कहा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो है होना चाहिए, डे टू डे हियरिंग्स होने चाहिए, और 3 महीने के अंदर चार्जशीट जो है वो लग जानी चाहिए। और इसका मुख्य उद्देश्य जो भी मैल प्रैक्टिस है, जो भी गैंग इस तरीके से माफिया इसमें इन्वॉल्व है, और इन सबको जो है किस तरीके से, लेकिन साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी ने इसमें टास्क फोर्स बनाया है, बहुत ही दिग्गज लोगों को, नंदन नीलकेणी जी के अध्यक्षता में, जिसमें वी कामकोटी, डॉक्टर सोमनाथ
1: जी
0: जैसे विद्वान और वैज्ञानिक और शिक्षाविद जिसमें हैं, पूरा इसका टेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट है इसको कैसे सुधारा जा सकता है, सिक्योर कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर जो है बनाया गया। एनटीए ने भी अपनी तरफ से जो है अपने सिस्टम को सुधारने के लिए विज्ञापन भी दे दिया है, और उसका ताकत जो है बढ़ाई जा रही है। तो सरकार ने एक
1: जी
0: योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से हमारे विद्यार्थियों का हितों को संरक्षित किया जा सकता है, जो पारदर्शी भी हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी हो, इस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया है।
1: जी तो आपको क्या लगता है इसमें प्रिवेंशन पे आपको लगता है कि कुछ और ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्योंकि अगर बहुत सारे केसेस हो जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन और सजा तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था इस तरह की बननी चाहिए जिसमें कि
0: जी
1: इस तरह की घटनाएं कम से कम हो या ना हो।
0: नहीं, देखिए ये सजा, एक तो सजा का डर के वजह से अब इतना आसानी से कोई इसके लिए रिस्क नहीं लेगा,
1: जी
0: लेकिन सिस्टम को भी सुधारने की बात की गई है, जिसके तहत जो है हम देखते हैं कि जो टास्क फोर्स जो बनाई गई है, ये टास्क फोर्स चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का मामला हो, सिक्योरिटी उसको कैसे सुनिश्चित करना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इस बार तो सरकार ने जो है, क्योंकि इस विषय को देखते हुए, संजीदगी को देखते हुए, बहुत संवेदनशील तरीके से भारतीय वायुसेना का भी उपयोग किया गया, लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए प्रायोगिक नहीं है कि वो नियमित तौर पर किया जाए। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी सिक्योर करना है, बहुत सारे विकल्प अब आ गए हैं, क्या इसको ऑनलाइन किया जा सकता है, पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को किस तरीके से इसमें जो है हम विद्यार्थियों के अंदर जो है वो विश्वास पैदा कर सकते हैं, कि उनका एक है कि नीट जैसे एग्जामिनेशन में जो है सीटें कम हैं, लाखों विद्यार्थी चंद सीटों के लिए जो है अपना प्रयास करते हैं, और उसमें भी अगर ये शक उसमें आ गया तो मैं समझता हूं कि सवाल विश्वसनीयता का है। विद्यार्थियों के अंदर वो पारदर्शिता और विश्वसनीयता इसको स्थापित करना बहुत जरूरी है, विद्यार्थी को लगे कि मैं अगर जो भी लिखूंगा उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, इसमें पक्षपात किसी के साथ नहीं किया जाएगा, और मुझे अपने काबिलियत के आधार पर जो है मुझे जो मिलना है मिलेगा, ये भरोसा उनके अंदर पैदा करना बहुत जरूरी है।
1: जी सुरेश जी, इस कानून में अकाउंटेबिलिटी की बात कही गई है, जिसका मतलब
0: जी
1: हुआ कि जो लोग भी उस पूरे सिस्टम में, पूरी प्रणाली में शामिल हैं, चाहे वो
0: जी
1: प्रश्न पत्र को बनाने वाले हो, चाहे एग्जामिनेशन को
0: जी
1: कंडक्ट करने वाले हो, हर एक को जिम्मेदारी लेनी होगी। जो जिम्मेदारी की बात है, इस पहल से, इस प्रावधान से किस तरह का लाभ आप देखते हैं?
0: नहीं, निश्चित ही जब ये स्पष्टता आएगी तो मैं समझता हूं कि जिनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी और पारदर्शी तरीके से हमको उनका चयन भी करना पड़ेगा, जो भी परीक्षा पत्र तैयार करेंगे या पेपर सेटर्स जिनको कहते हैं,
1: जी
0: उनके चयन में भी हमको जो है ऐसे व्यक्तियों को ही देना है जो अपने विषय के विद्वान तो है ही है, साथ में ही जो है उनका जो व्यक्तिगत उनका जो चरित्र है उस पर भी जो है किसी प्रकार का दाग ना हो, और जिनका जो है प्रतिबद्धता, जिनका समर्पण, जिनका जो है ईमानदारी, जिसके लिए जाने जाते हो, तो ऐसे लोगों को ही जो है हमको ये जिम्मेदारी भी देनी चाहिए। और हाँ, ये प्रावधान भी किए गए हैं कि कोई अगर किसी तरह का मिस एडवेंचर में गया तो उसको सजा भी मिलेगी, पेनल्टी भी लगेगी उन सबको, उसका तो इस कानून ने व्यवस्था किया ही है।
1: जी, तो बहुत तरह तरह की, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं वो भी परीक्षाएं लेते हैं, तो ये कानून क्या सारे तरह के जो परीक्षाएं हैं और जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्तर पर लेते हैं सभी पर समान रूप से लागू होगा?
0: नहीं बिल्कुल, ये पब्लिक एग्जामिनेशन की बात की गई है, सार्वजनिक जितने भी परीक्षाएं हैं उन सब में ये कानून लागू होगा, ये नहीं कि ये सिर्फ नीट पर लागू होगा। और अब राज्य सरकारों को ये तय करना है, ये तो यूनियन गवर्नमेंट के जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उनके द्वारा चाहे नीट हो, सीयूईटी हो, सब पर ये लागू होगा, लेकिन राज्य सरकारें जो कर रही है उसके लिए उनको भी अपना व्यवस्था, या इसको जो है लागू करें या उनको अपना व्यवस्था करनी होगी।
1: जी, तो इसको लागू करने के लिए, इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए किस तरह का एक तंत्र की जरूरत है? जैसा आपने खुद ही अभी कहा कि केंद्र सरकार के स्तर पर तो हो सकता है, लेकिन सारी राज्य सरकारों के स्तर पर उस तरह के तंत्र को किस तरह से विकसित करने की जरूरत है जिससे कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके?
0: मैंने जैसे कहा कि एक तो टेक्नोलॉजी को सिक्योर करना है
1: जी,
0: वो अगर सिक्योर हो गया तो हम एक टेम्पलेट बना सकते हैं जिसको केंद्र सरकार अपने परीक्षाओं के लिए नहीं, राज्य सरकार भी अपने परीक्षाओं के लिए, क्योंकि राज्यों से भी बहुत शिकायत आती है, चाहे सत्ता में कोई भी दल क्यों ना हो, शिकायत आती है, हमने राजस्थान में भी देखा, अन्य प्रदेशों में भी देखा, इस तरह की शिकायतें आती है। तो उसको अगर रोकना है तो सभी सरकारों को, मैं तो उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही जो हमारे नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वो राज्य के सभी शिक्षा मंत्रियों को जो है इस विषय को लेकर बैठक की जाएगी, क्योंकि देखिए इस बात को देखिए कि एजुकेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो हमको संवेदनशील रहते हुए उनको भी किस तरीके से, राज्य सरकार को भी ऑन बोर्ड, इसमें मुझे लगता है कि संकुचित संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर ये विद्यार्थियों के व्यापक हित में, मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र सरकार को एक साथ मिलकर जो है विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करना होगा।
1: जी जी सुरेश जी, जैसे अब ये पूरा जो कानून है वो पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेके है, लेकिन अगर हम देखें कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय हों, राज्य सरकार के हों या निजी विश्वविद्यालय हों, इनके अंदर भी परीक्षाएं होती हैं और वहां भी तरह तरह के जो अनफेयर मीन्स हैं या अनुचित साधन हैं उनका प्रयोग होता है, तो क्या इसके प्रावधानों को इसी रूप में विश्वविद्यालयों पर भी लागू माना जाएगा, या हम ये उम्मीद करें कि विश्वविद्यालय भी इसके अनुरूप अपने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे जिससे कि परीक्षाएं और ठीक से हों?
0: बिल्कुल, देखिए विश्वविद्यालय ऑटोनोमस यूनिट है, वो स्वायत्त है, वो अपनी परीक्षाएं कराते हैं अपने तरीके से, उनके ज्यादातर केंद्रीय विश्वविद्यालयों का तो सीयूईटी है जिसके अंतर्गत एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, लेकिन अपने जो भी पाक्षिक हो, वार्षिक हो, द्विवार्षिक, जो भी सेमेस्टर वाइज हो, अभी इसमें तो ये शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो ये लागू नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी अलग है, उनके एजेंसियां अलग है, नेशनल जो आपका एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो इसमें इन्वॉल्व है ये केंद्रीय परीक्षाओं में, वैसे नहीं है उनके साथ, वहां तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करता है, लेकिन वहां भी हम अक्सर शिकायतों के बारे में सुनते हैं जो दबी जुबान में होते हैं, तो कहीं अपने विश्वविद्यालय स्तर पर होता है, वहां भी हमको विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं हो रही है, क्योंकि वो लिमिटेड संख्या में होती है तो उसको मैनेज करना ज्यादा आसान होता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सभी इसमें से जितने भी प्रावधान जो लागू किए जा सकते हैं प्रायोगिक स्तर पर, वो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों को भी अपनाना चाहिए, कम से कम वो टेम्पलेट्स को अपनाना चाहिए, और जो जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है, जवाबदेही सुनिश्चित करना है, वो पेपर सेटर के लिए विश्वविद्यालयों में भी होना चाहिए कि अगर कोई पेपर लीक हो गया तो विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग अध्यक्ष की क्या भूमिका होगी, परीक्षा में जो प्रश्न पत्र तैयार करता है उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये सारे विषय पर भी जो है मुझे लगता है कि एसओपीस बनाने की आवश्यकता है सभी विश्वविद्यालयों को।
1: जी, इसके अलावा हम देखते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चूंकि जो बड़ी परीक्षाएं, चाहे नीट की परीक्षा हो, जेईई की परीक्षा हो, तो इन परीक्षाओं में जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं वो काफी व्यापक स्तर पर स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, जिसमें निजी स्वामित्व वाले स्कूल कॉलेज भी होते हैं, सारे सरकारी नहीं होते, और जो वेंडर्स हैं जिनके माध्यम से परीक्षाएं कराई जाती हैं वो भी हम निजी स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, तो आपके विचार से इस तंत्र को भी और बेहतर बनाने की जरूरत है जहां पर पूरा सरकार के नियंत्रण में ही हो और निजी क्षेत्र की या निजी वेंडर्स की भागीदारी कम से कम हो?
0: देखिए अब जैसे निजी विश्वविद्यालय भी हैं कई,
1: जी
0: तो उनके लिए कितना स्वीकार्य होगा ये इस बात को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय अपने आप में एक स्वायत्त बॉडी है
1: जी
0: और ये विश्वविद्यालयों को ये अधिकार दिया गया है। लेकिन हाँ, हम जवाबदेही जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रैगिंग है, अब रैगिंग में जो है एंटी रैगिंग का पोर्टल बना हुआ है, तो अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वो शासकीय हो, राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, वो एंटी रैगिंग पोर्टल पे, एंटी रैगिंग पे वो कंप्लेंट कर सकता है, तो तुरंत विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया जाए।

0: सकता है।
1: जी सुरेश जी, आपने बहुत ही सुझाव अच्छा दिया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संसद में प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ है। संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। मंजू सुल्तानपुरी की शब्द रचना, फिल्म है अभिनेत्री।

कार्यक्रम का अगला गीत संगम फिल्म से है, जिसे गाया लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीत लिखा शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में गए संगम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: लेते हैं अब छोटा सा अंतराल।
1: मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम,
2: मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
3: जब भी हम सड़क पर निकाले वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
4: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें
3: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
4: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
3: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
4: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
3: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
4: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
3: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
4: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
3: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
4: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
3: थोड़ी सी सावधानी
4: दूर करे सभी परेशानी।
5: बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यार।

मीडियम वेव 188.3 मीटर्स पर, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसको अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है, टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान।

0: करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
3: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
4: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
5: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार

0: वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से दो दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
1: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
2: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसूमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insults to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Death toll rises to 40. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assure medals for the country after sealing semi-final berths. The Lok Sabha today passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
4: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
3: Dr. Singh criticized leader of the opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used.
5: The government repeatedly clarified that no bullets were fired and that tear gas was used. And if no bullets were fired, then the question of giving an order to fire does not arise at all. Moreover, the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister.
3: Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Mr. Gandhi and demanded an apology from him in the House. Earlier, participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred but a deep expression of the youth and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till tomorrow. On the passage of the Anti-Paper League Bill in the Lok Sabha, Education Minister Prahlad Joshi said the legislation aims to dismantle the paper leak ecosystem and increase transparency, credibility and fairness in the examination process. Home Minister

0: Nagpur. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assured medals for the country after sealing semi-final berths. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। लोकसभा में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूर हो गया है, जिसमें सख्त जुर्माना आयद किए जाने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम किए जाने के इल्तिजामात हैं। राज्यसभा ने वंदे मातरम को कौमी तराने की तरह कानूनी तहफ्फुज फराहम करने से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया है। इसने कौमी गीत की तौहीन को जुर्म करार दिया है। ओडिशा में सैलाब के सबब 4 अमवात और तकरीबन 4 लाख लोगों के मुतासर होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी शदीद बारिश से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक दफ्तर ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया है। इसमें हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही मुल्क के लिए तमगे यकीनी कर लिए हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। इस कानून में 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और कसूरवार ठहराए गए अफराद की इमलाक को जब्त किए जाने समेत मुख्तलिफ अहम इल्तजामात हैं। बिल पर बहस का जवाब देते हुए अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बिल तलबा और नौजवानों की फलाह बहबूद के तहफ्फुज की खातिर हुकूमत के अज़्म का इयादा करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के इल्जामात का जवाब देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुकूमत ने बार बार ये वजाहत की है कि कोई गोली नहीं चली और सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इससे कबल बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि नीट मामले पर तलबा का एहतजाज तशद्दुद या नफरत नहीं था, बल्कि नौजवानों का एक शदीद इजहार था और सभी सियासी पार्टियों को इसका एहतराम करना चाहिए। राज्यसभा ने कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। ये बिल कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मजीद तरमीम करेगा। मुजवसा कानून कौमी तराने, जनगणमन की तरह वंदे मातरम को कानूनी तहफ्फुज फराहम करेगा। इसकी खिलाफवर्जी पर 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस बिल को मंजूर किए जाने के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, जबकि राज्यसभा में कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया गया। दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में पैदायश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। ऐवान ज़ेरी ने एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक कानून का जायजा लेने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत कार में भी पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास 2026 के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक तौसी कर दी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से मुलतवी करना पड़ी और इस वजह से दोनों ऐवानों में वक्फाए सवालात नहीं हो सका। कल लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक तरफ आसमान से बरसती जिंदगी तो दूसरी तरफ उसी बारिश का रौद्र रूप। कहीं किसान की आंखों में अच्छी फसल के सपने हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की चौखट लांघ चुका है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर कुछ घंटों की बारिश में थम जा रहे हैं और कहीं एक मोबाइल पर आया छोटा सा मौसम अलर्ट हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। आज मॉनसून केवल एक मौसम नहीं रहा, ये विज्ञान की परीक्षा भी है, प्रशासन की तैयारी भी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी। बदलते जलवायु परिदृश्य में मॉनसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का इंतजार बना रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाले खतरों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्या हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र और हमारी सामुदायिक तैयारी इस बदलती चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक, जो मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम चर्चा का विषय है में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर पटनायक, शुरुआत आपके साथ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुल मॉनसूनी बारिश भले सामान्य रहे, लेकिन जिसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। आईएमडी अपने मेशो स्केल और अर्ली वार्निंग मॉडल्स को इस सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरीके का अपडेट उसमें आया है, क्या नई तकनीक आई है और उसका कितना असर आप देख रहे हैं?
4: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत परिमाण में हमारा जितने सारे भी डाटा देखा गया है पिछला 100 साल 50 साल अगर हम देखेंगे तो ये जो जितना हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का इवेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो मॉइस्चर है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका काफी बढ़ जाता है एटमोस्फेयर में, और जब इंस्टेबिलिटी होता है तो वो हैवी डाउनपोर हो जाता है। इसलिए अगर पूरा रेनफॉल, अगर सीजन का मॉनसून सीजन जैसे जून टू सितंबर में अगर टोटल रेनफॉल अगर कंट्री एज ए होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में 50 साल में, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है, वो बहुत अच्छी बात है। हमारा एग्रीकल्चर देश है, लेकिन तो हमारे जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक दिन में अगर ऐसा होता है तो उसका अगर काउंट करेंगे तो वो सब दिन का बढ़ रहा है। तो आप जैसे सवाल किया कि हमारा प्रणाली में पिछले 5-10 साल में हमने क्या सुधार किया है जो कि उसका आलियन, तो हमने काफी हमारा इंप्रूवमेंट इसमें किया है। पहली तो बात यह है कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इवेंट को पहले मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने पर कि अगर कोई चीज क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो ये कि ऐसा इमीडिएटली अगर एक में या 12 घंटा में दे देगा तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे? हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे हैं, सरफेस ऑब्जर्वेशन है, हम बैलून छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, राडार है, सैटेलाइट है, उसमें कंटिन्यूअसली हमारे पास आज 50 राडार है, तो हमने इसमें से कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं कि कोई ये मैंने कन्वेक्टिव क्लाउड बन रहा है क्या। उसके बाद ये जब हो जाता है तो इमीडिएटली हमने इसका सूचित करते हैं कि इसी एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होगा। दूसरा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल मॉडल, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है खाली हम सैटेलाइट या राडार इमेज

0: देख के हम फोरकार नहीं देते, उसमें से नहीं होगा, वो थोड़े से थोड़े हमारा दो घंटा तीन घंटा के लिए हम बता पाएंगे, लेकिन हम जब पांच दिन पहले कुछ बता रहे हैं कि सात दिन पहले बता रहे हैं तो इस टाइप का इवेंट होने वाला है दो दिन के बाद, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मॉडल चाहिए। तो न्यूमेरिकल मॉडल में हमने काफी इम्प्रूव किया है, हमारा सब जितना सारे डाटा अभी सेटेलाइट से AWS से सब आ रहा है वो मॉडल में जा रहा है, मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया है। सुपर कंप्यूटर क्यों इसलिए चाहे कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जब वेदर प्रेडिक्शन करना पड़ता है, तो पावरफुल कंप्यूटर पहले नहीं था हमारा, अभी अभी हमने लाया है पावरफुल कंप्यूटर, जो कि अभी हमारे पास 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा मशीन है। इसका चलते हुए हमारा जो मॉडल का जो भी है अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो इसलिए अर्ली वार्निंग जो मॉडल फोरकास्ट दे देगा तो हम अर्ली वार्निंग इसमें अच्छा से कर पा रहे हैं, और अर्ली वार्निंग के कारण चलते हमारा वार्निंग जो मैकेनिज्म बाद में, और एक चीज है ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक जो बोलते हैं हम जब एक डिसीजन लेते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजर को हेल्पफुल होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजर खाली हम ये हो जाएगा कि ओडिशा में बारिश हो जाएगा ऐसा बोलने से उन्होंने पिन पॉइंट एक्शन नहीं ले पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में उसको हम स्टेट लेवल से फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर कौन सा सिटी लेवल में आते हैं, तो वो इतना फाइन ट्यून करने के लिए हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काफी मददगार होता है, और उसके लिए हमारा सेटेलाइट राडार के साथ साथ हमारा जितना भी मॉडल आउटपुट सब बन रहा है हमारा मॉडल, और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी ऐसा ओडिशा में चल रहा है, ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है, तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग कम्युनिकेशन हमारा फिर डाटा एसिमुलेशन न्यूमेरिकल मॉडल फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये सारे कम्बाइन अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इंडिया में डिपार्टमेंट, उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इम्प्रूव।
1: जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में, जिससे कि जो पूर्वानुमान है वो 100% लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके से आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है।
2: आनंद जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, जब भी भारी बारिश की हम चेतावनी आती है तो जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं, न सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए जिन जिम्मेदार हैं उनको भी तैयार रहने को कहा जाता है। अक्सर एक आम व्यक्ति को या परिवार को जब भारी वर्षा की चेतावनी मिलती है उस समय सबसे पहले तो यही होता है कि आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रास्ते में कहीं पर भी बाढ़ मिल सकती है, कहीं पुल टूट सकता है, कहीं रास्ते बह सकते हैं, और इस तरह की कई संभावनाएं आपदाओं की होती हैं जो भूस्खलन या बाढ़ या भूमि के खिसकने के रूप में दिखाई दे सकती हैं। तो इमरजेंसी में आपको एक तो टॉर्च, क्योंकि अक्सर जब भी भारी वर्षा होगी तो पावर सप्लाई ब्रेकआउट होगा, तो उस समय में आपको टॉर्च की एक आवश्यकता रहेगी, एक टॉर्च जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको जरूरी है घर से बाहर निकलना तो आपको एक प्रॉपर अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह की जरूरत रहेगी, और इसके साथ में आप जो है कहीं पर अगर जा रहे हैं और कहीं मिट्टी या मलबे से क्रॉस करते हैं तो अगर आप डंडा या रस्सी भी साथ में रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो जरूरी आपकी दवाइयां वगैरह हैं जो सर्वाइवल किट्स में जरूरी होती हैं, वाइटल मेडिसिन, वो भी आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है बाजार वगैरह भी खुले ना रहे, तो जो भी बारिश का समय होता है और पूरा चेतावनी आती है उसके अनुसार उस समय अवधि के लिए आपको पूर्ण तैयारियां अपने सर्वाइवल के लिए करके रखनी चाहिए। पहले से हम मॉक ड्रिल्स वगैरह करके रखते हैं, इवैक्यूएशन रूट का हमें पता है, कहीं पे फंस गए या रिक्तिकरण करना है तो कौन से सुरक्षित स्थल हैं या कौन से सुरक्षित भवन हैं जहां पर आप समय रहते हुए अपने बचाव के लिए जा सकते हैं, उनका भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आम व्यक्ति आजकल बारिश के सीजन में कहीं कहीं बाहर पर्वतीय स्थलों पर चले जाते हैं तो वहां पर बड़ा मतलब ध्यान से जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भीड़ भाड़ इलाके में या फिसलन वाले इलाके में नहीं जाएं, और कहीं पर भी जैसे ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है वहां जाने को आप अवॉइड करें।

0: बचें ताकि वहां पर भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की भगदड़ ना मच पाए। तो ये अक्सर होता है कि बारिश के टाइम पे मंदिर में या जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेज हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एकदम बारिश होती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से भी कई बार डेथ्स हो जाती है। तो हमको तैयारी के लिए इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, वाइटल मेडिसिन होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास रस्सी या लाठी हो तो और अच्छा है, और अगर सीटी भी रखते हैं तो अच्छा रहता है दूसरों को सचेत करने के लिए या बुलाने के लिए।
1: डॉक्टर पटनायक, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली और बाकी बहुत सारे महानगरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स में अर्बन फ्लडिंग की समस्या काफी देखने को मिली है। अब इन अर्बन फ्लडिंग्स को लेकर आईएमडी के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे एफएफजीएस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
2: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा समस्या है। हमारा जैसे अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। तो जब सिटी में पहले इतना बारिश होता था तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा था, उसका पानी ठीक से निकल गया, ड्रेनेज सिस्टम है ये है, तो थोड़ा सा अगर बेहतर है तो उसमें से ये फ्लडिंग नहीं हो रहा। लेकिन आजकल क्या है, जब इंटेंस रेनफॉल इवेंट जब होते हैं, अगर एक घंटा में कभी क्लाउड बर्स्ट टाइप इवेंट, जो आपको भी पता है कि एक घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट टाइप का भी बोलते हैं। तो ये है हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट जब होता है अर्बन में, तो इसमें ये अर्बन फ्लडिंग का समस्या आ रहा है। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग को हम जो आप बता रहे हैं कि फास्ट फ्लड गाइडेंस सिस्टम हमारा जो एफएफजीएस है, ये एक डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन तरफ से है, ये इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा जो इंडिया में है, हम सारे वाटरशेड रीजन के लिए हम ये अर्बन फ्लडिंग का एफएफजीएस है वो देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे एरिया के लिए भी हमारा सब मैपिंग हुआ है, तो जितना भी रेनफॉल हमको ऑब्जर्वेशन रेनफॉल मिल रहा है वो सारे उसमें आएगा। एंड उसके बाद वो जो सॉयल मॉइस्चर है, क्योंकि जब क्या होता है, जब सॉयल मॉइस्चर ऑलरेडी वेट है तो उसके बाद अगर बारिश हो जाता है तो उसका ड्रेनेज इतना जल्दी पानी निष्कासित नहीं हो पाता है, वो सब चीज उसी मॉडल में रहेगा एफएजीएस। और उसमें हमें कितना रिस्क है ये एक तरह से हम गाइडेंस देते हैं। तो हर दिन हमारा सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, दो बार दिन में तो बन रहा है। तो अगले 6 घंटे के लिए देते हैं जो कि ऑब्जर्व रेनफॉल में कितना रिस्क है, और उसके बाद हमारा फोरकास्ट भी अगले 24 आवर्स में जो कहां कहां ये होने वाला है इसका देते हैं। आज जैसे कि अभी हमने मानसून डिप्रेशन चल रहा है, अभी ओडिशा में काफी किसी जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी हुआ है, 250 बहुत जगह में ओडिशा के इंटीरियर ओडिशा में। तो हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम में हमने इंडिकेट किया था इसमें, जैसे कि अभी फिर छत्तीसगढ़ जाएगा। तो ये एक जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है ये आपको कम टाइम में हमको जो वार्निंग है रेनफॉल को ट्रांसलेट करके, खाली रेनफॉल कितना होगा ये इतना सफिशिएंट नहीं, रेनफॉल जो होगा उसके बाद बाकी सॉयल मॉइस्चर को भी देखा जाएगा, बाकी उसका कितना ड्रेनेज इसमें है, सॉयल मॉइस्चर का क्वालिटी है, अभी कितना वेट है, वो सब कंसीडर करके फ्लैश फ्लड। तो वही गाइडेंस जो हम दे रहे हैं ये काफी हद तक यूजफुल है। ऑलरेडी अर्ली वार्निंग हमने दे दिया, हैवी रेनफॉल या वेरी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे दिया, तो फिर हम जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस भी उसके साथ साथ इमीडिएटली देते हैं कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, कौन सा वाटर शेड है जिसमें कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस का रिस्क ज्यादा है।
1: इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा डॉक्टर पटनायक बता रहे थे कि शहरों में जो कम समय में ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सूर्य प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब शहरों में जल भराव होता है तो अक्सर रास्तों पर चलने या बिजली के खंभों के पास जाने से हादसे हो जाते हैं, ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे कि सड़क पर निकलते समय और घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें?
0: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ये समस्याएं होती हैं शहरी क्षेत्रों में कि जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी पावर लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, वो भी कई बार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या प्रभावित होती हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेथ्स होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी को जो भी घर से बाहर हों, अगर सड़क पर हैं, तो ये ध्यान रखें किसी भी ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पोल या लाइव वायर्स के नीचे से ये ना क्रॉस करें और किसी तरह का रिस्क ना लें अगर वो पैदल भी चल रहे हों। दूसरा, अगर घर में आप रह रहे हैं तो जो भूतल पर रहते हैं उनके घरों में भी बाढ़ का पानी आ जाता है, भर जाता है, और कई बार उनका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी बिल्कुल भूतल पर ही होता है, जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है कई बार, तो उसको अगर हमने स्विच ऑफ नहीं किया तो उससे भी करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप जो है अपना मेन कंट्रोल रूम जो है या स्विच है उसको हमेशा ऑफ कर दीजिए, ताकि पावर कंटिन्यूटी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट लगने के खतरे कम से कम हो जाएं। और दूसरा, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो सब पासिज हैं या अंडरवेज हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबवेज में कई बार लो लाइंग एरिया होता है और काफी पानी भर जाता है जिसका अंदाजा हमें नहीं लगता है, तो ऐसे में भी डूबने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये दो बड़े प्रिकॉशन हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी भी पानी के भराव क्षेत्र में बिना अंदाज लगाए और अनुमान के आप कहीं भी उसमें एंटर ना करें। और दूसरा, पावर सप्लाईज और करंट्स का हमेशा ध्यान रखें कि उनसे दूर रहें, बच के रहें, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को करंट लग सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसके अलावा ये कह रहा था कि गैस सप्लाई का भी है, हमारे यहाँ पीएनजी है दिल्ली में जैसे, उसमें भी कई बार लीकेज या कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें कि गैस सिलेंडर वगैरह या आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी आप जो है भराव वाले क्षेत्र से ऊपर रखें, मतलब जितना अगर आप ऊंचाई पे रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगी वो चीजें।
1: डॉक्टर पटनायक, अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें कि हाल के वर्षों में डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क काफी बढ़ा है और मौसम के सटीक और नाउकास्टिंग का मतलब तत्काल पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रडार तकनीक से जो सुधार आया है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत का सुधार आप देखते हैं और इससे आम जनमानस को कितना फायदा हो रहा है, किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात है और सरकारी तंत्र इससे किस तरह लाभान्वित हो रहा है।
2: देखिए, ये अभी जो आप बताए कि डॉपलर राडार हमारा काफी नेटवर्क बढ़ गया है, अभी हम अगर 2014-15 में जो 15-20 राडार के नीचे ही था उसमें, आज हमारा 50 राडार के आसपास आ गया। तो ये डॉपलर राडार में क्या हो रहा है कि जब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो सारे जगह में हम जब रडार रखेंगे तो उसका 300 किलोमीटर का भी 400 किलोमीटर इफेक्टिवली 200 किलोमीटर ये रेंज में रडार जो है, कोई भी कन्वेक्टिव सेल जो है जो कि ये हैवी रेनफॉल जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट को जो देता है उसको मॉनिटर करने के लिए रडार एक बहुत उपयोगी है। तो पर्टिकुलरली जब हम जो जगह में जो हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन का कोई मैकेनिज्म है नहीं, जैसे पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड एरिया, ये एरिया में भी वो राडार जो बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उसको मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने पता नाव कास्टिंग, तो ये राडार डाटा लेके हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नाव कास्टिंग देते हैं, अभी हर 3 घंटा में हम अपना नाव कास्ट देते हैं और अपडेट करते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर कोई भी खतरा है तो उसमें रेड कलर वार्निंग दिया जाता है। तो जैसे कि आजकल ये हो रहा है कि आकाशीय बिजली में बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, मैंने बहुत सारे कैजुअलिटी जो डेथ हो रहा है आकाशीय बिजली में होता है। तो ये मानसून टाइम में जो क्लाउड होता है, क्लाउड टू क्लाउड भी बिजली होता है, क्लाउड टू ग्राउंड भी बिजली होता है, तो जो क्लाउड टू ग्राउंड वाला जो बिजली स्ट्राइक होता है उसमें बहुत सारा जानमान का क्षति होता है। तो ये जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें हमारा नावकास्टिंग काफी हेल्पफुल है। तो हमने पहले इतना हमारा नहीं था, जो नावकास्टिंग में हमने जितना इंप्रूवमेंट किया है राडार नेटवर्क के चलते, हमारे पास जो आपने अभी बताया AI ML भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर सेल जो कन्वेक्टिव सेल बनते हैं राडार में दिखता है वो धीरे धीरे मूव होता है। वो अगर 2 घंटा पहले अगर इसी जगह में है तो ये हमारे दिल्ली की तरफ आ रहा है, 2 घंटा के बाद यहाँ हो जाएगा, तो हमने 2 घंटा पहले ही वार्निंग दे देते। तो ये छोटा सा शॉर्ट टर्म में जो वार्निंग भी है, काफी हद तक जो पॉपुलर सिटी है इसमें के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है, आप जैसे देखे होंगे कि बारिश के कारण। तो ये सब चीज के लिए हमारा राडार जो नेटवर्क, राडार जो इंटेंसिटी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं राडार रिलेटेड, वो सब यूजफुल होता है। और दूसरी बात, जो गांव के लिए भी जो खेती में भी काम करते हैं वो एक्सपोज होते हैं, तो उसको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा 2 घंटा पहले भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होने का अगर संभावना अगर बताया जाता है तो वो क्या करते हैं कि उस जो सेफ एरिया में चले जाते हैं। तो वो सब चीज ये एक हिस्सा में काफी मदद करता है हमारा राडार एंड उसका जो हमारा जो टेक्निक है।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक बता रहे हैं कि थंडर स्ट्रॉम को लेकर भी जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि लोग सेफ जगह पर चले जाएं, आपसे इसी विषय पर समझना चाहते हैं कि जो सुरक्षित जगह है उसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खुले में हैं तो किसी टीन शेड के नीचे चले जाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे जो किसान खेतों में रहते हैं वो कहां जाएं क्योंकि आसपास कोई छिपने की जगह नहीं होती है पक्की छत नहीं होती है तो वो क्या करें और एक और बड़ा मिथ है जो लोग समझते हैं कि वो घर में हैं उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है वो घर में हैं वो सुरक्षित हैं तीनों ही स्थितियों के लिए आप आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे
0: बहुत ही संबंधित सवाल है क्योंकि जब भी हमारे भारी वर्षा होती है उसके साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग ये दोनों इवेंट्स भी अक्सर होती हैं पर्टिकुलरली क्लाउड वर्स के टाइम पर तो उस समय में बड़े ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर खेत में हैं किसान लोग तो वो पेड़ तले ना जाएं पेड़ तले बिजली लगने की जब घटनाएं ज्यादा होती हैं और अगर आप खुले मैदान में दोनों पैर एक साथ इकट्ठे करके उड़कू बैठ जाते हैं जैसे मुर्गा बैठता है तो उसमें करंट लगने की घटनाएं कम होती हैं लाइटनिंग से हमारे यहाँ काफी डेथ्स होती रही हैं और इसकी मेन वजह जैसे आपने कहा कि आप टीन शेड के नीचे चले गए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है तो वहां पर करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है अगर ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और आपके जरिए अगर करंट पास करता है तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं छाता ले लें पेड़ के नीचे चले जाएं तो हम सेफ हैं परंतु ऐसे में सेफ्टी आपके एक्शन पर है कि आप अगर उस समय में खुले में हैं और पास में नजदीक कोई सेफ शेल्टर नहीं है तो आपको वहीं पर उकड़ू दोनों पैर जोड़ के बैठना चाहिए ताकि आपके बॉडी के थ्रू मिनिमम लेवल से करंट पास हो और सीधा ग्राउंड में चला जाए तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन होती है और दूसरा शहरों की हम बात कर रहे हैं शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम बहुत यूज करते हैं जब भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर ये संभावना होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए जो लाइटनिंग का करंट फ्लो कर जाए और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी फेल हो सकते हैं तो कभी भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर हमें प्लग्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निकाल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घर में लाइटनिंग की वजह से कोई करंट का प्रवाह ना हो तो ये दोनों प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप सेफ साइड में होकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें ताकि आपको करंट की संभावना कम से कम रहे
1: डॉक्टर पटनायक आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में इस समय मॉनसून की वर्तमान स्थिति अलग अलग है अगले 15 दिनों या अगले एक महीने की हम बात करें तो भारत के कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए अगर समझा पाए आप कि मॉनसून की क्या स्थिति रहने वाली है
2: आज तो 29 जुलाई है आज अगर हम देखेंगे तो एक मानसून टाइम में जो बारिश देता है मानसून डिप्रेशन सिस्टम जो है बे ऑफ बंगाल के से होते हुए उड़ीसा उड़ीसा के बाद इंटीरियर उड़ीसा थोड़ा सा झारखंड एरिया छत्तीसगढ़ की तरफ मूव हो रहा है तो आज अभी वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की तरफ भी एंटर हो रहा है इससे चलते काफी जो वेस्टर्न उड़ीसा में है इंटीरियर उड़ीसा में आज जो है रिपोर्ट हो गया बहुत बारिश रिपोर्ट हुआ है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो गया है कुछ कुछ जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी ज्यादा हुआ है उससे भी ज्यादा हुआ है बहुत सारे स्टेशन में है 200 से भी ज्यादा रेनफॉल हुआ है तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है तो ये एक बहुत हैवी रेनफॉल जो है वहां उसी एरिया में काफी फ्लडिंग उसके भी चलते और वो थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो छत्तीसगढ़ एरिया में भी हमने चेतावनी दिया है थोड़ा सा विदर्भ एरिया में भी चेतावनी दिए है तो ये जो अभी एक्टिव जो मानसून सेंट्रल इंडिया मध्य भाग में है एक दो दिन चलेगा और जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा वीक ना हो जाए तब जब ये उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि मानसून ट्रफ ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में भी थोड़ा सा बारिश होगा जुलाई में ना एंड होने वाला है जुलाई तो आप रेनी मंथ है आपको पता है जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश जो होता है हमारा मानसून सीजन में जुलाई महीना में होता है और इस बार भी जुलाई खराब नहीं हुआ है जुलाई अच्छा हुआ है एक जुलाई से अगर आज तीन तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 1% रेनफॉल कम हुआ है जून में हमारा 38% कम हुआ था तो जुलाई में इतना कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है फर्स्ट जून से अगर हम 28 जुलाई का मानेंगे तो लगभग 15-25 दिन थोड़ा सा कम हुआ है जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है लेकिन आप यस जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हैवी रेनफॉल देता है बाढ़ वगैरह भी स्थिति आता है और दूसरा अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं 7 दिन के लिए जैसे कि वार्निंग देते हैं पर्टिकुलरली लेकिन महीने का जो फोरकास्ट है हम वो महीने में एंड में करेंगे जुलाई का एंड में अभी आ गया है तो 31 जुलाई को हम अगस्त के लिए तो ओवरऑल एक फोरकास्ट बनाएंगे कि अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है और बाकी हमारा जो रेगुलर फोरकास्ट है हर दिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए सिस्टम वगैरह वार्निंग वगैरह वो देते रहेंगे एंड हर हफ्ते अगर गुरुवार को हमने एक चार हफ्ते का फोरकास्ट भी देते हैं, तो वो भी हमारे आने वाले गुरुवार को ये हो जाएगा एंड उसके बाद फिर हम मंथली फोरकास्ट भी देते हैं। तो इसीलिए हमारे जो फोरकास्ट है सारा डिफरेंट टाइम स्केल के देंगे। अभी फिलहाल मानसून अगर कंट्री एज ए होल अगर देखेंगे आज तक थोड़ा सा मानसून रेनफॉल कम हुआ है, 15% कम रेनफॉल हुआ है।
1: सूर्य प्रकाश जी, आकाशवाणी के इन

0: विक्रमों की कोशिश यही होती है कि श्रोताओं की जिज्ञासाओं को हम समाधान करें और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी उन तक पहुंचाएं। मॉनसून में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में यात्रा करना पसंद करते हैं। आपने भी कुछ समय पहले उसका जिक्र किया था। वहां अचानक लैंडस्लाइड आ जाती है या फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सैलानियों या स्थानीय लोग जो वहां की यात्रा की योजना बना रहे हैं या जो वहां हैं फंस जाने की स्थिति में तुरंत क्या सुरक्षात्मक कदम वो उठाएं?
1: भूस्खलन काफी मात्रा में और कई जगहों पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं और उसकी जब भी ऐसा घटना में आप अगर उसमें फंस जाते हैं तो सबसे पहला तो ये कि आप अपना बचाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस गए हैं तो अगर गाड़ी में है तो गाड़ी को जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उसे या तो पहले रोक दें या तुरंत आगे जा निकलने के बाद ही रोकें, बीच में नहीं रोकेंगे। ऐसे में भूस्खलन में दबने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी भूस्खलन क्षेत्र में खड़ी रहती है। दूसरा, अगर आप पैदल जा रहे हैं और अगर कहीं पर भूस्खलन में आप फंस जाते हैं तो आपको नियरेस्ट जो सुरक्षित बाउंड्री है उसकी तरफ जाना चाहिए, आप स्लोप एरिया में, नीचे की तरफ नहीं। लोग, आपने देखा होगा अभी जो पीछे धराली में हुआ था, लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, जिधर भूस्खलन चल रहा था उधर ही उसी दिशा में लोग भी भाग रहे थे, तो ऐसे में दबने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आप दर्शक हैं और आप देख रहे हैं कि कोई फंस गया है या कोई गाड़ी फंस गई है तो तुरंत हमें 112 112 पर फोन कर देना चाहिए ताकि सहायता करने वाले जो हमारे आपदा मोचन बल के कर्मी हैं वो वहां पहुंच जाएं और समय पर उनको रेस्क्यू कर पाएं। तो ये सब चीजों का ध्यान बहुत देना जरूरी है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जो है, भूस्खलन में ज्यादातर कैजुअलिटीज दो वजह से होती है। एक, कोई पत्थर सिर पे आके गिर गया, हेड इंजरी हो जाती है। तो आपको जैसे भूकंप में हम हेड को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे ही भूस्खलन में भी अगर आपदा में फंस जाते हैं तो अपने सिर को हमेशा बचा के रखें, उस सिर पे हाथ डाल लें या कोई और कुछ रख लें ताकि आपको हेड इंजरी नहीं हो। दूसरा, अगर मलबे में फंस जाते हैं तो मलबे में एक हम कहते हैं एस्फिक्सिएशन होता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर मलबा चला जाता है और आपको सांस लेने के लिए दिक्कत आने लग जाती है और उसकी वजह से डेथ्स होती हैं। तो ऐसे में कभी भी ऐसा हो तो आपको हमेशा अपना अंदाज लगाना है कि आप कैसे फंसे हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। अगर आप थूकेंगे तो ग्रेविटी से थूक हमेशा आपकी ठोड़ी की तरफ आएगा और अगर नाक की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप उल्टे हो गए हैं। भूस्खलन में फंसने में कई बार अपने घर में है और घर पूरा उलट पलट जाता है भूस्खलन के दौरान, तो पहले तो अपनी परिस्थिति की जानकारी लेनी है कि हम सही दिशा में ऊपर की तरफ हैं या उलट गए हैं। तो ऐसे कई सारे प्रिकॉशंस को हमें देना है और ध्यान रखना है ताकि घबराहट ना हो और आप अपने बचाव के लिए उपाय कर पाएं। इससे पूर्व आपको उनके संकेत भी देखने हैं। भूस्खलन जब भी शुरू होता है वर्षा के दौरान जो पानी की वजह से भूस्खलन होते हैं वो अक्सर पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है फिर बड़े पत्थर खिसकते हैं। तो अगर कहीं से ऐसे मिट्टी खिसक रही है और बह रही है और आ रही है तो हमेशा हम उस क्षेत्र में ध्यानपूर्वक जाएं और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी जहां जहां ऐसा भूस्खलन का खतरा होता है वहां पे बोर्ड लगाते हैं कि यहां भूस्खलन या भूधसाव की संभावनाएं हैं तो उन क्षेत्र में वर्षा के दौरान जाने के लिए कोशिश ना करें। यही हमारे बचाव के उपाय हैं।
0: मानसून सिर्फ बादलों का बरसना भर नहीं है, यह हमारी मिट्टी की सौंधी महक है, हमारे किसानों की उम्मीद है और हमारी नदियों की रवानी है। लेकिन प्रकृति जब अपनी रौ में आती है तो एक बात हमें साफ समझा जाती है कि तैयारी ही बचाव है और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि मौसम विज्ञान की सटीक तकनीक और आपदा प्रबंधन की मुस्तैदी तब तक अधूरी है जब तक हम और आप एक सजग नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जरा सी सावधानी, सही जानकारी और आपदा के समय एक दूसरे का थमा हुआ हाथ किसी का घर बहने से बचा सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर पटनायक आपका, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश आपका बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार।
1: धन्यवाद आपका भी।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम

0: सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetox@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोक
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
4: प्रस्तुत है नाटक कर्तव्य, लेखक राजकुमार जायसवाल और प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल।
5: देखो भाई, ये अर्जी तो हम बाद में पढ़ लेंगे, तुम ये बताओ कि बात क्या है।
6: साहब, वो जो धर्म सिंह है ना,
5: हाँ हाँ,
6: सोसाइटी मैनेजर, उन्हें हम हाथ पकड़ो तो।
5: क्या
6: हो, कह रहो तो कि हमारे संग
5: थाने में रिपोर्ट की थी।
6: हाँ, करी थी ना साहब।
5: फिर क्या हुआ?
6: कछु नहीं हुआ, हम जैसन की को नहीं है सुनने बारो।
5: मतलब किया क्या थाने वालों ने? कुछ तो किया होगा। अच्छा अच्छा, तुम थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, हम तुम्हें बुलाते हैं। मान सिंह
7: जी। श्रीमान,
5: थाने फोन लगाओ और पता करो कि इस एप्लीकेशन पर क्या एक्शन हुआ है।
7: जी बहुत अच्छे। हेलो, हाँ दरोगा जी नमस्कार जी, ये सपना वाई का एप्लीकेशन है, 354 का मामला है। जी जी जी जी श्रीमान, पूछ रहे हैं इस पर क्या कार्रवाई हुई है। क्या दरख्वास्त झूठी है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम बता देंगे साहब को। जी जी नमस्कार नमस्कार।
5: हाँ भाई, थाने वाले तो कह रहे हैं कि तुम्हारी दरख्वास्त झूठी है।
6: वो तो कहेंगे ना साहब, सबके सब उसे मिले भय हैं, हम गरीबन की कौन सुनवाई नहीं है।
5: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सुनवाई है, जरूर है, कानून से बढ़कर थोड़ी ही है कोई। एक काम करो, तुम तफसील से बताओ मुझे कि पूरा मामला क्या है।
6: वो साहब, बहुत दिनों से हमारे पीछे पर हो तो एक दिन साड़ी भी लाकर दई और कहन लगो कि इमें तुम रानी लगोगी।
5: फिर
6: हमने नहीं ली उनकी साड़ी, हमने बोल दई कि अपनी बहन को पहना ले जाके। हाँ,
5: इसके बाद क्या हुआ?
6: लेकिन उन्हें हमारे पीछे नहीं छोड़ा और हमें बुरी नजर से देखा, तो हमें देख के सिसकारी भरत। तो
5: इसकी रिपोर्ट की थी तुमने?
6: अरे नहीं साहब, डर लगा तो ना, बदनामी होगी, और हमने सोची कि खुदा ही मान जाएगा। मनु एक दिन तो
5: बोलो बोलो, देखो डरो नहीं, बेखट के बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ।
6: साहेब, उ दिन सवेरे सवेरे हमारे पास आओ और एकदम से उन्हें हमारा हाथ पकड़ लो।
5: फिर
6: हमने छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, बहुत करी, और हमारी चूड़ियां भी टूट गई, वो तो जेब से।
5: हाँ हाँ बोलो बोलो।
6: जेब से 100 रुपया को नोट निकाल के हमें देने लगो।
5: तो तुमने क्या किया?
6: नहीं, हमने नहीं लो, फेंक दो। तो बोलने लगो कि तुम्हारी जात बारे 10-10 और 5-5 रुपया में बिकत हैं, वो तो तुम हो खूबसूरत, तो हम तुम्हें 100 रुपया दे रहे।
5: ओह गॉड, गवाह तो कोई होगा नहीं।
6: गवाह कैसे होगा साहेब, को के सामने थोड़े।
5: नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ऑफिस में दूसरे कमरों में भी तो लोग रहे होंगे, हल्ला गुल्ला शोर शराबा कुछ तो सुना होगा उन्होंने।
6: हाँ, सुनी तो सब नहीं है साहेब, मनो को नहीं के है, सबके सब उसे दबत है ना, बहुत पहुंच वाला है वो, को वो के खिलाफ एक शब्द नहीं के है।
5: उसकी चिंता ना करो तुम, हम सब निकलवा लेंगे। खैर अब तुम जाओ। हाँ। हम देखते हैं कि

0: क्या हो सकता है तुम्हारे मामले में?
1: ओ साहब, राम राम।
0: हाँ जी, आइए आइए। रणविजय नाम है तुम्हारा?
2: जी जी सर।
0: क्या करते हो?
2: सर नौकरी।
0: कहाँ?
2: सर रामपुर सोसाइटी में।
0: सपना बाई को जानते हो?
2: जी सर।
0: कौन है वो?
2: अध्यक्ष है सर सोसाइटी की।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अध्यक्ष है
2: जी।
0: देखने में कैसी है?
2: जी जी सर।
0: माने देखने में कैसी है, है? खूबसूरत है, बदसूरत है, कैसी है वो?
2: सर खूबसूरत ही कहेंगे सर।
0: और धर्म सिंह?
2: क्या मतलब सर?
0: मतलब ये कि धर्म सिंह कैसा आदमी है।
2: मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर?
0: अबे ज्यादा स्याना बनने की कोशिश तो तू कर मत, जो पूछा जाए उसका जवाब दे।
2: मैं क्या जानू सर।
0: अच्छा, एक ही ऑफिस में काम करते हो तुम दोनों, और तुम्हें मालूम नहीं कि वो कैसा आदमी है। खैर, उस दिन क्या हुआ था?
2: किस दिन सर?
0: जिस दिन सपना बाई रो रही थी।
2: मुझे नहीं मालूम सर, मुझे क्या पता कि सपना बाई कब रो रही थी सर।
0: अच्छा अच्छा, जरूरत से ज्यादा होशियार है ना तू, हैं? अबे तेरी अध्यक्ष के साथ तेरा ही एक साथी बदतमीजी कर जाता है और तुझे पता नहीं चलता, हैं? वो रोते कलपते हुए ऑफिस से बाहर निकलती है और तू आंख कान फोड़ कर बैठा रहता है।
2: जी सर, कहा ना सर, मुझे कुछ नहीं पता सर।
0: बेटा तेरी सियान पट्टी तो मत। अगर हमें पता चल गया ना कि तूने जानबूझकर सच छिपाया है तो तेरा धर्म सिंह तो जेल जा ही रहा है, मगर तू भी जाएगा तब उसके साथ, समझा? 24 घंटे की मोहलत देता हूं तुझे, या तो मुंह खोल देना, नहीं तो हम तेरे लिए हवालात का दरवाजा खोल देंगे, समझा? मान सिंह।
3: श्रीमान।
0: ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले।
3: जी।
0: और तुम भी बस्ता बांधो और तैयार हो जाओ।
3: जी बहुत अच्छा। श्रीमान चलना कहाँ है?
0: सपना बाई के गांव, उसकी फाइल जरूर रख लेना।
3: जी बहुत अच्छे।

0: हाँ भाई।
1: को है?
0: अरे साहब आए हैं जांच करने।
2: अरे आपने काय तकलीफ उठाई? अरे हमें ही बुलवा लेते।
3: नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है भाई, इस काम की तनख्वाह मिलती है हमें। खैर देखो, हम तुम्हारे केस में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तुमसे।
2: सवाल?
0: अरे भाई डरो मती, साहब तुम्हारे मामले में कार्रवाई करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ जानकारी और चाहते हैं।
2: अच्छा मनो, हम तो सब कछु बता चुके हैं ना साहब, और हमने कछु झूठ भी नहीं कहो है। हाँ
3: मानते हैं भाई, हमें पता है कि तुम्हारी शिकायत बिल्कुल सही है। इतने दिन से पुलिस में हूं, चेहरा देखकर ही समझ जाता हूं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। तुम तो हमें याद करके बस इतना और बता दो कि इस घटना का जिक्र क्या तुमने किसी से किया था?
2: कैसे करते साहेब?
3: कहीं तो गई होगी तुम ना? तुम्हें तकलीफ थी, किसी ने तो वो तकलीफ महसूस की होगी तुम्हारे चेहरे पर।
2: एक मिनट, याद आओ है।
3: हाँ हाँ हाँ बोलो बोलो।
2: वो साहेब सोसाइटी ऑफिस के सामने एक चाय वाली बुढ़िया बैठा थे,
3: उससे कुछ कहा था तुमने?
2: नहीं नहीं हमने कहो तो कछु नहीं, तो मनो हम रोत रोत पता नहीं होते कैसे पहुंच गए। मनो हमें कछु याद नहीं आ रहा है कि कहा कहो तो। हमारी हालत तो उस समय साहब ऐसी।
3: नहीं नहीं देखो देखो रो मत भाई, हम छोड़ेंगे नहीं उसे जिसने तुम्हारी आबरू पे हाथ डालने की कोशिश की है। राम राम माई।
4: राम राम।
3: एक कप गर्मा गर्म चाय मिलेगी?
4: बैठा बबुआ बैठा, काहे न मिली।
3: भाई मजा आ गया तुम्हारे हाथ की चाय पी के माई। अदरक की ऐसी चाय तो बस घर में मिलती है।
4: हाँ।
3: दुकानों पे तो गर्म पानी पी लो शकर और चाय पत्ती डाल के।
4: अरे बबुआ अपने बच्चन के का हम गर्म पानी पियाए? घर माँ कोई बाई नहीं है हमरे, पर अब तुम ही लोग तो हमार बाल बच्चा हो।
3: सच है माई, हमें भी ऐसा लग रहा है जैसे अपने माँ के हाथ की चाय पी रहे हैं। चाय तो एक बहाना है।
4: हा?
3: हम यहाँ एक मकसद से आए हैं। पहले ये बताओ कि पहचानती हो हमें?
4: इकरे पहले कभी देखे तो ना ही हम तो है।
0: अरे माई साहेब हैं पुलिस के।
4: पुलिस के साहेब? ऐसन कौन गलती हुई गई बिटवा हमसे जो तुम?
3: नहीं, नहीं माई नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, और ये पुलिस वाला चेहरा भी आपके लिए नहीं है। समझ लो कि आपका बेटा आया है आपके पास आपसे मदद मांगने, किसी को इंसाफ दिलाना है। अब उम्मीद की आखिरी किरण तुम ही हो, बस हम कुछ सवाल करेंगे उसका सही सही जवाब दे देना मुझे।
4: पूछा बिटवा पूछा, का पूछे चाहत हो?
3: मई ये सामने जो सोसाइटी का ऑफिस है इसमें एक बाई काम करती है, सपना बाई। उनको जानती हो तुम?
4: काहे ना जानब बिटवा, हमरे यहाँ तो चाह पिया था नू।
3: अच्छा?
4: हाँ।
3: और स्वभाव की कैसी है वो?
4: अरे बहुत ही नीक बिटवा, बहुत ही नीक, सबसे ऊपर है इन सोसाइटी मा। मगर वो बात करके कभी ऐसा लागत ना ही हमका।
3: कुछ महीने पहले किसी ने बदतमीजी की थी उसके साथ, कुछ जानती हो तुम उसके बारे में?
4: हमें लगत बा कि जरूर ओके संग ऐसा कुछ भयल हुई।
3: वो कैसे बताओ भाई बताओ।
4: बेटवा शायद चैत का महीना रहिल हुई, दोपहरी से थोड़ा पहले ही हमरे दुकान में आई नू। हम सोचे गर्मा गर्म चाय पिए के मन भइल हुई, हम जल्दी से चाह चढ़ा दिए, मगर वो तो।
3: मगर क्या भाई बताओ हमें।
4: बिटवा उका चेहरा देख के हम तो फक रह गईल।
3: ऐसा क्या देखा माई तुमने चेहरे पे?
4: बिटवा एकदम उड़त रहिल चेहरा उका, बड़बड़ात रही नू।
3: क्या बड़बड़ा रही थी माई, कुछ कुछ याद है तुम्हें?
4: हाँ बिटवा याद आ गई, कहित रहिन आज भी हम सब इनका जजाद हैं।
3: फिर
4: हम पूछनी कि बिटिया का भइल, तो कुछ बोली नाहिन, बस रोवत रोवत चली गईन।
3: ठीक है माई। मान सिंह।
0: जी श्रीमान।
3: जांच रिपोर्ट बनाओ, मैं डिक्टेट कर रहा हूं।
0: जी।
3: लिखो, फरियादी सपना बाई, पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम बरिया कला, थाना बरही के द्वारा पेश आवेदन पत्र की जांच स्वयं मेरे द्वारा की गई।
0: जांच मेरे द्वारा की गई।
3: हाँ लिखो।
0: इसके आगे सर?
3: मेरे द्वारा नहीं
0: जी,
3: स्वयं मेरे द्वारा की गई।
0: अच्छा,
3: है ना?
0: जी।
3: फरियादी रामपुर सोसाइटी के अध्यक्ष है और आरोपी धर्म सिंह भी उसके फरियादी रामपुर सोसाइटी के अध्यक्ष है और आरोपी धर्म सिंह भी उसमें एक कर्मचारी की हैसियत से काम करता है।
0: जी।
3: आवेदन पत्र में आरोप लगाया गया है, आरोपी प्रभावशाली व दबंग किस्म का व्यक्ति है, उसके डर से लोग। हो गया?
0: जी जी श्रीमान, हो गया।
3: बहुत अच्छे। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर एक FIR कर लो और पार्टी तैयार करो, आज रात में ही दबिश देनी है। और हां, किसी को कानों कान खबर ना लगे, नहीं तो भाग जाएगा वो हरामखोर।
1: अरे कौन है?
0: पुलिस।
1: पुलिस? क्यों क्यों साहब, हमने क्या किया है?
0: तुम्हारा बेटा कहां है?
1: कौन सा बेटा?
3: ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं, बाहर निकाल अपने उस सपोले को, औरत की आबरू पे हाथ डालता है।
1: देखिए साहब, जो कोई भी होंगे आप, मगर इस तरह शरीफ लोगों से बात नहीं कर सकते।
0: देखो करण सिंह साहब, धर्मू के बारे में पूछ रहे हैं, वही जो सोसाइटी में नौकरी करता है।
1: मगर वो तो कई दिन से यहाँ पर नहीं है।
3: अच्छा, कहाँ गया है?
1: देखिए साहब, ये तो हमें नहीं पता, मगर शायद अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने गया।
3: कोई बात नहीं, हम अभी देख लेते। मान सिंह
0: जी,
3: पार्टी को बोलो सर्च करे घर को।
0: जी बहुत अच्छा।
3: राम कौर दुबका होगा किसी बिल में।
1: वो साहब देखिए, कानून तो हम भी जानते हैं, सर्च वारंट लाए हैं आप?
3: कौन से कानून की किताब में पढ़ा है तूने, जिसमें लिखा है कि नामजद मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस को सर्च वारंट लेना पड़ता है? फिल्मी डायलॉग बोलता है बढ़िया, नहीं तो मुलजिम को बचाने के चक्कर में तू भी जेल जाएगा।

0: नहीं मिला श्रीमान, हम लोगों ने घर का कोना कोना छान मारा।
1: भनक पड़ गई होगी हराम खोर को कहीं ना कहीं से, बच के कहां जाएगा। और सुनो, कल रात फिर दबिश देंगे हम, परसों फिर, जब तक तेरा बेटा

0: आपसे बात करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप होल्ड कीजिए, हम लाइन ट्रांसफर करते हैं। श्रीमान, बानू जी का फोन है।
1: कौन है ये?
0: बड़े आदमी हैं श्रीमान, बस ये समझ लीजिए कि इलाके में ट्रांसफर पोस्टिंग इनकी इजाजत के बगैर नहीं होती है।
1: अरे तो मुझसे क्या बात करना चाहता है?
0: अब ये तो उन्होंने बताया नहीं श्रीमान, हम ठहरे छोटे कर्मचारी, पूछ भी नहीं सकते हैं।
1: ठीक है, लाइन दो।
0: जी
1: हेलो, हाँ हाँ कहिए। उस हरामखोर की सिफारिश कर रहे हैं आप? पता भी है उसने क्या किया है? हाँ सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या? देखिए भानु जी, ट्रांसफर की धमकी तो हमें दीजिएगा नहीं, हम किसी भी जगह पे ज्वाइन करने से पहले ही वहां से रवानगी डाल देते हैं। डीएसपी यहां भी हैं और जहां जाएंगे वहां भी रहेंगे, मगर अपनी हिफाजत जरूर कर लीजिएगा। आज से आप हमारे स्कैनर पे हैं, समझे?
2: जय हिंद सर।
3: ओ नीरज बैठो और सुनाओ, बड़ी चर्चा हो रही तुम्हारी आजकल अखबारों में।
1: अखबार वालों का क्या है सर, उन्हें तो बस छापने के लिए कुछ
3: बस चाहिए। मेरे बारे में तो कोई कुछ नहीं लिखता, वो कहते हैं ना कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। गुड न्यूज तो रहने नहीं दोगे तुम लोग इस जिले में, तुम्हें तो चीप पॉपुलैरिटी चाहिए, भले ही किसी बेकसूर को।
1: बेकसूर नहीं है सर वो, उसके अगेंस्ट।
3: उसके अगेंस्ट क्या क्या है उसके अगेंस्ट? वो चाय बेचने वाली बुढ़िया जिसे ठीक से न दिखाई देता है और न सुनाई, उसी के बयान के दम पर तुम शरीफ आदमियों के घरों में रातों में घुस जाते हो।
1: सर आप उसे शरीफ आदमी का सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं सर, एक औरत की आबरू पर हाथ डाला है उसने।
3: अच्छा तुमने देखा था?
1: मैं देखता तो ऐसा कर पाता सर, वो उसके हाथ को तोड़कर फेंक देता मैं।
3: वेरी गुड, जैसे कानून तुम्हारे घर का है, मुझे बताना तो जरा कि कौन सा कानून तुम्हें इसकी इजाजत देता है कि किसी का हाथ तोड़ दो तुम।
1: सॉरी सर, कानून तो है मगर मैं आपको बताऊं ये अच्छा नहीं लगता। पुलिस अधिकारी को तो छोड़िए, आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन क्लॉज में एक आम इंसान को भी किसी औरत की आबरू बचाने के लिए पूरे अख्तियार दिए गए हैं।
3: ज्यादा पढ़ लिए हो कानून, अभी नौकरी नहीं है ना, एक आध जुडिशियल इंक्वायरी झेल लोगे ना तो सब भूल जाओगे, ना कोई गवाह ना सबूत, बस पड़ गए उसके पीछे।
1: गवाह सबूत तो हैं सर, ना होते तो ऐसा।
3: अरे छोड़ो जी, उसके साथ काम करने वालों ने तो देखा नहीं कुछ? कमाल है यार, दिन दहाड़े ऑफिस में ऐसा होता है कहीं? अरे होगी कोई खुंदक उस भाई की?
1: ऐसा नहीं है सर।
3: मैं पूछता हूँ कोई चश्मदीद गवाह है तुम्हारे पास?
1: ऐसी घटनाएं चश्मदीद गवाह के सामने होती हैं क्या सर? पीड़िता बोल रही है, सरकमस्टेंशियल एविडेंस मिल रहे हैं, सफिशियंट है।
3: सफिशियंट नहीं है, सुना कि नहीं तुमने? तुम्हारा अफसर कहता है कि घटना को साबित करने के लिए एविडेंस सफिशियंट नहीं है। खात्मा लगाओ इसमें और मामला खत्म करो।
1: ये आप कह रहे हैं सर? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद कायमी हुई है मामले की और आप कह रहे हैं कि मैं खात्मा लगा दूं?
3: हाँ मैं कह रहा हूँ। पढ़ा नहीं है ट्रेनिंग में कि बॉस इज ऑलवेज राइट?
1: जरूर पढ़ा है सर, मगर साथ में ये भी पढ़ा है कि यू हैव टू फॉलो ओनली लॉफुल ऑर्डर्स। आपके ऑर्डर लॉफुल नहीं है सर, सॉरी सर।
3: और जो मैं तुम्हारी कार्यवाही काट दूं तो CRPC सेक्शन 36 का इस्तेमाल करके खात्मा लगा दूं तो फिर क्या कर लोगे तुम?
1: जरूर सर, जरूर आप मेरी कार्यवाही को काट सकते हैं, कानून में अधिकार है आपको। ठीक है काट दीजिए, मगर मैं अपने हाथ से तो नहीं काटूंगा।
3: नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और भी रास्ते हैं हमारे पास। 2 दिन के भीतर तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा यहां से और तुम्हारी जगह जो नया DSP आएगा वो लगाएगा खात्मा, मगर खात्मा तो लगेगा इस मामले में।
1: वाह रे नौकरी, सही करो तो ट्रांसफर करवा देंगे, पब्लिक में स्पीच तो कुछ देते हैं और बंद कमरे में कुछ बोलते हैं, मगर नहीं, अब तो इंसाफ होके रहेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मानसिंह।
0: जी श्रीमान।
1: एक काम करो।
0: जी।
1: अपने इन्फॉर्मर्स को मुस्तैद कर दो, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना है मुझे उस दुष्ट को, इसके पहले कि मेरी यहां से रवानगी हो उसका जेल का टिकट कंफर्म करना है मुझे।
0: आप चिंता न करें श्रीमान, आपने कह दिया, समझ लीजिए काम हो गया।

0: जी, एक खबर आई है धर्मवीर के बारे में।
1: बताओ।
0: यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है ढिमरी, वहाँ अपनी बहन के यहाँ छुप कर रह रहा है वो। हालांकि वहाँ से भी इधर उधर भागता रहता है, मगर आज रात को वो मिलेगा जरूर वहाँ।
1: ये खबर मिली कैसे?
0: उसी का एक दोस्त है बबलू, मगर है उसका छुपा दुश्मन। एक लड़की को लेकर दोनों में भीतर ही भीतर कुछ चल रहा है श्रीमान।
1: ठीक है, खबर पक्की तो है ना?
0: 100% श्रीमान।
1: ठीक है, फिर आज रात को हो जाए ऑपरेशन ढिमरी।
0: जी। श्रीमान, आरएम आया है पीएचक्यू से।
1: क्या लिखा है?
0: ट्रांसफर है श्रीमान आपका, अर्जेंट लिविंग के लिए लिखा है।
1: ये तो होना ही था। जिस तरह सबके खिलाफ जाकर सपना बाई के केस में मैंने चार्जशीट किया है, उसका यह नतीजा तो आना ही था।
0: मगर जनता में बहुत गुस्सा है श्रीमान।
1: कुछ नहीं होगा मानसिंह, कुछ नहीं होगा। जनता एक साइलेंट सपोर्टर होती है, वो एप्रिशिएट तो कर सकती है मगर हेल्प नहीं कर सकती। सिस्टम की ताकत बहुत होती है।
0: लेकिन श्रीमान, लोग कह रहे हैं कि ऐसा अवसर ना तो कभी आया था और ना कभी आएगा।
1: सुनने में अच्छा लगता है, दिल बहलता है, मगर इंस्पिरेशन नहीं मिलता। काम करने वाले लोगों को इस तरह फेंका जाएगा तो कितनी बार हिम्मत दिखाएंगे? वे थक जाएंगे भागते भागते, और एक दिन ऐसा आएगा कि सरेंडर कर देंगे। भगवान से प्रार्थना करो कि मैं ऐसा ना निकलूं। खैर छोड़ो, धर्म सिंह को गिरफ्तार करने में तुमने जो मदद की है, तुम दावत के हकदार हो। आज तुम्हारा और राम सिंह का रात का खाना हमारे घर पर होगा।
0: लेकिन सर, उसकी जमानत ने तो मजा किरकिरा कर दिया, और रही सही कसर आपके ट्रांसफर ने पूरी कर दी।
1: निराश मत हो, चालान पेश हो गया है, और ट्रांसफर के बाद मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा। अदालत में पेशी तो होगी।
2: ऑर्डर, ऑर्डर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में प्रोसीड।
3: सपना भाई, ये जो कटघरे में आदमी खड़ा है, इसे पहचानती हो?
4: हाँ हुजूर।
3: इसी ने हरकत की थी?
4: हाँ हुजूर।
2: मिश्रा जी, कुछ पूछना है आपको?
5: यस योर ऑनर।
2: प्रोसीड।
5: सपना भाई, क्या आपको याद है कि घटना की तारीख क्या थी?
4: नहीं हुजूर।
5: योर ऑनर, नोट किया जाए, फरियादी को घटना की तारीख याद नहीं।
3: ऑब्जेक्शन योर ऑनर। घटना की तारीख याद ना होने से घटना झूठी नहीं हो जाती, फरियादी घटना की पुष्टि कर रही है।
5: योर ऑनर, फरियादी कोई मजदूर किस्म की औरत नहीं है, सोसाइटी की अध्यक्ष है। घटना की तारीख याद ना होना मायने रखता है इस संदर्भ में।
3: मिश्रा जी, एक सवाल पूछें आपसे।
5: मुझसे?
3: क्या आप अदालत को बताएंगे कि आपने ये जो मुकदमा लड़ना शुरू किया, उसके वकालतनामे पर आपने दस्तखत किस तारीख को किए थे?
5: ये भी कोई सवाल हुआ? अरे वकालतनामे पे साइन है हमारे, यही बहुत है।
3: भाई हमारा तो ये कहना है कि एक वकील हैं आप, कोई अनपढ़ मजदूर नहीं है, इसलिए अगर वकालतनामे पे दस्तखत की तारीख आपको याद नहीं है तो आप वकील हैं ही नहीं इस मामले के।
5: इस तरह से अदालत को गुमराह नहीं कर सकते आप वकील साहब।
3: बिल्कुल नहीं कर सकते, और हमारी मंशा भी ऐसी नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि ऐसी बातों से आप भी अदालत को गुमराह ना करें। अरे झूठे गवाह घटना की तारीख रट के आते हैं, सच्चे नहीं। कोई मटेरियल सवाल पूछिए सर।
5: सपना भाई, तुम बताती हो कि चाय वाली बुढ़िया के पास तुम रोई थी, क्या तुमने उसे ये बताया था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ?
4: नहीं हुजूर।
5: मगर क्यों?
3: ऑब्जेक्शन योर ऑनर। कोई भी शरीफ महिला ऐसी बातों का ढिंढोरा नहीं पीटती।
2: ऑब्जेक्शन सस्टेन।
5: डीएसपी साहब, इस केस में कोई आई विटनेस तो बनाया नहीं आपने, ले देकर कुल एक गवाह है आपकी, और उसने भी ना तो घटना देखी है और ना ही सुनी है, फिर भी आप इस नतीजे पर पहुंच गए कि हमारे मुवक्किल ने फरियादी के साथ।
1: क्यों? फरियादी नहीं है इस मामले में आई विटनेस, जिसके साथ घटना घटित हुई है वो खुद बयान कर रही है इसका। चाय वाली बुढ़िया माई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर काफी है। मेरे हिसाब से घटना की कड़ियां बिल्कुल जुड़ रही हैं, और इसलिए मेरा कंक्लूजन है।
5: आपके कंक्लूजन के हिसाब से कानून नहीं चलता।
3: ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिश्रा जी आर्ग्यूमेंट के पॉइंट गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं।
5: योर ऑनर, डीएसपी नीरज कोई लेमैन नहीं है, एक पुलिस ऑफिसर, जांच के बाद कायमी की है इन्होंने, इसलिए अदालत को उन्हें यह बताना ही चाहिए कि आखिर जांच से यह नतीजा कैसे निकाला इन्होंने।
2: ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। डीएसपी साहब जवाब दीजिए।
1: सर, कोई भी महिला पहले से नहीं जानती कि उसके साथ कोई ऐसी हरकत होने वाली है कि वो गवाही के लिए चार लोगों को पहले से ही तैयार रखे।
2: ऑर्डर ऑर्डर।
1: हां तो सर, संभ्रांत महिला का इस बारे में बताना ही काफी है कि उसकी शालीनता पर कोई हमला हुआ है। बुढ़िया माई की गवाही ना होती तो भी मैं इस मामले में इसी नतीजे पर पहुंचता, जब तक कि इसकी बात को झूठा साबित करने के लिए कोई सबूत ना हो। फिर घटना के तुरंत बाद बुढ़िया माई के पास जाकर सपना बाई का रोना बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है, यह सोच समझ कर नहीं होता, स्पॉन्टेनियस है और बिल्कुल बिल्कुल रिलायबल। फिर उसका बड़बड़ाते हुए यह कहना कि आज भी हम जैसी इनकी जायदाद हैं, घटना की प्रबल पुष्टि करता है।
2: दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुलजिम धर्मवीर सिंह पर आईपीसी की धारा 354 का आरोप सही प्रमाणित होता है। अभियोजन पक्ष की ओर से यद्यपि केवल दो ही गवाह पेश किए गए हैं, लेकिन साक्ष्यों में कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ऐसे अपराधों को रोकने और अपराधियों को सजा दिलवाने में पुलिस की अहम भूमिका है। डीएसपी नीरज ने जिस तरह किसी दबाव के आगे न झुकते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया है वो सराहनीय है। अपने कर्तव्य के प्रति ऐसी ईमानदारी ही हमारे समाज को बुराइयों से बचा सकती है। अब सजा के मामले में बचाव पक्ष को कुछ कहना है?
6: यस योर ऑनर, हमारा निवेदन है कि मुलजिम का यह पहला अपराध है, शादीशुदा आदमी है वो, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, लिहाजा उसे कम से कम सजा सुनाई जाए।
2: पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप क्या कहना चाहते हैं?
3: योर ऑनर, हमारा कहना है कि शादीशुदा होने से मुलजिम पर रहम करने का कोई आधार नहीं बनता, उल्टा यह प्रमाणित होता है कि एक महिला का पति होकर भी उसने दूसरी महिला की आबरू की इज्जत नहीं की। अगर शादीशुदा होने के कारण उसे कम सजा दी जाती है तो समाज में इससे गलत संदेश जाएगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि तमाम शैतानी जहनियत वाले दरिंदों के हौसले बुलंद होंगे, महिलाओं की आजादी और समानता पर प्रश्न आएगा, उनके विश्वास को चोट पहुंचेगी और समाज में इस तरह की घटनाओं को लगाम देना दुश्वार हो जाएगा। योर ऑनर, अगर हम अपनी महिलाओं की आजादी, समानता और अस्मिता को बचाए रखना चाहते हैं तो मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस तरह के मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।
2: मुलजिम की सजा के संबंध में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मामले में चूंकि 2 साल से अधिक की सजा का प्रावधान नहीं है, लिहाजा मैं उसे अधिकतम सजा 2 वर्ष की कैद बा मशक्कत का हुक्म सुनाता हूं।

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार जायसवाल का लिखा नाटक कर्तव्य। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। डीएसपी संजय मेहता, सपना रंजना तिवारी, मान सिंह अजय सिंह पाल, रण विजय प्रेम प्रकाश अष्ठाना, बुढ़िया माई सरोज शर्मा, करम सिंह रईस हसन, एसपी राकेश जैमिनी, सरकारी वकील बद्रवास्ती, वकील सफाई नजीर कुरैशी और जज की भूमिका निभा रहे थे डॉक्टर अरविंद सोनी। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार जायसवाल का लिखा नाटक कर्तव्य, प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 10:30 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए अब सुनिए समरजीत सेन का सितार पर बजाया राग श्याम कल्याण। तबले पर संगत की है किरण देश।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे समरजीत सेन का सितार पर बजाया राग श्याम कल्याण। तबले पर संगत की थी किरण देशपांडे ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनिए अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।